शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। शहर की बसंत, जब पेड़ बोलते हैं रंगों में। दोस्तों, शहर में बसंत आता है, पर धूम से नहीं। ना ढोल बजता है, ना कोई बैनर लगता है, ना कोई नोटिफिकेशन आता है कि स्प्रिंग इज हियर। बसंत शहर में चुपके से आता है, और सबसे पहले पेड़ नोटिस करते हैं। हम लोग बिजी रहते हैं, ट्रैफिक में, मीटिंग्स में, डेडलाइंस में, मेट्रो के रश में, पर पेड़ कैलेंडर नहीं देखते। वो हवा का टेम्परेचर महसूस करते हैं, धूप की सॉफ्टनेस पहचानते हैं, और फिर एक दिन वो खिल उठते हैं। सिमल, लाल आग का पहला इशारा। फरवरी के एंड में एक पेड़ अचानक लाल हो जाता है, सिमल का पेड़। पूरे साल जो पेड़ बस एक आम सा ट्रंक लगता था, वो एक दिन ऐसे खिलता है जैसे किसी ने आसमान के टुकड़े को आग लगा दी हो। उसके मोटे फ्लैशी लाल लाल फूल सीधे नीचे गिरते हैं, प्लॉप की आवाज के साथ। फुटपाथ लाल, पार्क लाल, मॉन्यूमेंट के पास की जगह लाल कारपेट की तरह। सिमल बस एक पेड़ नहीं, ये बसंत का पहला इशारा है, जैसे शहर ने कोई लिपस्टिक लगा ली हो। इसे हम पलाश के नाम से भी जानते हैं। जकरंदा, नीली खामोशी। फिर आता है जकरंदा, इसका रंग शोर नहीं मचाता, ये पर्पल ब्लू सा होता है। हमारे शहर की आम सड़कें हों या सिविल लाइंस की पुरानी गलियां, अचानक से आप देखोगे सड़क पर नीली चादर बिछ जाती है। जकरंदा के फूल हल्का सा गिरते हैं, ऐसे जैसे हवा ने धीरे से रख दिए हों। ये पेड़ चिल्लाता नहीं, ये सिर्फ कहता है थोड़ा धीरे चलो और मुझे नोटिस करो। कभी एक फूल उठाकर बाल में लगा लो, और जब आप ऊपर देखते हो तो ब्रांचेस पर एक शांत सा नीला आसमान लटका होता है। अमालतस, सुनहरी बरसात। फिर गर्मी के बिल्कुल दरवाजे पर आता है अमालतस, अकेशिया फिस्टुलिया भी कहते हैं इसे। गोल्डन

गुलाबी हो गया है। तबेबिया रोजिया, इसका ट्रंक हल्का सा सीधा और ऊपर सिर्फ गुलाबी बादल। ये पेड़ जब खिलता है तो एक साथ खिलता है, जैसे कह रहा हो या तो पूरा खिलूंगा या बिल्कुल नहीं। और जब फूल गिरते हैं तो जमीन पर गुलाबी फर्श बन जाता है। सुबह सुबह जब सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते हैं तो वो गुलाबी फूल के ढेर में जमा हो जाते हैं, पर जब तक वो हटाए जाते हैं तब तक शहर उनका रंग देख चुका होता है और जी चुका होता है। सोचिए, ये सब पेड़ हर साल खिलते हैं, हर साल गिरते हैं और हर साल गायब हो जाते हैं, पर हम कितनी बार उन्हें नोटिस करते हैं। हम फॉरेन ट्यूलिप फेस्टिवल की फोटोज देखते हैं, जापान की चेरी ब्लॉसम की रील्स चलाते हैं, पर अपने शहर का सीमल, जकरंदा, अमल्तस उन्हें बस ट्रैफिक लाइट पर देखकर इग्नोर कर देते हैं। बसंत हमें क्या सिखाता है? ये कि ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होता, ये धीरे से होता है। कल तक जो ब्रांच सूखी थी आज उस पर फूल है। कल तक जो पेड़ ऑर्डिनरी था आज वो लैंडमार्क बन गया है। लाइफ भी तो ऐसी है, बदलाव धीरे से आता है, पर जब आता है तो पूरा रंग बदल देता है। किसी सेकंड फ्लोर की टेरेस के नीचे एक सिमल खड़ा था। हर साल टेरेस लाल हो जाती है। किसी कॉलोनी के गेट पर एक जकरंदा है, हर साल वहां नीली चादर बिछती है। किसी ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर अमलतस है, एम्प्लॉयज लंच ब्रेक में उसके नीचे खड़े होते हैं। नेचर पब्लिक भी है और प्राइवेट भी, ये सबको इक्वली रंग देता है। ना टिकट लगती है ना कोई एंट्री पास। बसंत सिर्फ एक सीजन नहीं, ये एक दर्शन है। ये कहता है जो सूखा लग रहा है वो भी एक दिन जरूर खिलेगा। सिमल बताता है इंटेंसिटी से जियो, लाल होकर जियो। जकरंदा बताता है शांति में भी खूबसूरती है। अमलतस बताता है जब खिलो तो खुल कर खिलो, सुनहरे हो जाओ। और तबेबिया बताता है कि एक साथ एक पल में भी बदलाव आ सकता है, वो भी गुलाबी। अगले कुछ हफ्तों में जब आप ड्राइव कर रहे हो या मॉर्निंग वॉक पर निकलो, बस एक बार ऊपर देख लेना। शायद कोई ब्रांच आपको बुला रही हो, शायद कोई फूल आपके लिए गिरा हो। शहर बस कॉन्क्रीट नहीं, शहर रंग भी है। और बसंत में हमें हर साल यही याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ ग्रे नहीं होती, कभी लाल, कभी नीली, कभी सुनहरी और कभी गुलाबी। और सबसे खूबसूरत बात, ये सब फ्री है, बस देखना पड़ता है। तो दोस्तों, इस बसंत थोड़ा धीरे चलना, थोड़ा ऊपर देखना, थोड़ा नीचे देखना। हो सकता है शहर आपको एक फूल के जरिए मिल जाए या कुछ कह रहा हो, और हो सकता है कि आपका दिल भी एक नए रंग में खिलने को तैयार हो। देख के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: माँ का फेवरेट डायलॉग, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। और अगले ही सेकंड, फोन दो जरा, पासवर्ड बताओ।

जब टाइटैनिक डूब रही थी, पर संगीत संगीत खड़ा था। दोस्तों, कभी कभी इतिहास हमें तारीख या नंबर से याद नहीं रहता, वो हमें याद रहता है एक पल की वजह से, एक फैसले की वजह से, एक इंसानी रूह की वजह से। 1912, ठंडी रात, अटलांटिक समुंदर और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज RMS टाइटैनिक। लोग कहते थे ये कभी नहीं डूबेगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराया तो सिर्फ लोहा नहीं टूटा, गुरूर टूटा, भरोसा टूटा, और कुछ ही घंटों में 1500 से ज्यादा जिंदगियां अंधेरे समुंदर में समा गईं। पर उस रात जब लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, लाइफ बोट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तब कुछ लोग थे जो भागे नहीं। वो थे टाइटैनिक के ऑर्केस्ट्रा के 8 सदस्य। ना वो सैनिक थे, ना उन्हें किसी ने ऑर्डर दिया था, ना उनकी ड्यूटी थी किसी को बचाना। वो बस संगीतकार थे, आम लोग, फ्रीलांसर्स, रोज कमाने वाले अपने परिवार के एक लौते सहारे। और फिर भी जब मौत सामने खड़ी थी, उन्होंने एक अजीब सा फैसला लिया। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स उठाए और बजाना शुरू कर दिया। सोचिए, जरा सोच के देखिए, आप एक डूबते जहाज पर हैं, चारों तरफ अफरा तफरी, लोग बच्चों को गले लगाकर रो रहे हैं, पानी धीरे धीरे डेक पर चढ़ रहा है, और आपके पास दो रास्ते हैं, या तो भागकर अपनी जान बचाइए, या फिर रुककर किसी और को थोड़ा सा और सुकून दीजिए। इन 8 लोगों ने दूसरा रास्ता चुना। उनके बैंड के लीडर थे वॉलिस हार्टले। कहता है इतिहास कि जब जहाज झुकने लगा, तब भी वायलिन की धुन हवा में गूंज रही थी। किसी ने पूछा नहीं हमें क्या मिलेगा, किसी ने सोचा भी नहीं हम बच पाएंगे या नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात सोची, ये लोग डर रहे हैं, शायद संगीत इन्हें दो पल की हिम्मत दे दे। और वो बजाते रहे, जब तक जहाज पानी पर था तब तक सुर हवा में थे। फिर टाइटैनिक डूब गया और वो 8 सुर समुंदर में समा गए। उनमें से 5 तो सिर्फ 20 साल के आसपास के जवान थे, सपने अधूरे, जिंदगी शुरू ही हुई थी। सिर्फ वॉलिस हार्टले का शरीर 2 हफ्ते बाद मिला, बर्फ जैसा ठंडा पानी, और उनकी छाती से बंधा हुआ उनका वायलिन। वो वायलिन उनके मंगेतर का एक तोहफा था। क्या तस्वीर होगी वो, एक कलाकार अपने सांस को सीने से लगाए समुंदर में आखिरी नींद सो गया। दर्द यहां खत्म नहीं हुआ। उन 8 लोगों के परिवार गरीब थे, वो अकेले कमाने वाले थे। उन्होंने सोचा कंपनी मदद करेगी। टाइटैनिक के मालिक थे व्हाइट स्टार लाइन, पर जवाब आया ये सेकंड क्लास पैसेंजर थे, कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। परिवार ने म्यूजिक एजेंसी से बात की, CWF। उन्होंने कहा इंश्योरेंस कंपनी से बात करो। इंश्योरेंस ने कहा ये फ्रीलांसर थे, हमें कुछ नहीं देना। और जब लगा कि इंसानियत शायद बिल्कुल मर चुकी है, तब एक परिवार को एक चिट्ठी मिली। उसमें क्या था, 14 शिलिंग का बिल, यूनिफॉर्म का पैसा बाकी है, वो जमा करो। सोचिए, जो इंसान अपनी जान दे चुका है, उसके घर वालों को यूनिफॉर्म का बिल भेजना, ये सिर्फ बेइंसाफी नहीं थी, ये बेहिस दिल का एक सबूत था। पर कहानी यहां से बदलती है। जब कॉर्पोरेट दिल पत्थर हो गए, तब इंसान जागा। पूरी म्यूजिशियन फ्रेटर्निटी ने मिलकर फैसला लिया,
24 मई 1912 लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल, 470 म्यूजिशियंस, 7 अलग अलग ऑर्केस्ट्रा, 7 मशहूर कंडक्टर्स। ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था, ये इंसानियत का जवाब था। हॉल कैपेसिटी से ज्यादा भर गया, हजारों लोग, कई ऐसे लोग जो कभी क्लासिकल म्यूजिक सुनने नहीं आए थे, पर उस दिन वो आए। और क्यों? क्योंकि कभी कभी संगीत सिर्फ कला नहीं होता, वो सम्मान होता है, वो एक प्रतिज्ञा होती है। उस रात जो पैसा जमा हुआ वो इन 8 परिवारों को दिया गया, पर पैसे से भी ज्यादा उन्हें इज्जत मिली। दोस्तों सोचिए, जब दुनिया टूट रही हो तब आप क्या करेंगे? बचने की कोशिश या किसी और को सहारा? टाइटैनिक के म्यूजिशियंस ने दुनिया को एक अजीब सी बात सिखा दी, कभी कभी हिम्मत तलवार से नहीं आती, कभी कभी हिम्मत वायलेंस से आती है। वो 8 लोग किसी किताब के हीरो नहीं थे, ना उनका नाम हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, पर उस रात उन्होंने डर के बीच एक शब्द लिखा, गौरव। और जब कॉर्पोरेट सिस्टम ने उनकी इज्जत को रौंदने की कोशिश की, तब समाज ने मिलकर कहा, इंसानियत अभी जिंदा है। आज हम फास्ट दुनिया में जीते हैं, हर कोई अपने लिए भाग रहा है, पर क्राइसिस के वक्त अक्सर आम लोग ही असाधारण काम करते हैं, जैसे टाइटैनिक के वो म्यूजिशियंस। उन्होंने किसी को बचाया नहीं, पर उन्होंने लोगों को डर के बीच 2 पल का सहारा दिया। और कभी कभी सहारा ही सबसे बड़ा बचाव होता है। जब टाइटैनिक डूब रही थी तब सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा, पर एक और चीज डूबने से बच गई, इंसानियत। और वो जिंदा रही 470 म्यूजिशियंस के सुरों में, रॉयल अल्बर्ट हॉल की गूंज में, और हर उस कहानी में जहां इंसान इंसान के लिए खड़ा होता है। आज अगर आप किसी अंधेरे पल में हो या किसी को अंधेरे में देख रहे हो, तो याद रखना, कभी कभी बस एक सुर ही काफी होता है, और कभी कभी सबसे बड़ा साहस यही होता है कि बस रुक जाना और बजाते रहना। कभी किसी के लिए बजाकर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: लाइफ का सबसे बड़ा सस्पेंस, घर से निकलते वक्त मम्मी का कहना, शाम को बात करते हैं। पूरा दिन इसी सस्पेंस में जाता है कि पता नहीं कौन सी गलती हुई है।

जब कैनवस गाने लगे, पानी, संगीत और रंग की कहानी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक पेंटिंग ऐसी भी है जिसे ब्रश से नहीं, आवाज से बनाया जाता है, और अगर मैं कहूँ कि उस पेंटिंग को बनाते वक्त कलाकार कैनवस को हाथ भी नहीं लगाता, थोड़ा अजीब लगेगा ना। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कलाकार की जो पानी की धुन को रंग में बदल देता है। नाम है ओलिवर बियर। लेकिन कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है तीन एंस की। जी हाँ, नॉवेल्टी, न्यूएंस और नरेटिव। पर घबराइए मत, मैं इसे सीधी सी जुबान में नहीं समझाऊंगी। पहला एन, नयापन यानी नॉवेल्टी। सोचिए, दुनिया में कितनी पेंटिंग्स बनी होंगी, कितने रंग, कितने ब्रशेस, कितने स्टाइल। पर ये आदमी क्या करता है? वो झील के पानी की आवाज रिकॉर्ड करता है। हाँ, सिर्फ पानी की आवाज। फिर उस आवाज को एक स्पीकर के थ्रू कैनवस के नीचे चलाता है। कैनवस सीधा जमीन पर पड़ा होता है, उस पर रंग या पिगमेंट बिखरा होता है, और जैसे ही वो एक सुर बजाता है, रंग हिलने लगता है, एक गोल आकार बनाता है, फिर एक फूल जैसा पैटर्न, कभी ज्योमेट्री, कभी जैसे एक मंडला। अगर सुर मीठा हो तो आकार समुंदर बन जाता है, और अगर सुर टकरा जाए तो डिजाइन टूट जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये साइंस है। आवाज की लहरें, कंपन, हवा का पानी पे नृत्य। पर फिर भी जो तस्वीर उभर कर आती है ना, वो किसी जादू से कम नहीं होती। आपने शायद नेचर के साउंड्स के बारे में सुना होगा। क्रिस वॉटसन जैसे लोग प्रकृति की आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, या एनिया लॉकवुड ने नदियों की धुन रिकॉर्ड की। लेकिन पानी की मेलोडी को सीधा रंग में बदल देना, ये सच में नया है। इसीलिए अगर ओरिजिनलिटी की बात हो तो मैं भी कहूंगी ये काम बहुत अलग है। दूसरा एन, गहराई, न्यूएंस। अब जरा मुश्किल की बात करते हैं। ये पेंटिंग बनना आसान है क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि कलाकार कैनवस को छूता ही नहीं। उसका ब्रश क्या है? उसकी आवाज। ओलिवर बियर पहले म्यूजिशियन थे, उनका कान ट्रेन्ड है। सुर थोड़ा ऊपर या नीचे हुआ तो डिजाइन बदल जाता है। वो एक सुर बजाते हैं, पिगमेंट हिलता है, फिर वो सुनते हैं और फिर सुर बदलते हैं, जैसे जैज में इम्प्रोवाइजेशन होता है। कंट्रोल भी है, खोज भी है। वो कहते हैं, मैं कैनवस को गाने देता हूं। क्या सुंदर बात है। सोच के देखिए, आप ब्रश से लाइन खींच सकते हैं, पर आवाज से? आवाज को इतनी ठीक जगह तक पहुंचाना, ये रियाज मांगता है। ये हवा और पानी की फिजिक्स है, ये साइंस और कला का मिलन है। ये रैंडम नहीं है, ये एक साधना है। और तीसरा एन, कहानी। अब सबसे जरूरी सवाल, ये पेंटिंग कहना क्या चाहती है? सिर्फ डिजाइन बनाना मकसद नहीं। एक बार नॉर्मंडी में एक शो हुआ। वहां एक तालाब है जहां मशहूर पेंटर क्लॉड मोने 30 साल तक बैठकर पेंटिंग करते थे। उन्हें हवा, रोशनी, एटमॉस्फेयर का जुनून सा था। वो कहते थे, दुनिया हवा में रहती है, हवा ही सब कुछ बदल देती है। ओलिवर बियर ने उस तालाब के नीचे से आवाज रिकॉर्ड की, पानी के अंदर की खामोशी, बुलबुलों की हल्की सी सरसराहट, फिर उस आवाज को चलाकर पेंटिंग बनाई। समझ रहे हैं? मोने हवा को रंग में पकड़ना चाहते थे, बियर आवाज को रंग में बदल रहे हैं। दोनों इनविजिबल चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
हवा दिखती नहीं, आवाज दिखती नहीं, पर दोनों महसूस होती हैं। और जब रंग कंपन से आकर बनता है तो वो ज्योमेट्री बनती है और बिगड़ती रहती है, बिल्कुल हवा की तरह, बिल्कुल संगीत के नोट्स की तरह। ये सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं, ये बेटन पकड़कर अपनी ही दौड़ लगाना है। थोड़ा सोचिए, आप जब गाना सुनते हैं क्या आप रंग महसूस करते हैं? कभी कभी एक सुर नीला लगता है, कभी लाल, कभी हल्का सुनहरा। और हो सकता है कि हम सबके अंदर एक कैनवस हो जो आवाज से बदलता हो। इसीलिए मुझे ये कला बहुत पसंद है, क्योंकि यहां मीडियम और मीनिंग अलग नहीं, आवाज ही ब्रश है, साइंस ही कला है, पानी ही रंग है। और सबसे खूबसूरत बात, कलाकार कैनवस को हाथ नहीं लगाता, वो कंट्रोल करता है, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ता है। जैसे जिंदगी में होता है ना, हम सुर बजाते हैं पर पैटर्न खुद बनता है, कभी सुंदर और कभी टूट कर फिर जुड़ता है। मैंने ये तीन एन के थ्रू देखा इस कहानी को, नयापन, गहराई और कहानी। पर ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, एक सहारा। अंत में कला का मतलब होता है आप क्या महसूस करते हैं। तो मुझे बताइए, अगर आपके शहर की नदी की आवाज से पेंटिंग बने तो उसका रंग कैसा होगा? यमुना की धुन, गंगा की लहर, समुंदर की गरज। आज रात जब हवा चले, जरा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है हवा में भी कोई डिजाइन बन रहा हो। बस हमें देखने की देर है। कभी कभी कला ब्रश से नहीं, लहरों से लिखी जाती है, और कभी कभी कैनवस भी गाता है। गुनगुना के देखिए।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। दोस्तों, आज का रंग है अनुभवों की विरासत और मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं ऐसे व्यक्तित्वों से जिनका जीवन केवल वर्षों का नहीं अनुभवों का खजाना है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही सधे हुए, संवेदनशील और गहराई से सोचने वाले व्यक्तित्व डीएन शर्मा जी, जिन्होंने अपना जीवन बैंकिंग जैसी अनुशासित दुनिया में बिताया पर दिल हमेशा साहित्य की भावनाओं से जुड़ा रहा। वे न केवल एक सफल बैंक अधिकारी रहे बल्कि हिंदी साहित्य के प्रेमी, सामाजिक रूप से सक्रिय नागरिक और अपने 95 वर्षीय पिता के समर्पित पुत्र भी हैं। उनकी कलम सामाजिक पाखंडों को बेनकाब करती है और उनके शब्द समाज के आईने में हमें अपना असली चेहरा दिखाते हैं। आज के इस विशेष संवाद में हम जानेंगे उनकी जीवन यात्रा, उनके साहित्यिक विचार, उनके सामाजिक दृष्टिकोण और वह दर्शन जिसने उन्हें हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखा है। तो आइए स्वागत करें डीएन शर्मा जी का और चले उनके साथ एक आत्मीय सफर पर अनुभवों की विरासत के इस प्रेरक संवाद में। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: चलिए शुरुआत करते हैं आपके पिछली जिंदगी से। आपने अपना एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग की दुनिया में बिताया, एक अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित यानी टारगेट ओरिएंटेड जीवन। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं

0: उस यात्रा को कैसे देखते हैं?
1: जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा 36 वर्ष 8 माह की मैंने बैंकिंग की सेवा की है। पंजाब नेशनल बैंक में कार्य किया और बैंक ने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं बिहार, गुजरात, हरियाणा आदि कई राज्यों में मेरी पोस्टिंग रही। वहाँ के लोगों से मिलना जुलना हुआ, वहाँ की संस्कृति को देखा, निकट से जाना। बिहार एक बहुत ज्यादा प्रचारित स्टेट है, लेकिन वहाँ पे जो मैंने निवास किया, वहाँ रहा, तो ये पाया कि वहाँ के लोग उतने ही सीधे और सरल हैं। बहुत ही अच्छा लगा, हालांकि वो बात बहुत पुरानी हो गई। 90 में हम वहां से वापस आ गए।
0: और
1: इसके साथ ही बैंकिंग जीवन में जो लक्ष्य थे वो बैंक में थे। बाहरी जीवन में हम ग्राहक सेवा और एक टीम वर्क, ये दो भावनाएं मुझे वहां से सीखने को मिली। आप एक अच्छी टीम के साथ जब चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और टीम बनाना आपके हाथ में, टीम के हर सदस्य का ख्याल रखना, तो अच्छी टीम का निर्माण का महत्वपूर्ण बिंदु। तो ग्राहक सेवा एक ऐसी सेवा है जो ना सिर्फ बैंक का नाम रोशन करती है, वरन एक जो कहते हैं ना कि मानव सेवा ही नारायण सेवा है, ये संघ का एक मूल वाक्य है। तो नारायण सेवा यानी कि भगवान की सेवा। आप किसी अत्यंत कष्ट में जो आदमी है उसकी अगर अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं तो वो ग्राहक सेवा बहुत उच्च स्तर की मानी जाती है, और वो हमने की है। कई बार ऐसा हुआ, एक बार एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा। राजकोट में मेरी पोस्टिंग थी, रात 11 बजे मुझे फोन आया कि साहब आपका एटीएम काम नहीं कर रहा। मैंने कहा आप जी? तो बोला मैं अपने पिताजी को शहर वहां गांव से लेके आया हूँ और मुझे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, एटीएम काम नहीं कर रहा और मुझे पैसे चाहिए। मैं तुरंत एटीएम पे गया, पास में ज्यादा 1.5 किलोमीटर था राजकोट में जहां मैं रहता था, वहां उसकी परेशानी को समझा। और सौभाग्यवश उस समय मेरे पास, मैंने कहा कितना पैसा चाहिए? कि साहब 5,000 चाहिए, आप चाहे तो मेरा ये कार्ड रख लें, मैं सुबह आके बैंक में आपको दे दूंगा पैसे। सौभाग्य से 5,000 रुपए, हम लोग बैंकर पैसे ज्यादा रखते नहीं है, लेकिन उस दिन किसी उस दिन किसी कारण से मेरे पास पैसे थे। मैंने कहा उसको मैंने वही पैसा दिया, क्योंकि वो बोला अब रात में मैं कहाँ जाऊं साहब। मैं तो इसी विश्वास पे आया था कि एटीएम से पैसे मिल जाएंगे, तो मुझे वो विश्वास उसका बरकरार रखना था। पैसे दिए, दूसरे दिन आके वो मुझे दे गया, बात आई गई हुई। लेकिन उस समय विशेष में अगर उसकी मैं हेल्प कर सका तो ये मेरे लिए अवसर था।
0: संतोष मिला आपको, संतोष मिला आपको, बिल्कुल सही,
1: बहुत ज्यादा। हाँ
0: चलिए।

0: तो
1: जी जी जी
0: बहुत सारे ऐसे गद्यों की पद्यों की मैंने ऐसे कंठस्थ हो गए जिन्हें मैं जोर जोर से बोल करके सुना था।
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: दिनकर साहब का तो रश्मि रथी है,
1: हाँ अच्छा, रश्मि रथी, बिल्कुल
0: अरे
1: बिल्कुल।
0: साहब वो बहुत, उसको भी मैंने बहुत गा गा करके भी सुनाया है।
1: अरे वाह, अरे
0: और
1: वाह, अच्छा।
0: हाँ, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही कोई चीज से खा लेंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे,
1: वाह, अभी सुनेंगे कभी। वाह, बहुत
0: पर
1: बढ़िया।
0: दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष समाज की लेने। बहुत लंबी है तो उसके ये 2-3 लाइनें थी। बाद में जब किशोरावस्था आई तो उस जमाने की जो पत्रिकाएं थी उनमें साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बी,
1: हाँ,
0: सारिका,
1: धर्मयुग, धर्मयुग।
0: धर्मयुग, ये अब बंद हो गई हैं,
1: हाँ
0: लेकिन
1: बिल्कुल,
0: इन्होंने ये साहित्य से ही जुड़ी सारी पत्रिकाएं
1: पत्रिका
0: थी।
1: पर, बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, और इनके जो विशेषांक आते थे किसी न किसी एक राइटर, किसी एक लेखक के
1: जी
0: जीवन जी
1: जी
0: को
1: जी
0: लेकर, तो उन
1: जी
0: लेखकों
1: बिल्कुल।
0: से भी मेरा वो हुआ। मुंशी प्रेमचंद हो, निराला जी हो, दिनकर जी हो, मनु
1: दिनकर
0: भंडारी
1: जी,
0: हो,
1: मन मिटा रहे हो,
0: फणीश्वरनाथ रेणु हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो, दिन हाँ
1: वृंदावन
0: मोहन
1: लाल
0: राकू,
1: वर्मा, वृंदावन लाल
0: वृंदावन लाल,
1: वर्मा, बहुत
0: मोहन
1: बढ़िया।
0: राकू, और हिंदी गजलों के सर्जक दुष्यंत कुमार तो मैंने सारिका से ही उनके यहाँ,
1: अच्छा
0: एक
1: अच्छा
0: पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। हाँ,
1: यारो, कौन
0: कौन
1: कहता है आसमान में
0: कहता है
1: सुराख हो नहीं
0: हो नहीं
1: सकता।
0: सकता।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: दूसरा कि
1: बिल्कुल।
0: हंगामा, सिर्फ हंगामा करना मकसद नहीं
1: रही
0: है,
1: मेरी
0: ये हालात
1: सूरत
0: या
1: बदलने चाहिए,
0: बदलने चाहिए था वो।
1: बिल्कुल
0: तो ये
1: बिल्कुल।
0: काफी इन्होंने जीवन में ये बातें अभी भी दिमाग में कौर की है। हाँ, और
1: आपकी इतनी सी बात ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी है। क्या बढ़िया
0: एक
1: बढ़िया पुरानी बातें, और वो हिंदी गद्य पद्य संग्रह आपने याद दिला दिया बचपन का, और
0: जी
1: कादम्बिनी, ज्ञानोदय, और धर्मयुग, और साप्ताहिक
0: हाँ
1: हिंदुस्तान की याद दिला दी। वाह, मजा
0: जी जी जी
1: आ गया।
0: कहा तो वो है ना,
1: चलिए,
0: मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है
1: जी जी जी दिनकर जी का, दिनकर,
0: दिनकर जी
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत
0: का ही है
1: बढ़िया।
0: ये ऐसी लाइनें हैं, अमिट है, ये हमेशा रहेगी जीवन जी, मानना फिक्स है।
1: बिल्कुल।
0: मैं

0: आपको हिंदी साहित्य से तो विशेष लगाव है ही है।
1: जी
0: कौन से विशेष लेखक, हालांकि आपने दो तीन लेखकों अभी नाम दे दिया, या कवि जो आपके मन पे सबसे गहरी छाप छोड़ गए हैं, कौन है
1: हाँ,
0: ऐसा?
1: एक तो ये पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, जो पुष्प की अभिलाषा बहुत
0: पुष्पी
1: ही,
0: अभिलाष। हाँ
1: क्या नहीं मैं फूलों में गूथा
0: हाँ
1: जाऊं,
0: हाँ
1: हाँ क्या नहीं मैं चढ़ा शीश पर हरी के इठलाऊं, है ना,
0: इठलाऊं
1: लास्ट में ना, कि मुझे तोड़ लेना बनवाली,
0: छोड़ देना
1: उस
0: उस पद
1: पद पर
0: पर।
1: तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ा।

0: जिस पर जाते वीर
1: वीर अनेक, बहुत बहुत,
0: ये बहुत अच्छी लाइनें थी जो अभी तक भी देश सेवा के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया
0: कहानियों में वो वीर का।
1: अब आपने रश्मि रति की बात की थी, आप चलिए कोई ऐसी रचना या कविता या पंक्ति जिसने आपके जीवन दर्शन को बदल दिया हो उसके बारे में कुछ बताएं, अगर उसको सुनाना चाहें थोड़ा सा ब्रीफ में तो आपका स्वागत है।
0: कविता मैं तो अपनी वो मेरी खुद की बताई हुई है लेकिन वो अभी सुनाता हूँ।
1: सुनाता हूँ
0: अभी बन पाई है, आज समय अभाव में ऐसा कम मिलता है लेकिन है कि भीतर जज्बात गड़े हुए,
1: अच्छा
0: भीतर जज्बात गड़े हुए बाहर मुकोटे चढ़े हुए,
1: ओहो ओहो,
0: सच की कीमत गिरती रोज झूठ के सिक्के गड़े हुए।
1: वाह अच्छा अच्छा,
0: नैतिकता के गीत सुनाए, नैतिकता के गीत सुनाए, खुद लाभ के राह बनाए, जन सेवा के वचन बढ़े पर कर्म स्वार्थ में लिपट जाए। और लास्ट है कि दिखावे के छंद रचे असली मूल्य तो कहीं गुम, सामाजिक मंच पर नाटक चलता, अंतःकरण में मूक है हम।
1: बहुत सुंदर। अब ये सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, सारा चीजें बदल गई हैं, धर्मयुग और ये सब चीजें तो पुरानी हो गई है, आप ये बताइए इसके आज के डिजिटल युग में आप हिंदी साहित्य की भूमिका को कैसे देखते हैं, क्या ये पिछड़ रहा है या नए रूप में उभर रहा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में?
0: पिछड़ तो नहीं रहा, स्वरूप बदल रहा है।
1: अच्छा।
0: पहले प्रिंट मीडिया था, आज डिजिटल मीडिया है। प्रिंट मीडिया में जब कहानियां उपन्यास या कुछ भी सृजन होता था, लिखा जाता था, वो थोड़े ही हाथों में जाता था, थोड़ी आंखें उन्हें पढ़ पाती थी, पर आज हर हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसपे आपकी कही हुई बात तुरंत सब जगह फैल जाती। तो वास्तविक रूप से तो जनमानस जो हमारा जो माइंड सेट है उसको प्रभावित करने का ये सोशल मीडिया है, यही तो है सर। पहले भी साहित्य यही करता था, पहले का साहित्य घटनाओं का घटनाएं घटने के बाद उनका वर्णन करता था, लेकिन शिक्षक तो एक अलग चीज थी, वो पिक्चर और उसमें वो अलग मीडिया है। लेकिन प्रिंट मीडिया में मैं जब बात करता हूँ तो जो फिक्शन कला जब घटनाएं घट जाती है उसके ऊपर उसका विवेचन होता था। आज तो दृश्य मात्र सब कुछ आपके सामने होता है, लोग हाथों हाथ उसके वीडियो भी बना देते, ये भी तो सत्यता आज बिल्कुल लोगों को जानने को मिल रही है, हर चीज उनके सामने है, तो उसके बाद वो अपने निर्णय ले सकते हैं क्योंकि माइंडसेट वैसा ही बनता है। तो सोशल मीडिया का जो प्रभाव है और जो साहित्य, यानी कि साहित्य नहीं रचा जा रहा, साहित्य भी है लेकिन जो बातें पुरानी है, इतिहास का भी हमें पहले जितना बताया गया था उतना ही मालूम है, लेकिन आज लोग उसको कुरेद के सारे प्रस्ताव के सामने ला रहे, तो बहुत अच्छा भविष्य, एक स्वरूप बदल गया, जागरूकता बढ़ गई, ये मैं मानता हूँ।
1: नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्विटर पे घटना घटती नहीं है, कोई स्टेटमेंट देता नहीं है और उसके रिएक्शन से एकदम ट्विटर पे या फेसबुक पे और इन पे आने शुरू हो जाते हैं।
0: हाँ।
1: और कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें एक्सीडेंट होते ही उसकी एकदम तुरंत खबर भी आ जाती है और रिलीफ भी पहुंच जाती है, हर प्लस एंड माइनस दोनों रिलीफ भी पहुंचती है, देखे दोनों ही बात।
0: दूसरी बात है कि युवा जो है जिसको अपन समझते हैं कि साहित्य में रुचि नहीं ले रहा, वो भी इसमें पूरा सक्रिय है ना, वो उसके पास पहले पहुंच रहा, वो उसके पास पहले पहुंच रहा, वो उसकी प्रतिक्रिया पहले आ रही।
1: बिल्कुल सही बात। अब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल होने लग गए और काफी सफल हो गए और काफी युवाओं की भीड़ भी होती है वहां,
0: और
1: तो
0: बहुत अच्छी है।
1: मतलब ठीक है, उसका अपना एक माइनस पॉइंट भी है, थोड़ा सा वहां कॉमर्शलाइजेशन है, लेकिन
0: हाँ,
1: फिर भी
0: वो एक
1: चल ही रहे
0: अलग
1: हैं
0: बात है।
1: वो
0: हाँ,
1: अलग बात है।
0: और ये जयपुर डायलॉग अभी होगा 7-8 नवंबर, मैं 3 साल से जा रहा हूँ, ये तीसरी बार होगा मेरे को।
1: हाँ, जयपुर डायलॉग आने वाला है, मैं भी जाऊंगा उसमें।
0: हाँ,
1: सर
0: तो
1: संजय
0: जयपुर डायलॉग,
1: संजय
0: संजय
1: हाँ
0: दीक्षित का तो
1: संजय
0: बहुत अच्छे,
1: दीक्षित
0: वहाँ सारे राष्ट्रवादी विचारकों के लोग आते हैं, उनसे
1: बिल्कुल
0: व्यक्तिगत आप मुलाकात करते हैं, उनसे सेल्फी खिंचवाते हैं, तो बड़ा आनंद आता
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आऊंगा। और मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका में रहता है, वो संजय दीक्षित का बड़ा फैन है, वो भी आ रहा है अमेरिका से सिर्फ
0: अरे
1: इसके
0: वाह,
1: लिए आ रहा है। भले, कमाल है
0: हाँ
1: ना।
0: कमाल नहीं, मेरे अपने राजकोट मेरे साथ जो काम किए हैं व्यास जी महाराज, वो भी आ
1: जी,
0: रहे हैं। उन्होंने
1: अरे
0: पहले
1: वाह
0: ही फोन
1: वाह,
0: कर दिया कि आप वही हैं, मैंने कहा हाँ, बोले मैं उसमें आ रहा
1: बहुत
0: हूँ सर, मैंने कहा आओ पधारो
1: बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: बोला।

0: गुड़ बैठी हलवैया तो कनिया आ रे बर्फी के सब रस ले लिया रे बिंजड़े वाले मुनिया।
1: चलिए तो ये जो आपने कविता भी सुनाई इससे ये लगता है कि आप समाज की जो दोहरी मानसिकता है
2: हाँ जी
1: या पाखंड है या हाइपोक्रेसी है इसको ये आपको सबसे ज्यादा खटकती है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ये क्यों हो रहा है और आपको ही क्यों ऐसा महसूस होता है कि हाइपोक्रेसी बहुत ज्यादा है हाइपोक्रेसी और पाखंड बहुत है हमारे समाज में डबल स्टैंडर्ड जिनको कहते हैं।
2: इसका मूल कारण जब मैं खोजता हूँ तो एक जो धारणा हम लोगों के मन में बिठाई कि पुण्य मिलेगा है ना एक आम धारणा बिठा देते ना ऐसा करने से पुण्य मिलेगा गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाएंगे ऐसा करने से यह होगा। भाई मूल तो यह है कि वो पाप करे ही क्यों ताकि धोना पड़े। दूसरा
1: अच्छा
2: पुण्य कमाना का आज जब मैं देखता हूँ अभी जा रहा था मेरे नाती को छोड़ने तो सड़क पर कुछ लोगों ने हरा चारा वहां रखा हुआ और गायें थोड़ी सी वहां कर रखी है और अब जो पुण्य कमा रहा है वो 10 रुपए की वो एक पुली खरीद के वहां बिखेरता वो सड़कों पे ट्रैफिक तो बर्बाद हो ही रहा ना ट्रैफिक का नुकसान हो लेकिन वो पुण्य कमा रहा है ऐसा पुण्य तो कोई काम का नहीं है। दूसरा बुजुर्गों की बड़े बूढ़ों की ये जो वृद्धाश्रम और ये जो खोल रहे हमारी संस्कृति में ही नहीं थे हमारे जीवन मूल्य ये कहते ही नहीं थे
1: जी।
2: जो वृद्ध था उसकी तो घर में ही सेवा होती थी
1: बिल्कुल सही कह रहे
2: हैं। तो ये जो जीवन मूल्य राजनीतिक सुचिता कहाँ है सर राजनीतिक सुचिता है? हम हाँ अच्छा हमारे समाज में ये कहते हैं कि कमजोर की सहायता तो करते नहीं है और विश्व के कल्याण का नारा लगाते हैं तो विश्व का कल्याण कब होगा जब मेरा पड़ोसी अगर वो किसी कारण से अभाव में है तो उसकी तुरंत सहायता हमको करनी चाहिए ना वो हम नहीं कर पा रहे तो ये है दिखावा। आप जा रहे हैं मंदिर में लोगों को दिखाने के लिए वहां खूब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डोर भी अगर कोई गरीब या कोई वीक आदमी है आर्थिक रूप से कमजोर है कभी उसको पूछेंगे नहीं जाके कि भैया क्या हाल है कुछ चीज की जरूरत हो तो मुझे बता। तो ये अगर ऐसा करे तो अपने आप ही सारा समाज स्वस्थ हो जाएगा सब ठीक हो जाएंगे ऐसा मैं देखता हूँ। और
1: सही
2: दोहरी मानसिकता सर अब खाली इसमें ही नहीं है आप देखें आर्थिक जीवन मूल्यों का तो बहुत ही पतन हो अगर आर्थिक जीवन मूल्य का मैं यही मानता हूँ कि आज देखते हम मिलावटी क्यों मिलता है सर नकली क्यों होता है हर मसाले खाने की चीज जिससे हमारा स्वस्थ रहना है आदमी को उसमें मिलावट नकली मिठाइयां आ रही है नकली मावा आ रहा है तो ये आर्थिक रूप से मैं इसको आर्थिक जीवन मूल्यों का पतन देखता हूँ वहां पारदर्शिता नहीं है आप कमाए ना भाई हर एक आदमी बैठा है कमाने के लिए रोजी रोटी है आप आजीविका करें लेकिन जीवन वहां पे भी तो मूल्य रखें कुछ कि मैं कुछ भी हो जाए मैं नकली या ये सब स्टैंडर्ड का काम नहीं करूंगा ये यहाँ मैं वो देखता हूँ। हम देखते सारे सरकारी हर आदमी क्यों भाग रहा है सरकारी नौकरी मिल जाए क्यों क्योंकि वहां वो तनख्वाह जो मिलेगी ना काम करने की वो उससे संतुष्ट नहीं होता वो तो काम करने के अवज में जो मिलने वाला है उससे संतुष्टि आती
1: है।
2: अच्छा मुंशी प्रेमचंद ने साहब इसको कब नमक का दारोगा 100 साल
1: नमक का दारोगा बहुत साल
2: उसने लिख दिया था कि ये ऊपर की इनकम तो वो ये अमावस्या का चांद है जो दिखता नहीं है लेकिन बढ़ता जाता
1: है
2: और खाली तनख्वाह तो पूर्णमासी का चांद है जो एक बार दिखती है महीने और बाद में सिनेशन है लुप्त हो जाती है वो चीजें आज भी जब है समाज में हम ठीक नहीं कर पाए ये मेरे को कचोटती है बात
1: कचोटती।

0: बिल्कुल यार, मुझे भी आपकी बातों पे याद आ गई, एक सज्जनता का दंड एक प्रेमचंद जी की कहानी हुआ करती
1: हाँ प्रेमचंद
0: थी
1: जी
0: तो
1: ने तो
0: उसमें
1: प्रेमचंद
0: भी
1: जी ने जो वो सामान्य मानसिकताओं का जो वर्णन किया ना, वो सब वो
0: बहुत
1: अभी तक मैं
0: बहुत
1: उनके नजदीक किसी को नहीं पाता।
0: बिल्कुल
1: उनकी
0: बिल्कुल सही
1: गहरी
0: बात है,
1: संवेदनशील लेखन जो था ना उनका, एक आदमी
0: बहुत
1: के अंदर तक घुस करके उसकी भावनाओं को जो उजागर किया है, कोई भी कहानी उठा ले वो
0: कोई भी
1: अभी
0: कहानी उठा
1: तक। हाँ अभी मैं बहुत कम साहित्यकारों को ऐसा मानता हूँ, हालांकि सबकी अपनी अपनी विधा है,
0: ना,
1: सब
0: सही
1: अपने
0: बात
1: अपने क्षेत्र में है, लेकिन
0: है।
1: वो मानवीय मूल्यों और ये संवेदनशीलता को जो लिखा है वो मुंशी प्रेमचंद।
0: बहुत बहुत सही बात है, क्या पुरानी बातें याद आ गई आपके साथ बात करके। अब साहित्य समाज में परिवर्तन ला सकता है, या कुछ लगता है आपको कि अगर साहित्य पॉजिटिव लिखे या अच्छा लिखे तो उससे कुछ समाज में परिवर्तन आ सकता है, क्या किया जाए इस स्थिति में?
1: देखो अभी मैं जब साहित्य के बारे में अपन बात करते हैं तो मैं ये
0: जी
1: देखता हूं कि अभी युवाओं का जो हुआ ये एक IITian हुआ है ना, जिन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड हाफ वाइफ और ये जिसपे एक पिक्चर भी बनी है अभी एकदम से विस्मृत हो रहा है नाम उसका, तो उनका साहित्य
0: अच्छा,
1: देखा हूं तो युवाओं के लिए तो उन्होंने कम से कम चार पांच उनके अच्छे उपन्यास हैं।
0: चेतन भगत की बात कर रहे हैं क्या आप?
1: हाँ चेतन भगत, चेतन
0: चेतन भगत की
1: भगत
0: बात कर रहे हैं?
1: है, वो
0: हाँ
1: भी साहित्य
0: चेतन,
1: है। तो
0: हाँ हाँ
1: उन्होंने
0: वो भी सर।
1: लेकिन उन्होंने मैंने पढ़ी उसकी दो दो उपन्यास मैंने पढ़े हैं उनके,
0: हाँ मैंने भी पढ़े,
1: तो
0: मैंने भी पढ़े।
1: वो जो युवा है ना उसके आज की परिस्थितियां, आज में उसके द्वारा किए गए कार्य या आज किस प्रकार से वो रिएक्ट करेगा उसका वर्णन किया, तो वो इतना प्रभावी और परिवर्तन वाला मैं नहीं मानता उस साहित्य को। अभी मैं देख रहा हूं कि समाज में धार्मिकता का एक ज्यादा बोलबाला चला हुआ है अभी पूरे समाज में,
0: जी
1: कोई
0: जी
1: भी
0: जी
1: हो, कोई भी
0: बिल्कुल
1: चाहे
0: बिल्कुल
1: हिंदू
0: बिल्कुल
1: हो मुस्लिम
0: हो
1: हो
0: जा,
1: क्रिश्चियन
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हो। तो मेरा ये मानना है कि ये वास्तविक परिवर्तन तो हमारे गुरु लोग हैं या संत महात्मा, अभी भी देखते हैं हम एक महात्मा जी अगर प्रवचन देने आए हो वो पंडाल भरे हुए हैं, तो
0: पंडाल भरे हो जाता
1: है
0: है।
1: आप देखें अभी
0: और
1: विद्याधर नगर में भी काफी ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं,
0: हाँ हुई है, और महिलाओं की
1: स्टैम्पेड भी
0: संख्या
1: होती है,
0: बहुत होती है उसमें,
1: बहुत
0: महिलाएं
1: होती है।
0: तो भरी पड़ी है, भरी पड़ी है,
1: हाँ साहब, तो
0: क्या है।
1: वो है संत महात्मा। अच्छा मुल्ला मौलवी है, मौलवी साहब ने मस्जिद में जो तकरीर कह दी है वो ज्यादा प्रभावी है, तो वो अगर हमारे समझदार होंगे तो वो समाज को परिवर्तित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही।
1: ये मेरा ऐसा मानना है कि हम क्योंकि अभी भी हम धर्म गुरुओं के उपदेशों से ही प्रभावित होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं और आगे भी
0: आज भी हो
1: होंगे,
0: रहा है।
1: तो भले ही हम कहते रहे कि हमारी सोच, हम तो बहुत वैज्ञानिक हैं लेकिन कर्म कांडों से तो मुक्त ना हो पाए हम। तो
0: बिल्कुल सही बात।
1: परिवर्तन परिवर्तन के लिए मुख्य जो हस्तियां हैं तो वो उनमें मैं इनको मानता हूं कि साहित्य एक उसकी रीच बहुत कम है, साहित्य को बहुत कम लोग पढ़ते हैं तो
0: बिल्कुल सही
1: इनकी
0: बात।
1: रीच ज्यादा है, तो अगर वास्तविक परिवर्तन लाना होगा तो हमें इनसे ही इनसे गुजारिश करनी होगी कि ये अच्छी बातें बताए
0: सही बात,
1: है। वैसे हमारा दर्शन बहुत बढ़िया, सनातन का भी दर्शन बहुत बढ़िया, विश्व बंधुत्व की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया है, यही सब हमारे है, हमारे विश्व का कल्याण हो यही कहते हैं ना बाबा। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यही है।
1: ये ज्यादा प्रभावकारी और परिवर्तनकारी इन लोगों की भूमिका है, ये अच्छे होने चाहिए। और दूसरा
0: बिल्कुल
1: हमारे
0: सही।
1: जो शिक्षक वृंद है जो प्रारंभिक शिक्षा देते हैं, बड़े नहीं प्रारंभिक, क्योंकि वहां हमारा बेस तैयार होता है, हमारी सोच का जो बेस है मूल वो वहां तैयार होता है, वहां पे हमें जो भी हमारे शिक्षक वृंद है वो इतने उत्तरदायी अपने आप को समझे कि यार मेरा ये ड्यूटी है मैं बच्चों में अच्छे संस्कार डाल, तो वहां से शुरू होगा, मेरा ये मानना है कि
0: बिल्कुल
1: समाज
0: सही
1: में
0: है,
1: पर
0: ये पॉइंट आपका बहुत सही है। शिक्षक की जो समाज में स्थिति अब बन गई है
1: बन गई है। हाँ
0: वो बहुत ही पीड़ादायक है। मैं तो यही कहूंगा, एक जमाने में गुरु का जो प्राइमरी का स्कूल का टीचर होता था वो जिंदगी भर याद रहता था, और कितना भी आदमी बड़ा बन जाए उसके जाके चरण स्पर्श
1: पांव
0: करता था,
1: छूते ही थे, पांव
0: पांव
1: छूते ही
0: छूते
1: थे सर।
0: पांव छूते थे।
1: आज
0: लेकिन
1: भी
0: अब
1: हम तो
0: तो
1: छूते हैं, हम तो छूते हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे जो पुराने गुरु हैं। अब
0: अब
1: नई जनरेशन
0: ये
1: नई,
0: पंचायत नगर पालिकाओं ने इनने बिल्कुल टीचर्स का बहुत बहुत ही वो एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है, पर पूरा
1: एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ है। दूसरा, वो अपनी जवाबदारी से भी मुक्त हो गए। वो उनका ये मानना है कि
0: बहुत
1: ये इतना पैसा मिल रहा है, ये काम किया जरा
0: बहुत है,
1: ये।
0: बहुत। और
1: हाँ,
0: फिर सरकारी नौकरी है इसलिए कोई बात है नहीं।
1: इनका कुछ है नहीं। अच्छा, पढ़ाने का काम सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे
0: वो लंबा
1: हैं
0: लंबा लंबी डिस्कशन है।

0: चलिए, अब थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन की तरफ आते हैं आपके।
1: जी
0: आपसे चर्चा में पता लगा आप अपने 95 वर्षीय पिता की देखभाल कर रहे हैं।
1: जी जी
0: ये बहुत ही अलग है। ये अनुभव आपको जीवन, धैर्य और परिवार के बारे में क्या सिखाता है, और क्या ऐसा इमोशनल कनेक्ट है आपका अपने पिताश्री
1: जी
0: से, जिसको आप इस तरह से कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं हमें।
1: जी सर, हमारे तो हमारी जो मूल अवधारणा है ही कुटुंब की। हाँ, कुटुंब में जो सबसे बुजुर्ग होते थे उनकी एक आवाज भी सारा कुटुंब सहम जाता था, पूरा परिवार। याद करें सर आप भी, और आज
0: बिल्कुल
1: स्थितियां कहाँ आ गई हैं। आज आज अपने बच्चे या ग्रैंड ग्रैंड सन्स भी यही कहते हैं, अरे आप तो कुछ पता नहीं सर, आप कुछ नहीं
0: बिल्कुल
1: जानते। लेकिन हमारे सांस्कृतिक मूल्य वही हैं, जीवन मूल्य वही हैं। अब पिताश्री आज 95 पूर्ण करके, अभी 96 तो हम मनाएंगे, उनकी दिवाली के बाद आती है उनकी, हर साल हम उनकी जन्मदिन मनाते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। अब
0: बहुत
1: क्या है,
0: सुंदर
1: शारीरिक शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए, तो चलने में
0: जी।
1: भी उनको मैंने बिल्कुल मना किया हुआ कि आपको कहीं पे भी जाना हो तो मुझे बोला, मैं साथ चलूंगा। तो जितनी भी चिकित्सकीय जरूरत है होती है, तो इस एज में डॉक्टर को
0: नेचुरली
1: दिखाना है मैं जाऊंगा साथ में, दवाई लानी है मैं जाऊंगा साथ में। मैं जब उनके सुबह सुबह का मेरा समय होता है 11 बजे के आसपास, तब उनके पांव दबाने का और हाथ दबाने, तो
0: अच्छा।
1: जूही में वो शुरू करता हूँ ना सब, तो वो निद्रा में ही चले जाते हैं। वो सुख की उनकी जो अनुभूति है ना,
0: अरे
1: निश्चिंत
0: वाह,
1: होकर के, तो
0: हाँ
1: वो मुझे जो ऊर्जा देता है ना, वो दृश्य वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ कर पा रहा हूँ, भगवान की इतनी कृपा हुई है मेरे पे कि हम कुछ कर पा। दूसरी बात, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब समाज में, वो द्विगुणित होके त्रिगुणित होके वापिस आएगा।
0: वापस
1: हम
0: आएगा।
1: बिल्कुल, हम जैसा जो भी कर, हम अगर किसी को गालियां और ये दे रहे हैं तो वो उससे उससे ज्यादा हमको पड़ने वाली है आगे। क्या तो हम अगर ये संस्कार अपने बच्चों में दे पा रहे हैं कि हम ये भी करते हैं, तो उनमें भी वो संस्कार आएंगे। हालांकि मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है कि लोग ऐसा मुझसे भी करें, लेकिन अगर संस्कार है तो स्वभावतः ही वो होगा,
0: सही
1: ऐसा
0: बात
1: मैं
0: है, बिल्कुल
1: मानता हूं। तो ये है,
0: सही, बिल्कुल
1: तो
0: सही बात है।
1: पिताश्री का तो जो पितृ ऋण है वो तो हम चुका तो नहीं सकते, तो उसको थोड़ा थोड़ा किस्तों में इस प्रकार से हम पूर्ण हुआ चाहते हैं। तो और सुख जो मिलता है वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी है भाई।
0: ये बहुत ही सुंदर विचार है, और कुछ बड़ा पीड़ा का विषय है कि आज के समाज में ये प्रवृत्ति बहुत ही कम है। बच्चे महानगरों में रह रहे हैं, कुछ विदेश में रह रहे हैं, तो पिता को जो
1: बिल्कुल बिल्कुल छोड़
0: सेवा
1: देते
0: करने का
1: हैं,
0: जो सुख है वो तो
1: वो
0: बिल्कुल।
1: नहीं मिल पा रहा है। हाँ
0: मैं किसी जमाने में बापूनगर में था, तो बहुत सारे ऐसे लोग आया करते थे बैंक में,
1: हाँ
0: जो इस तरह से,
1: हाँ
0: क्या कहें इसके बाद।
1: उसी को
0: बहुत,
1: देख के तो जैन साहब ने टाइम बैंक बनाया
0: हाँ, टाइम बैंक बनाया है हमारे पीसी जैन साहब ने, बिल्कुल सही
1: तो
0: बात।
1: वो टाइम बैंक क्या है, आप समय दो बुजुर्गों को,
0: यही है, समय दो, जो लोग लोनली है उनको समय दो, यही बात है, बिल्कुल सही
1: उनको
0: बात,
1: समय ज्यादा चाहिए सर। वो
0: बिल्कुल
1: आज की तारीख में, हमारी माताश्री चली गई थी 2014 में, तो
0: जी।
1: उसके बाद वो जो लोनलीनेस होता है ना एक, तो
0: हाँ,
1: वो
0: वो
1: भाव, वो उनकी बात सुनेगा कौन
0: कौन
1: वो।
0: सुनेगा, बिल्कुल
1: और दूसरी कोर्ट में कहा दिया है कि सुनते नहीं है, तो वो
0: हाँ
1: स्थितियां ऐसी है कि हम कोई बात कहें भी तो 2-3 बार में धीरे से कान के पास ले जाकर वो
0: क्या
1: समझाना पड़ता है।
0: सुन, समझाना पड़ता।
1: तो उनका जो वो, मैं कंपेयर करता हूँ, मेरे ग्रैंड सन मेरा जो पोता है उसकी
0: जी
1: हरकतें है और पिताश्री की हरकतें, वो मिलती
0: मिलती है, बिल्कुल,
1: जुलती
0: कहता है
1: है। तो
0: बचपन वापस आ जाता है, बिल्कुल
1: हाँ
0: सही
1: सर,
0: बात,
1: वही केयर उनको देते हैं वही केयर इनको चाहिए, हमको भी तो मिली है सर।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: ये है मेरी भावना।
0: बहुत अच्छा।

0: सामाजिक रूप से भी सक्रिय हैं, किन
1: जी.
0: सामाजिक मुद्दों या गतिविधियों से जुड़े हुए हैं शर्मा जी आप?
1: सामाजिक में तो देखो सर, मैं एक ही बात मेरे को ये समझ में आई कि सेवानिवृत्ति के बाद आप जब दैनिक कार्यों से मुक्त हो जाते हैं, अब जाना नहीं है कहीं ड्यूटी पे नहीं जाना है, तो आपके पास समय होता है तो एक रिक्तता आ जाती है, अरे अब क्या करें.
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: बात है.
1: तब जुड़ा मैं संघ से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से,
0: आरएसएस से जुड़े. अच्छा अच्छा
1: जी. उसमें नियमित है मेरा सुबह का 1.5 घंटा शाखा में जाना और ये
0: अच्छा.
1: सब कर. वहां की मूल भावना है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे. तो वो देश को दें या समाज को जो कुछ हम दे पा रहे हैं. तो हमारे यहाँ एक और है, उसमें सेवा विभाग है. तो
0: अच्छा.
1: सेवा विभाग में कुछ ऐसी बस्तियां होती है या क्लस्टर रूप में लोग रहते हैं, वो वंचित
0: अच्छा.
1: हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित है, अभावग्रस्त है. तो
0: अच्छा.
1: ऐसे लोगों की जो बस्तियां हैं, अभी जयपुर शहर में 223 के करीब ये ऐसी बस्तियां चिन्हित की हुई. वहां जाकर के
0: अच्छा.
1: जी,
0: जी.
1: वहां पे बाल संस्कार केंद्र है, वहां 4 प्रकार के आयाम है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य चिकित्सा का है और स्वावलंबन का है, एक शिक्षा का है और स्वरोजगार का है. इनके
0: अच्छा.
1: तहत इनके तहत हम उनको वो कार्य करवाते हैं बाल
0: अच्छा.
1: संस्कार में. अब ऐसी ऐसी बस्तियां जहाँ वो सब पेरेंट्स तो निकल जाते हैं लेकिन बच्चे रहते हैं, वहां 2-3 घंटे के लिए एक कोई शिक्षिका लगा के उनमें संस्कार जगाते हैं कि किस तरह उठना चाहिए, बैठना चाहिए, कुछ नहीं है. तो एक तो वो कार्य है. दूसरा
0: अच्छा.
1: अपना, दूसरा अपना ये है ही सर, ये एसोसिएशन में भी अब पुराने साथी हैं, सब मिल करके देंगे आप.
0: उसमें मिलते हैं, मिलते हैं. वो तो है ही.
1: उसमें भी सचिव बना दिया मेरे को ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन में
0: जी जी जी
1: जयपुर यूनिट का. तो उसका भी कार्य रहता ही.
0: उसका
1: अब आज आज ही शाम को 4 बजे बैठक रखी है उसकी त्रैमासिक.
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत बढ़िया.
1: ये है समाज में.

0: तो चलिए, अब मैं एक सिर्फ अंत में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सफलता और सुख की परिभाषा अब आपके लिए क्या है इस दौर में, और क्या ये आपके युवा दिनों से अलग है जब आपने पहले कुछ सोचा था और अब कुछ महसूस होता है? क्या कैसे परिभाषित करेंगे?
1: देखो सर, सफलता हम तब मानते हैं कि जैसे आज आज की तारीख में मेरी सारे जवाबदारियां, जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो पूर्ण हो चुकी हैं। सभी बच्चे मेरे अच्छे अच्छे अपने कार्य कर रहे हैं, अपने अच्छी जगह हैं। मेरा बेटा अभी IBM में है, अच्छी पोजीशन पे है। एक एक बेटिया SBI में सीनियर मैनेजर है, और एक बेटी लेक्चरर है वहाँ जोधपुर में। तो वो सब
0: अच्छा
1: अपने
0: अच्छा
1: अपने क्षेत्र
0: अपने
1: में
0: अपने
1: अच्छा,
0: सेटल
1: हाँ अच्छा कर रहे।
0: सर।
1: तो वहां तक तो ठीक है। अब आता है बात सफलता और सुख। तो सफलता तो यह है कि आपने सबको अच्छा किया है। अब सुख की परिभाषा मैं ये समझता हूं कि एक स्वस्थ शरीर और सकारात्मक दृष्टिकोण, ये दोनों है तो हम सुख में है। हतोत्साहित तो नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे, सफलता या असफलता, हमारे अपने कर्मों पर ही तो आधारित है। हम उसे कितनी कुशलता से, कितने योग्यता से करेंगे, वही तो है। तो
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और कृष्ण भगवान ने कहा भी, कर्म तो हर इंसान को करना ही है। कर्म तो आपको कर्मशील तो रहना ही है। तो कर्म जब करेंगे ही और उनका परिणाम भी मिलेगा ही, तो फिर अच्छे कार्य क्यों ना किए जाए। ये मेरा एक मूल सिद्धांत रहा है और मैं अपने जीवन से अभी बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हाँ, युवावस्था में क्या अलग थी विचार। युवावस्था में तो एक छोटी छोटी बातों पे भी हम कुंठाग्रस्त हो जाते थे, और
0: हाँ
1: ये
0: सही
1: क्यों
0: बात
1: नहीं हुआ है। और
0: है।
1: ये वो
0: सही बात
1: कुंठाएं आपको विचलित भी करती है। तो उनपे अपन को कंट्रोल अब तो खैर अध्यात्म भी थोड़ा बहुत अध्ययन करने को मिलता है, करता भी हूँ। तो वहां जो दर्शन है हमारा जीवन का, वो बिल्कुल अलग है। और ये क्योंकि वो अध्यात्म में तो संन्यास है और इधर कर्मयोग है। तो कर्मयोग जो अभी जो लोग कर्म में है, उनको तो कर्म करते ही रहना और योग्यता के साथ
0: बिल्कुल
1: कर।
0: बस बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: जी
0: तो शर्मा जी, बहुत ही खूबसूरत सच्चा संवाद रहा आज का, और DN शर्मा जी ने हमें सिखाया कि जीवन की सफलता केवल कैरियर या पद में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों, संवेदनाओं और रिश्तों को निभाने में है। इनकी यात्रा हमें एहसास कराती है कि उम्र के साथ अनुभव बढ़ते हैं और अनुभवों के साथ जीवन की गहराई। बैंकिंग की दुनिया से लेकर साहित्य के संसार तक, और अब समाज के उत्थान के प्रयासों तक, उनका हर कदम हमें प्रेरित करता है। हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं शर्मा जी का, और आज हमारे साथ अपनी सोच और संवेदना और आज हमारे साथ अपनी सोच और संवेदनाओं को साझा करने आए हैं। श्रोताओं, याद रखिए, जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम कर्तव्य, करुणा और कर्म तीनों का संतुलन साध पाते हैं। इस प्रेरणा के साथ आज हम आज के कार्यक्रम के रंग अनुभवों की विरासत को यहीं विराम देते हैं। मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं DN शर्मा जी का श्रोताओं की तरफ से, रेडियो स्टेशन की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमें मौका मिला तो हम शर्मा जी को फिर कभी कष्ट देंगे। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: से आरजे भावना आपन हंगला भाइयों नु घरु घरु स्वागत करिए से आपरा झाबुआना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 10.8 एफएम झाबुआनी आवाज पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे भावना और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 10.8 एफएम झाबुआ की आवाज। आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है लूना भूरिया जी, साथ ही हमारे रेडियो स्टेशन के संचालक श्री

0: बेनेडिक्ट डामोजी।
1: आज के युवा और उनके शिक्षा को लेकर इनके बीच चर्चा की जाएगी। सुनते हैं वार्ता युवा की शिक्षा पर और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
2: मारा वाला भाइयों अने बहनों अने जुवान सोरा अने सोरियो, आज अपना रेडियो टंटिया भील पर हमारो माननीय श्री लूणा जी भूरिया, मुख्य अभियंता मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज रक्षा मंत्रालय आहर को आयो है। इन्हों हम घणो घणो स्वागत करी है। ये 35 साल तक ही नहीं सेवा करी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में, अने सिविल इंजीनियर GSITS कॉलेज ही करीन अही नौकरी में गेला। ये रेवा वाला से गांव गुंदी खेड़ा तेसल बदनावर धारना, हाँ हम घणो घणो इन्हों ने स्वागत करी है। आज ये आपून अपना युवा पीढ़ी हारू प्रेरणा स्वरूप शिक्षा ने हूँ जरूरत से अपना सोरा सोरी किकम अगल भणीन अगल बढ़ी सके तीनी बारा में बे बात कहवा हारू आया से। ते हूँ भूरिया जी तमारो घणो घणो स्वागत करी हमारा युवा ने तमू अपनी बात संदेश आलो।
3: धन्यवाद डामर साहब। हूँ या अतरा दिवस थी वाट जोवी रह्यो थो कि कदी हूँ मारा भाईबंदो ने नानाओ ना भेळे जाऊं ने वणा ने शिक्षा का ऊपर काई दो बात कहूँ। आज मने यो प्लेटफॉर्म या मळ्यो ने हूँ तमारा वश में बैठी ने दो बात करांगा। शिक्षा समाज नो आधार है। शिक्षा का वरना आज का जमाना में काई नहीं। पहला अभण हता तो अभण में कतरी परेशानी आती हमारा पूर्वजों जाने, हमारा बाप दादा कतरी परेशानी जो भी ने काम सलाड्यू।
2: खरी बात
3: आनी बात ने हमसी ने अबे धीरे धीरे नाना नानी सब बढ़वाने जावा लगा। या बड़ी खुशी की बात है कि आज 18 साल बाद अभी बढ़िया गण्या नाना नानी अगली जगह देखवाने मिले अने देखी ने मन राजी था कि सालो मारा हाथे का मारा समाज का अतरा बढ़ेला है। पर अबे खाली बढ़वास थी काम नहीं साले बढ़िया। पहला कहता है कि बढ़िया पर गुणिया कोई नहीं, बढ़वाना हाथे हाथे गुणवानो भी से
2: है। आप हर का एम कैसे कि भणे अतरा भूले पड़े हैं भी अपना बाप दादा केवा पण लागी गया से। ये केम केवा लागी गया साबी
3: ने भूले पड़या पर आपने कई जे हाउ वाट पकड़ लो तो हारा नी हाउ वाट पकड़ी तो भूले थाया।
2: हाँ खरी
3: जे भणवानो एम नी कि खाली भणो तो भणी नी सोपड़ी पड़ी ने किताब भणी ने कहा भणी गया। बने बनवाना बाद में जीवन में मेरे को कई महत्व है न कई उपयोग थाय यो होसवानु से आनी बात ने आगल वदाड़ता हूँ। अबे हमाने अपना बारा में थोड़ी सी बात कहूँ कि हूँ भी गांव तीज निकलेलो से। गांव में पांचवी तक में गांव में ज बनियो, छठी ती लेने ग्यारहवीं तक बदनावर स्कूल में बनियो, त्याती फिर इंदौर जाता रहा कॉलेज में भण्या। घणी वक्त घणी परेशानी आई पर पासे फरीन नहीं देखियो।
2: बराबर
3: यो मन में पक्की बात रखवानी कि जीवन में जहाँ जाओ वहाँ अपना के मुसीबत तो आवे पर मुसीबत थी घबराणो नहीं।
2: बराबर
3: जे घबरावा तो अपने वाट में ज रुकी जावा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं थाय। एम करीने हूँ यूँ कहूँ कि छाए थोड़ी आगे पासे मुसीबत तो की लेवानी, मुसीबत थी पार थाई ने भणवानो से भणवानो भी अतरुने की दसवीं थाई गया तो घणु भणी लीधु। आज का जमाना में दसवीं की काई वैल्यू कोई नहीं।
2: बिल्कुल तमु भण्या है ते बिजली पण नहीं होय तमार घेरू में।
3: घेरों में हूँ तो पांचवी तक तो दीवाम भण्यो ने बदनावर जा जा फरे लाइट थी छात्रावास में तो वहाँ छठी थी लेन आगे तक तो लाइट में बढ़िया। पर गांव में पांचवी होती दीवा में बढ़िया।
2: दीवा बढ़िया समनी है।
3: हाँ समनी में समनी हलगे ने अभी तो गांव में गांव बिजली थाएगी तो अभी तो कई यही कहीं मुश्किल कोई नहीं। पर यो है कि बदा ने मन लगे ने भणवानो से मीन्स एम नहीं कि डीजे बाजी रहो ने ना समझ जाइ रहा ना ही फरी रहा વહી ફરી રહ્યા. અભે પહેલા હરકું નહીં, પહેલા જે ભણતા તો કોઈ ગામ હતી, દો ચાર સોરા ભણી ગયા તો કહેતા ભણેલા સોરા. હવે ગામે ગામ સ્કૂલ થઈ ગઈ, કને કને સ્કૂલ થઈ ગઈ, તો ભણો તો ખરા પર ભણવા ભણો અતરા કી આગે જઈને થમું કમતી કમ કાલે સુધી ભણો તો ભણવા કુ મજો આવે, ની કાલે સુધી નહીં ભણો તો ભણ્યા નહીં ભણ્યા બરાબર થાય.
2: સાહેબ કઈ નહીં, હું ભણવું જોઈએ તો આપણને ધંધો પાણી મળી જાય જડદીન.
3: ભણવા મેં દેખો દસમી તક તો સબ કે કામન એક હરિકા વિષય રે, સબ દસમી સુધી તો સબને ભણવાનું છે. દસમી આજ કા પહેલા જમાના કા પાંચમી કા બરાબર વહી ગઈ. દસમી હે બોર્ડ કી પરીક્ષા હે, બધું યા સુધી ભણેલા સોરા હગળું જાણે. આજકાલ સ્માર્ટફોન મોબાઈલ આવી ગયો તો મોબાઈલ થી નરી વાતો, જો પેલા ની માલમ હતી વા બી માલમ જોઈને ભણી લો, પર જ્યાદા ધ્યાન મોબાઈલ પર નહીં દેવાનું. ભણવાનું બી અત્રુ જ ધ્યાન ભણવામાં દેવાનું, મોબાઈલ મેં બી જોવાનું પર અત્રુ નહીં જોવાનું કે મોબાઈલ કા પાસે જ પડી જાઓ. આપણે દસમી કા બાદ મેં આપણા કે દસમી મેં જ પહેલાં વિચાર કરવો પડે કે હું કાંઈ થવાનું, મારે આગે જીવનમાં કાંઈ કરવાનું, હું ટેકનિકલ લાઈનમાં જાઉં કે મેડિકલ લાઈનમાં જાઉં કે મેનેજમેન્ટ લાઈનમાં જાઉં કે આઈટીઆઈ સ્કિલ ઇલેક્ટ્રિશિયન વણું કે મેકેનિક મેં કંઈક કરું કે એસા. આજકા જમાના મેં ઘણા પ્લેટફોર્મ ખુલ્લા હે, આપણે પહેલાં વિચાર કરવાનો કે મારે કંઈ થવાનું જીવનમાં. યો દસમી પાસ વેતા વેતા વાત પાકી કરી લેવાની કે કંઈ કરવાનું, મારે હું ટીચર લાઈનમાં જવા કહું, મારે સમાજ સેવા કરવી કે મારે એન્જિનિયર બનવો કે મારે ડોક્ટર બનવો કે મારે સાયન્ટિસ્ટ બનવો કે યો વિચાર, યા મારે આઈએએસ આઈપીએસ કી તૈયારી કરવાની કે પીએસસી કી તૈયારી કરવાની, આપણે પ્રશાસન મેં જવાનું કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ કી તરફ દેખણો કે મિલિટરી મેં જવાની વિચાર કે બીએસએફ કે સીઆરપીએફ કે યો વિચાર પહેલા કરવાનો વિચાર એકદાણ મન મેં થઈ જાય કે મારે યો કરવાનો. એકા બાદ તમે ગારવી ને બારવી મેં ગ્યારવી મેં કઈ વિષય લેણો યો નક્કી કરવા
2: તાથી શરૂઆત કરી.
3: દસમી મેં દસમી કી પરીક્ષા થાય એકા બાદ દસ મતલબ દસમી મેં જ યો વિચાર ચાલુ કરી દેણો છે કે મારે હું થવાનો આગળ જઈને
2: હું કરવું છે મારે તેને સાભી વિષય લેવો પડે.
3: તો હવે તો નરા ગાઈડન્સ કરવાને આપણા કે માર્ગદર્શન દેવાને, અમારા ટાઈમે તો કોઈ માર્ગદર્શન કરવાળા જ નહીં હતા. હું ખાલી આગેના સોરા ફર્સ્ટ ક્લાસ પાસ વેતા હતા, હું બી ફર્સ્ટ ક્લાસ પાસ થતા તે વણાએ જો વિષય લીધું હું વિષય લઈ લીધો. અમારી આ બી ખબર નહીં હતી કે આગે હું થવાનું, અમે એન્જિનિયર ભણાગા કે ડોક્ટર ભણાગા કાંઈ ખબર નહીં હતી. પર આજ હું જમાનો કોઈ નહીં, આજ આપણે નરા ભાઈબંધ ભણેલા ઘર મેં ભણેલા પરિવાર મેં ભણેલા સબને માર્ગદર્શન દેવા હણું તૈયાર હે, ને નહીં તૈયાર હે તો આપણા એવા નરા સામાજિક પ્લેટફોર્મે જ્યાં સાગળા નાનાઓને ભેળા થઈને ભેળા કરીને વણાને વતાડી શકાય કે તમારે દસમી કે બાદ હું કરવાનું.
2: ઠીક છે સાહેબ, હમણે આપણે ભારત સરકારમાં પ્રધાનમંત્રી સ્કિલ સ્કિલ હેમકીન ઘણું હુનર નવું નવું સ્કિલની ટ્રેનિંગ આપી રહ્યો, હુનર તીન કે આપણા ભીલીમાં હુનર શીખાડી રહ્યો, તે બી હુનર અલગ પ્રકારની હુનર બી આપણે યુવા જે આગળ ભણેલાની હોય આઠવીવાળા બી હોય દસમીવાળા બી હોય તે તીનમાં બી ટ્રેનિંગ લઈને તે કંઈ પણ નાનો મોટો ધંધોથી કરી શકીએ એવો બી આપણે પ્રધાનમંત્રી એવી યોજના કાઢી છે. તે
3: હારી વાત એને હારી સ્કીમને હું બધા હગળા યુવાઓને જો કામ કરવાને અહીંથી ગુજરાત જાય કે મહારાષ્ટ્ર જાય કે ખાલી આપણાને કડિયા કામ જ નહીં કરવાનું, કડિયા કામ કલા એવી ઘણા કામ હજુ હે વી શીખવાના. આભી હેવી વ્હીકલ ડ્રાઇવિંગ યો એક હે, ઇલેક્ટ્રિશિયન કો હે કે આપણે મિસ્ત્રીનું કામ હે કે હુતારનું હુતારી લકડી કો ફર્નિચર વણાવ કો કામ હે,
2: બિજલી ફિટિંગ હે
3: ફિટિંગનું કામ હે કે એસા આણી તરહ કા નરા ધંધા હે. આપણે વેપાર મેં ભી નાની મોટી દુકાન શા કી દુકાન કે શા નાસ્તા કી દુકાન કે ઈ ગાડી મેકેનિક ગેરેજો કી દુકાન કે अभी ड्राइविंग लाइन में जो थे ड्राइविंग नरे तरह का गाड़ी घोड़ा आ गया थे वी सलाड़वान हिकवान हो तो यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस तो एवं नरा धंधा था। अभी आज का जमाना में हो थायरू के जमीन तो अपनी हगड़ा की कम व्यती जा रही धने धन पहला अपनी
2: टापरू बांधे भी नहीं मिल रही थी।
3: जमीन अतरी कम के टापरू बांधा होने जगह भी नहीं मिलवा आगे 50 साल बाद जो आगा तो टापरू कहाँ बांधो आ भी नहीं मालूम
2: नहीं मिल है।
3: तो या जो भी ना भे दूसरो हो थायो के अपने सारा काम धंधा मशीनरी आएगी। पहला अपने दाड़की करवा जाता तो अपने दाड़की नरो काम तो अपने आते काम करता वो आते काम धीरे धीरे कम थाई रियो ने मशीन नु काम ज्यादा थाई रियो। तो अण या विचार आगे करवा के कोई सगलो काम मशीन से थाय तो अपना हो करवानो अपना ने भी काई ने काई मशीन सलाड नी आणु सीए तो ज अपने आगे रोजगार ने धंधो काई जोवी सका। या बात अभी विचारवा वाली है कि आपता 25 साल के 30 साल में दाड़की धंधो हजू कम वही जाए और कहीं न कहीं मशीन आई जाए तो अपना ने हजू आफत पड़ी। तो या विचार करना बे जैसे कंप्यूटर सलाड़वा में डाटा एंट्री ऑपरेटर नरा बहने कंप्यूटर आवतु हो के नहीं आवतु हो पर वो हिकवान अपना ने या तो कम ती कम 10वीं करेली है कि 12वीं करेली है तो कंप्यूटर नी जानकारी जरूरी
2: धंधो पानी करवो जरूर थी गयो से हाउ अने पेलखी आपण खेतर भी घणा वात खेत खेतीवाड़ी जबर लांबी सोड़ी होती जगह हाउ जगह भी नहीं मळे तीन में पाकी पण नथी रह्यो है अने तीन में आपण एक हजू एक धंधो त्यो आपणा भाई लो करी सके नानी मोटी आपू बा बाबरा कपाड़ी आपणा माथा ना तीन में भी पसा 60 रुपया तो ना भी लिया वगैरह बापड़ बाल भी नहीं काटे बे महीना में बाल कपाड़ा पड़े ते त्यो धंधो भी मन असर लग गया से
3: अपना अपना इलाका में अपना क्षेत्र में तो करी सका अपने तो नानी मोटी ट्रेनिंग लेने
2: नावी नु काम भी करी सके
3: धंधो भी ना भी ते कई जेंट्स पार्लर आवा लगी गया तो विनी थोड़ी ट्रेनिंग लेने जेंट्स पार्लर चालू करो ने बदा ने ये सब तैयार थाय ने आई हुई जाए तो जेंट्स पार्लर नो धंधो भी हारो वो भी जो भी सको न करी सको तो थोड़ो खिकवान उसे
2: तो तेरे बहुत बहुत धन्यवाद भूरिया साहब तुम आया हमारा रेडियो टेंटिया भील स्टूडियो में अने अपना युवा लोगों रोजगार हारू धंधा पाने हारू मार्गदर्शन आलियो तमारो सब घणो घणो धन्यवाद।
3: आपनो भी बहुत बहुत धन्यवाद मने यहाँ मौको दीधो हजू हूँ दूसरा विषय लेने हजी अगर मौको मिलो तो आवीश ने अपना युवा जतरा भी नाना नाना है अणा के नाना नानी जाना के हजी कोई मार्गदर्शन की जरूरत थाय तो हजी और मार्गदर्शन
2: बिल्कुल आवजो तुम्हारा स्वागत से
3: धन्यवाद।
0: नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज
4: हमारे जल संसाधन
5: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है जीवन और उसके अस्तित्व के लिए यह इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक नहाने से लेकर कपड़े धोने तक शॉर्ट से लेकर सफाई तक प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
6: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या

0: गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
1: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है, जो कि धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुवों पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में, जहां पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है, तो नदियों में बहता पानी 1 बूंद के बराबर है।
1: सच कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है, और उसके नीचे भूमिगत जल।
0: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
1: हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
0: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मॉनसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, 2 कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
1: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का 10वां भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार, अगर स्थितियां बदली नहीं तो आज से 40 वर्ष बाद भी 1/4 से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
0: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है। कहीं विशाल नदियां, तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात, और 3 तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
1: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है।

या किसी प्रदेश में बाढ़ आ जाती है या कई मौतें जल प्रदूषण से हो जाती हैं,

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है। बांध के जल का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किया जाता है और सूखे में पानी की कमी से बचा जा सकता है। भारत में भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, मिस्र में अश्वान बांध और पाकिस्तान में तरबेला बांध और अमेरिका में कूली और हैवर बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के उदाहरण हैं। वर्षा के पानी को जमा करके खेती के लिए और यहाँ तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सावधानी से जमा किया हुआ पानी साफ होता है और सुरक्षित भी।

0: रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम चाबुआ की आवाज।
1: वन में मेरा मन है। पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों को

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं। अमित बेटा।
2: जी माँ।
1: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
2: ठीक है माँ।
1: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
2: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
1: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
2: अच्छा माँ।

0: सोनू दीदी
1: बोलो।
0: ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है।
1: अरे वाह इतना सुंदर।
2: अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है।
1: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं।
0: अरे हाँ सुनो दीदी।
1: हाँ
0: ये जंगल कैसा होता है?
1: जंगल
2: हमारे गांव के पास ही है बेटे।
1: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियाँ, समझे?
1: हाँ।
2: इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, शेर, हिरण, हाथी, हाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं।
1: और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है ना दादाजी?
2: बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं।
1: अच्छा
2: समझे? हाँ ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: अच्छा दादाजी।
2: हाँ भाई अगर वन न हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा।
1: पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी?
2: अरे बेटा पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब कुछ अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा वो कैसे दादाजी?
2: भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा।
2: और बेटे अगर वन न हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है।
1: वो कैसे दादाजी?
2: सुनो वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है।
1: अच्छा।
2: भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं।
1: अच्छा दादाजी। वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है?
2: अरे बेटे इसके बहुत से कारण हैं, जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
1: अच्छा।
2: लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काट कर अपने रहने की जगह बना रहे हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ बड़े बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है।
1: अच्छा।
2: इसके लिए भी वन काटे जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और पेड़ों की लकड़ियाँ प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है।
1: अच्छा दादाजी। दादाजी ये झूम खेती क्या है?
2: देखो बेटा झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा ऐसा करते हैं?
2: हाँ इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में वन लगातार कम होते जा रहे हैं।
1: दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए?
2: अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु, जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें।
1: अच्छा।
2: हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
1: दादाजी,
2: बोलो बेटे।
1: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
2: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
1: हाँ जी।
2: देखो जरा कौन आया है।
1: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: रेंजर चाचा आप? आइए नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर, आओ भाई और सुनाओ कैसे हो? आओ इधर आओ, इधर
1: सब ठीक है काका।
0: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा, और सुनाओ बच्चों, दादाजी से क्या बातें हो रही थी?
0: हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी।
1: अच्छा
0: रेंजर चाचा, आप तो जंगल में रह चुके हैं।
1: हाँ?
0: आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए?
1: बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं।
0: वो कैसे?
1: जैसे टीवी रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर, और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
0: अच्छा चाचा जी, वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
1: बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
0: अच्छा।
1: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों?
0: हाँ दादाजी।
1: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए।
0: अच्छा।
1: इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा।
2: देखा?
1: इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है।
2: अच्छा भाई रेंजर, ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है?
1: काका हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
0: वो कौन सी कदम है चाचा जी?
1: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
0: अच्छा।
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है, और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
0: अच्छा।
1: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अच्छा।
1: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
0: अच्छा।
1: इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी।
0: चाचा जी।
1: हाँ बेटा।
0: फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि वन कितने जरूरी हैं।
1: शाबाश।
0: हाँ, और मैं भी अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी

0: साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
1: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें।
0: चलो चलो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई। पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं।
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
2: अच्छा,
3: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
2: हाँ, अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
4: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गोरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
3: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
5: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ाते थे तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
3: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे हैं। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
5: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
3: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़ यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है?
5: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
3: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
5: ठीक है,
3: चल चल चल, हट हट, उड़।
5: ये अब नहीं निकलेंगी।
3: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
4: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गोरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को चिठोली सूझती।
5: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
3: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
2: जी,
3: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
2: जी,
3: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
2: जी। अच्छा पिताजी।
3: हट, हट, हट।
4: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
5: अरे अरे,
3: अरे
5: क्या करते हो जी,
3: गलती से लग गया।
5: आराम से।
4: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
5: मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
4: माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
3: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
4: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
3: अरे
5: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
4: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
6: देखता हूँ मैं इनको।
5: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
3: बाहर मत निकालो, तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
5: सुनो तो, रुक जाओ।
4: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
3: गई।
4: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
6: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी चूर कर ये।
4: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठा कर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
5: तुम्हारे बस की नहीं है।
3: फिर कोशिश करता।
4: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
3: अब देखो,
4: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
3: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो। माँ पिताजी
5: हाँ?
3: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
5: अरे हाँ बेटी।
4: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। ची ची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ है, कहाँ है हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
5: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
4: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
3: अरे
4: वो उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
3: सच में
7: छोटे और बड़े।
8: अरे छोटे बड़े।
9: जी दादाजी।
8: मैंने तुम्हारे लिए जगह बना दी है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको।
9: जी दादाजी।
8: यहाँ जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है। जाओ बेटा अब तुम खेलो। हाँ जाओ बेटा।
10: ओ भाई छोटे।
11: हाँ भाई बड़े।
10: आज हम पार्टी करते हैं।
11: हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन पार्टी किस खुशी में?
10: हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के।
11: हाँ भाई बड़े ये तो तुमने सही कहा, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो यहाँ खाना भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है।
10: सही कहा भाई तुमने, अब हम अपने और दोस्तों को भी यहाँ रहने के लिए बुला सकते हैं।
11: हाँ भाई बड़े मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा।
10: सभी मिलजुल कर रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे।
11: हाँ हाँ हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे।
12: इस तरह छोटे और बड़े वहाँ बड़े आराम से रहने लगे। क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे और वो कहाँ रहने लगे? सोचो। सोचो सोचो। नहीं समझ आया तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। वो छोटे और बड़े कोई और नहीं बल्कि चीनू के दांत में रहने वाले कीटाणु थे और चीनू चॉकलेट खाकर बिना ब्रश किए जो सो गई थी। इसलिए आज छोटे और बड़े अपने और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे।

0: मेरे को तो चॉकलेट और मिठाई मिली।
1: स्वादिष्ट है।
0: छोटे?
2: हाँ भाई बड़े।
0: चलो और कुरेदते हैं दांतों में।
2: हाँ लगता है कुछ और खाने को मिले।
3: कीटाणुओं के शोर करने से चीनू के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है।
4: आ, आ, आ, मम्मा मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
5: क्या दांत में दर्द? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना रोजाना ब्रश किया करो।
4: मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूँ।
5: तुम सिर्फ सुबह ब्रश करती हो ना, रात को तुमने चॉकलेट खाई थी तब किया था ब्रश?
4: नहीं मम्मी।
5: देखा अब दिखाओ जरा कहाँ हो रहा है दर्द। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुम्हें। परेशान मत हो, दर्द ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
3: चीनू की माँ और चीनू डॉक्टर के पास जाते हैं।
5: नमस्ते डॉक्टर साहब।
6: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
5: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
6: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
4: चीनू।
6: चीनू, लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुँह खोलो मुँह खोलो। हाँ थोड़ा सा और। एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो बस। अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे। क्यों, है ना कमला जी?
5: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
6: देखो बेटा, कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है, है ना? कितने अच्छे लगते हैं दांत। तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या पता है? ऊपर नीचे, ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ, समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
5: जी बिल्कुल,
6: है ना?
4: डॉक्टर साहब क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
5: डॉक्टर साहब इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती।
6: समझ गया। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश। समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर आओगी। लाओगी चॉकलेट? ये हुई ना बात। शाबाश, जाओ शाबाश।
3: ये सारी बातें सुनकर चीनू के दांत के कीटाणु परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं।
0: अरे भाई छोटे।
4: हाँ भाई बड़े।
0: आप तो हमारे आराम के दिन गए।
4: हाँ
0: हम तो अब भूखे ही रह जाएंगे।
4: हाँ, चलो दादाजी से चलकर।
0: हाँ चलो चलो दादाजी।
4: दादाजी
0: भूख लगी है, बहुत भूख लगी है।
4: भूख लगी है।
7: हाँ बेटा मैं समझता हूँ। बेटा ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो हम किसी और दांत में चलकर वहां जगह बनाते हैं। चलो
0: चलो आओ। दादा, चलो
4: चलो
0: दादा, चलो।
8: चलो।
3: इस तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों, अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मध्यम गति से ये बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग क्या कहता है इस पर नजर डालेंगे। साथ साथ में साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम काफी विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं, जैसे कि कपास की खेती। चूंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो यहाँ पर कपास की खेती का विशेष ध्यान दिया जाता है, किसान विशेष तौर पर इस खेती को करते हैं। कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे इसको करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है तो हमारे किसान साथी इसको भी, मधुमक्खी पालन भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में सफल किसान की कहानी पर भी हम एक नजर डालेंगे। लेकिन इन बातों से पहले हम साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का मौसम विभाग इस बार का क्या कहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा, चक्र से होकर गरज रही है और प्रदेश के चंबल संभाग के जिले तथा ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, आगरा जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में आ चुका है मानसून। आज अगर बात करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, रीवा, इंदौर एवं चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े अगर देखा जाए तो छपारा, गोहरगंज, नागदा, पचौर और परसवाड़ा, अनूपपुर, बहोरीबंद, देवेंद्रनगर, गुलाबगंज, रायसेन, खाचरौद और नर्मदापुरम में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में काफी गिरे और शेष संभागों में जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्वालियर संभागों के जिलों के सामान से विशेष रूप से कम है और सागर संभागों के जिलों में सामान्यता काफी कम, इंदौर और उज्जैन संभागों में सामान्य, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में सामान से कम और शेष संभागों में जिलों में सामान्य वर्षा हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं कहां पर किस तरीके की बरसात होने की संभावना बताई जा रही है, मौसम विभाग क्या कहता है। वर्षा या गरज चमक के साथ बौछार किन किन स्थानों पर होनी है। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में संभावित है। आगामी 24 घंटों में भारी और मध्यम वर्षा कहां कहां होने वाली है। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बताई जा रही है, जहां पर डिंडोरी आएगा, बैतूल, बालाघाट, राजगढ़, रायसेन, धार, उज्जैन, अनूपपुर, मंडला एवं सिवनी जिलों में। और कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने के अल्पकालीन तेज हवा की संभावना, उसमें रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिले इसमें आते हैं। तो ये थी हमारे जानकारी जो अभी आप सुन रहे थे मौसम की। अगर झाबुआ जिले की बात करें तो अधिकतम तापमान आज का जो रहा है वो 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वर्षा अभी तक नहीं हुई है, बहुत कम हुई है। 1 जून से अभी तक जो वर्षा कुल आंकी गई है वो 15.9 मिलीमीटर आंकी गई है। तो ये मौसम आधारित जानकारी आपको हम दे रहे थे क्योंकि इस आधार से हमारे किसान साथी चुनाव कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें फसलों का चयन करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम में जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी कपास की खेती कर सकते हैं। साथ साथ में जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान साथी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो आइए इस रेडियो रिपोर्ट को हम सुनते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आप लो रेडियो अपनी बात है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आप लो रेडियो अपनी बातें।
3: किसानी में हम आपको बताएंगे कपास की खेती के बारे में। जी हाँ, कपास की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक दृष्टि से इसका काफी महत्व है और इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। लेकिन कई तरह की बातें जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कपास की अच्छी पैदावार हमारे किसानों को प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
4: कपास नकदी फसल है जो हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है। भारत में कपास की सबसे ज्यादा खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में की जाती है। हमारे देश में देसी और बीटी दोनों ही कपास की खेती की जाती है। हालांकि बेहतर मुनाफे के लिए किसान आजकल बीटी कपास ज्यादा लगा रहे हैं। बीटी कपास में भी कई प्रजातियां लोकप्रिय हैं, जो स्थान विशेष के हिसाब से रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। इसकी खेती के बारे में विस्तार से बात करें तो इसकी बुवाई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने पर मई माह में की जाती है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश शुरू होने पर ही कपास की बुवाई करें। बुवाई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बुवाई के लिए उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज जबकि संकर व बीटी जातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। बुवाई करते समय कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं कपास की सघन खेती में कतार से कतार 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। फसल के सही विकास और बेहतर उत्पादन के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए। उन्नत किस्मों में 80 से 120 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश, करीब 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जबकि संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नत्रजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसके अलावा सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन के अंदर डोरा चलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी का छिड़काव भी किया जा सकता है। फसल में सिंचाई की बात करें तो शाखाएं निकलने की अवस्था व 45 से 50 दिन पर, फूल व फल बनने के दौरान 75 से 85 दिन पर, इसके बाद 95 से 105 दिन की फसल होने पर और 115 से 125 दिन की फसल होने पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान टपक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 70% पानी की बचत की जा सकती है। साथ ही खरपतवारों और कीटों पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है। कपास की फसल में चुनाई का काम बहुत विशेष होता है। देसी व उन्नत जातियों की चुनाई खासकर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, संकर जातियों की अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी तक, बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कपास की चुनाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि चुनाई ओस सूखने के बाद ही करें, गीले घेटों की चुनाई ना करें। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां, डंठल ना आए। चुनाई के बाद कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती है। लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर कपास का बेहतर उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है।
3: ये हमारा पशुधन पर, पशुधन में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, सरकार भी मधुमक्खी पालन को काफी प्रोत्साहित कर रही है और आज के समय में युवाओं के बीच में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। खास बात यह है कि मधुमक्खी पालन से न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होती है बल्कि साथ ही साथ

0: मधुमक्खी पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाभ के साथ साथ मधुमक्खी का भी ख्याल रखें, जिससे उनकी घटती संख्या में कमी लाई जा सके। मौजूदा समय में तापमान में हो रही बढ़ोतरी के साथ कुछ खास प्रबंधन करने होते हैं, जिससे मधुमक्खियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इस समय कौन से हैं वो खास बिंदु, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय।
1: गर्मियों का मौसम है, मधुमक्खी पालक के लिए जरूरी है कि कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखे ताकि मधुमक्खी पालक अच्छे से मधुमक्खियों का देखभाल कर सके, तो अच्छे से उनको लाभ मिल सके। सबसे जरूरी है क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय जो तापमान है वो 40 के ऊपर है, तो इसलिए जरूरी है कि मधुमक्खी पालक जो मधुमक्खियां हैं उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां फूल यानी के फ्लोरा हो। इसके लिए इस समय जो है सीसम, जहां सीसम हो, नीम हो, जामुन हो, यूकेलिप्टिस हो, या इसके अलावा मल्टी फ्लोरा हो, तो वहां मधुमक्खी को अपने उस स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी का समय है तो पीने के पानी, स्वच्छ पीने का पानी मधुमक्खी के लिए जरूर होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे स्थान पर मधुमक्खी को रखें जहां छाया हो, क्योंकि इस समय लू और गर्मी ज्यादा है, तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां ऊपर पेड़ पौधे उसके आसपास हो। और इसके लिए जरूरी है कि कहीं कहीं अब इस समय फ्लोरा की कमी है, तो उनको भोजन के रूप में आर्टिफिशियल भोजन दें। इसके लिए एक भाग पानी और एक भाग चीनी दोनों का घोल बनाकर एक चाशनी तैयार कर लें। उस चाशनी को ठंडा होने के उपरांत फीडर की सहायता से किसान भाई यानी कि मधुमक्खी पालक आदि मधुमक्खियों में इस भोजन को दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम थोड़ा और भी बढ़ सकता है, टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, तो जो टाट के बोरे होते हैं उन टाट के बोरे को जो बॉक्स है मधुमक्खी के उसके ऊपर डाल देना चाहिए। साथ ही साथ दो या तीन बार उनको गीला करना चाहिए दिन में, ताकि जो बॉक्स का तापमान है वो सामान्य बने रहे और मधुमक्खी को ज्यादा दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखें कि इस समय मधुमक्खी पालक को मधुमक्खी का विभाजन नहीं करना चाहिए। अगर कमजोर मधुमक्खी है, बॉक्स कमजोर है, परिवार बॉक्स कम है, तो ऐसे समय पर उनको विभाजन नहीं करना चाहिए।
0: गर्मी के मौसम में पर्याप्त फूल नहीं होते, जिससे मधुमक्खियों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मधुमक्खी पालकों को चाहिए कि उनके कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करें। इसके लिए क्या करें, जानते हैं विशेषज्ञ से।
1: तो स्थान का चुनाव करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना है मधुमक्खी पालक को।
0: ये तो बात हो गई मधुमक्खियों के भोजन की, अब बात कर लेते हैं उनकी सुरक्षा की। इस समय अन्य कीटों से उन्हें कैसे सुरक्षा दी जाए, आइए जानते हैं।
1: मधुमक्खी पालक ये देख ले कि ऐसे स्थान का चुनाव इस समय करे कि जहां फूल यानी कि फ्लोरा हो, वैसे स्थान पर मधुमक्खियों का स्थानांतरण कर दे। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि पहले से वहां स्थान आपका होना चाहिए कि पानी वहां है, अच्छा पीने के लिए स्वच्छ पानी है, आसपास जो है कोई हाईवे रूट तो नहीं है, साथ ही साथ कोई किसी तरह की पेस्टिसाइड, क्योंकि आजकल जो फसलें हैं अधिकतर किसान भाई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ये भी देख लें कि अधिकतर वहां ज्यादातर किसान कीटनाशियों का अधिक प्रयोग ना करते हो, और करते भी हो तो ये भी शोध कर ले कि किस कीटनाशी या फंजीसाइड का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब मक्खी होती है तो वो फूल के पास जाएगी, उससे फूल से रस चूसेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो केमिकल होता है उसका इफेक्ट मधुमक्खी के में आएगा, और धीरे धीरे उससे उसकी जो है मोर्टिलिटी होने की भी संभावना बनी रहती है।
0: इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान और मधुमक्खी पालक उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उनकी संख्या में इजाफा भी। एचएस और बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फॉस्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले। पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके। पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशुपालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों से बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहां प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।

0: में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
1: अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

0: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो पर एक खास महफिल, आपका अपना शो जिंदगी के रंग गीतों के संग। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्ष को सिर्फ झेला नहीं बल्कि उसे एक नई पहचान दी और दूसरों के लिए रास्ता बना दिया। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी मेहमान जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब, ICF सर्टिफाइड लाइफ कोच और 10,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को टच कर चुकी, हम बात कर रहे हैं मिस पूजा शर्मा की। तो चलिए शुरू करते हैं एक गहरी और दिल को छू लेने वाली बातचीत जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। मैं हूं आपकी आरजे, आपके तरानों की हमसफर तनुषा। तो पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: वेल, बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ एंड इट्स माय ऑनर टू बी हियर ऑन दिस शो टुडे। थैंक यू सो मच।
1: इट्स एन ऑनर फॉर अस टू होस्ट यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, ताकि हमारे श्रोता बहुत सारी बातचीत से बहुत सारी चीजें आज आपकी बातें सुनकर लेके जाएं और अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि आप इतने अच्छे लाइफ कोच हैं।
2: थैंक यू सो मच।
1: हम शुरू करते हैं मैम, शुरुआत से आपने हमें बताया कि ऐसे फेजेस थे आपकी भी लाइफ में जहां पे आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते थे, लो कॉन्फिडेंस था, वैलिडेशन इश्यूज थे, कंफ्यूजन्स थे, जो सबकी लाइफ में होते हैं। उस टाइम की जो पूजा शर्मा हैं, उनको अगर आप आज मिल पाए, क्योंकि जनरली हम लोग शुरुआत करते हैं बचपन से, बट आपकी शुरुआत हम थोड़ा अलग नोट पे कर रहे हैं क्योंकि आप हील करते हैं लोगों को। तो आज अगर आप अपने यंग वर्जन से मिलें, उस पूजा से मिलें जिसे हीलिंग की जरूरत थी, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से उसे इंस्पायर करना चाहेंगे कि कोई बात नहीं, होता है, आगे बढ़ो?
2: वेल, हम सबकी, जैसे आपने कहा, हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है। पीछे पलट के देखें तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बट कुछ एक एक्सपीरियंसेस हमारे, क्योंकि हम एक ही कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो बहुत कॉमन होते हैं। बेसिक कंडीशनिंग, आज अगर मैं पीछे पलट के देखूं तो मुझे लगता है कि वो जो वैलिडेशन हम मांगते हैं, वो जो हमारे घर से स्टार्ट होता है। पहले वी आस्क फॉर दैट वैलिडेशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, देन फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम आवर पीयर्स। वो वैलिडेशन की जो एक आदत बन जाती है ना, वो बहुत सालों बाद, आज आफ्टर सो मेनी ईयर्स, Now is when I realize that one habit is something that I would go back to the younger self and say कि नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो validation नहीं चाहिए, वो self validation होना बहुत जरूरी है। So that is one strong thing that I would definitely, if given a chance, I would want to go back and rectify. And to all my listeners over here, to everyone, I would definitely say, don't seek out for validation.
1: जी,
2: कोई फायदा नहीं है।
1: जी, हम जो फायदा नहीं है।
2: इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, कितने लाइक्स आए, आज हर किसी को लगता है कितने फॉलोअर्स आए। आई थिंक हम डिफाइन ही उस तरीके से हो रहे हैं, हम डिफाइन ही हो रहे हैं कि कितने लाइक्स आए, कितने लाइक्स क्यों आए, कितने व्यूअर्स हैं। आप एक अच्छा रेडियो जॉकी हैं, बहुत सारे लिसनर्स अलग अलग अपने अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये देख के कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं?
1: बिल्कुल
2: वो नहीं कर सकते, वो वैलिडेशन ही तो है, वो बचपन से हमारी जो आदत पड़ी है। तो यंगर सेल्फ, नो वैलिडेशन इज समथिंग दैट आई वुड स्ट्रांगली गो बैक एंड करेक्ट इट एंड स्टे टू माय यंगर सेल्फ आल्सो।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जरूरी है ये हमें समझना कि हम अगर अपने आप को जब मिरर में देखते हैं, तो अगर हम सही फील कर रहे हैं, हम फुल फील कर रहे हैं, हम कंप्लीट फील कर रहे हैं, तो दैट इज इनफ। हमें नहीं चाहिए कि कॉन्स्टेंटली कोई हमें बताए कि आप यहां से इम्परफेक्ट हो, यहां से परफेक्ट हो, यहां आपको कमी है या जो भी। सो अपने आप को पहचाने, अपने आप को अपने बेटर सेल्फ तक लेके जाने की कोशिश करें, अपने हाईएस्ट
3: गुड तक लेके जाने की कोशिश करें, बट उसके लिए वैलिडेशंस, आउटसाइड वैलिडेशंस सीख नहीं करें। पूजा मैम, इसी के साथ मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, क्या बचपन का कोई ऐसा मोमेंट है कोई, बिकॉज हमारे लिसनर्स हैं, हर एज ग्रुप के लिसनर्स हैं जो हमें आज सुन रहे हैं और जो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन सीख कर रहे हैं आज की हमारी इस कॉन्वर्जेशन से, तो कोई यंगर सेल्फ का, कोई टीन्स का, एडोलेसेंस का, कॉलेज गोइंग पूजा जी की लाइफ का कोई ऐसा इंस्टेंस जो आज हमसे बात करते करते आपके जहन में आता है, जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें कि ऐसा हुआ था एंड दिस इज हाउ आई फॉट बैक, ये मेरी लड़ाई थी उस इंस्टेंस से एंड ऐसे मैं उससे उभरी, तो अगर ऐसा कोई वाकया है तो हमारे साथ साझा करें।
2: ऐसे बहुत सारे हैं एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम दैट आई वॉज इन स्कूल, नॉट जस्ट ड्यूरिंग माई एडोलेसेंस।

0: उसमें क्या होता है, बहुत अलग तरीके से उसको देखा जाता है, बहुत सबमिसिव, बहुत फीबल समझा जाता है कि अच्छा ये तो क्या ही जवाब देगी पलट के. तो आई रिमेम्बर एंड आई एम शेयरिंग दिस, देर वॉज अ पॉइंट इन टाइम वेन आई मूव्ड आउट, और घर से बाहर निकलने पे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जो हमें पढ़ाते थे.
1: जी
0: तो उन्होंने एक सवाल पूछने पे, तो ही केम वेरी क्लोज टू मी, बहुत करीब आके उन्होंने उस चीज का जवाब दिया. और जब मैं पेन से अपना लिख रही थी तो ही कॉट होल्ड ऑफ माई, एंड आई एम श्योर यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे हमारे लिसनर्स हैं, वुमेन, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ वुमेन फ्रॉम अ वुमेन पर्सपेक्टिव, कि
1: जी
0: जिनके साथ ना कुछ ना कुछ इस तरीके का हुआ है. तो हम ना शर्म और डर दोनों की वजह से रिएक्ट नहीं कर पाते. पहली
1: बिल्कुल
0: बार
1: सर
0: जब हुआ आई वॉज वेरी यंग, तो मुझे उस टाइम पे आई डिडंट रियली ज्यादा डर गई, मैं सहम गई, नहीं बोला, घर आके भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि पेरेंट्स की भी आदत होती है ना ये बोलने की कि तुम्हारी गलती होगी, तुमने कुछ किया होगा, राइट. बट उसके
1: बिल्कुल
0: बाद कहीं से वो, हम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वॉज ब्लेस्ड कि बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने थोड़ा सा उनसे बात करके ऐसा लगा कि नहीं ये गलत है और बोलना चाहिए. दूसरी बार जब ऐसा हुआ तो मैंने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई, और मेरे साथ में उस इंस्टीट्यूट के 100 और बच्चों ने भी आवाज उठाई. तो वो आवाज उठाना बहुत जरूरी है, सही को सही और गलत को गलत बोलने की जो शुरू से एक आदत डलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें हर फेज में हेल्प करती है लाइफ के. चाहे आज स्कूल में है बच्चे, फिर कॉलेज में है, जिंदगी में और आगे बढ़ेंगे, ऑफिस जाएंगे, करियर है, रिलेशन है, हर जगह आपको वो चीज हेल्प करेगी. तो सही को सही और गलत के अगेंस्ट आवाज उठाना, क्योंकि हमने ये सुना ही है कि सिर्फ गलत को सहना ही नहीं, बट अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो भी आप अगर नजरें फेर लें तो वो भी उतना ही गलत है. तो
1: करेक्ट,
0: आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर.
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही और सटीक ऑब्जर्वेशन है आपकी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है यंग एज में जो हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और हम डर के मारे नहीं बताते. आज सिनेरियो बहुत अलग है खैर, बट जब हम आप और हम बड़े हो रहे थे तब हमारे पेरेंट्स सच में हमारे से ज्यादा टीचर्स पे बिलीव करते थे, वो कॉन्वर्जेशन नहीं हो पाती थी. बट यस, उस टाइम खड़े होना और सही को सही और गलत को गलत बोलना, ये एक बहुत हिम्मती सोच है और इसी हिम्मती सोच के साथ हम आगे चलेंगे और सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत. दोस्तों, जिंदगी के कुछ दौर ऐसे होते हैं जब हम खुद को समझने की कोशिश में लगे होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफर आसान नहीं होगा. उस सर्कमस्टांस से आप नहीं निकल पाएंगे, आपकी जिंदगी उसी दौर से गुजर के और सुंदर होगी और निखरेगी और आप आगे बढ़ेंगे. तो इसी एहसास के साथ एक गहरा गीत, एक प्यार भरा गीत, ए दिल तू लाया है बहार.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक पूजा जी।
1: थैंक यू।
0: मैम, आपने हमें बताया कि आप कॉर्पोरेट लाइफ में जब थे, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, फाइनेंशियल प्रेशर्स को हैंडल कर रहे थे, इमोशनल स्ट्रगल्स थे लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा था, बट फिर भी सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ आसपास चलते हुए भी, एक अंदर से एक एम्प्टीनेस थी, एक आपको एक तरह का कॉर्पोरेट फटीक था, या वो एक कुछ चीज की कमी थी आपके जीवन में जो आप महसूस करते थे, तो क्या वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि आपकी जिंदगी का जो पर्पस है वो सिर्फ सर्वाइव करना नहीं बल्कि एक पर्पसफुल लाइफ क्रिएट करना है अपने लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए? क्या था वो टर्निंग पॉइंट, किस तरह से उसने आपको छुआ और कैसे आप उससे बाहर निकल के अपनी लाइफ को चेंज करते हुए आगे बढ़े?
1: वेल, बहुत ही खूबसूरत सवाल और मेरे दिल के बहुत करीब है ये पूरी जर्नी। 20 साल के कॉर्पोरेट करियर के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे और नहीं करना है। नॉट दैट कि कॉर्पोरेट में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ मुझे, बिकॉज बहुत अर्ली स्टेज में मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद आफ्टर स्पेंडिंग 20 इयर्स बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था, बट कहीं ना कहीं एक रोज घर आने के बाद एक एम्प्टीनेस होती थी कि मैंने आज क्या किया। हाँ, मैं ट्रेनिंग हेड करती थी, मैं लर्निंग डेवलपमेंट हेड करती थी, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, बट अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या था? कुछ नहीं। मतलब ऐसा, आई वॉजन डूइंग मच फॉर द सोसाइटी। मेरा पर्पज क्या है आज? अगर मुझे इस धरती पर भेजा गया तो वाई मी, वॉट इज दैट आई एम डूइंग? तो साथ के साथ ही, बट एक चीज जो कि मैं इस फोरम से, इस प्लेटफॉर्म से सबको बताना चाहूंगी, चाहे हमारा एक प्रोफेशन है बट उस प्रोफेशन के साथ में हमारा एक पैशन भी होता है। उस पैशन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जरूरी नहीं आपका प्रोफेशन हमेशा आपका पैशन बने और पैशन हमेशा प्रोफेशन बने। पैरेलल दो चीजें भी चल सकती हैं। तो मेरा पैशन हमेशा से कोचिंग और हीलिंग और टैरो कार्ड रीडिंग और बहुत सारी मोडालिटीज रहा है। सैटरडे संडे मैं उनको टाइम देती थी, तो वो पैशन मुझे और बड़ा दिखने लगा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो एम्प्टीनेस है जो कि कॉर्पोरेट लाइफ से आ रही है, ये मैं इससे फुलफिल कर सकती हूँ। वीकेंड्स पे जब मैं लोगों को हील करती थी, उनके लिए गाइडेंस, उनको प्रिडिक्टिव गाइडेंस देती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अंदर से ना सुकून मिलता था, चाहे वो एक घंटे का ही सेशन क्यों ना हो, वर्सेस पूरे 5 दिन की जद्दोजहद जिसमें हम अटके रहते हैं। तो वहां पे मुझे वो पर्पस, वो टर्निंग पॉइंट था जहां पे मुझे लगा कि नहीं, ये एक दिन का एक घंटा मुझे ज्यादा पर्पस दिख रहा है इसमें, इसमें मैं और वैल्यू एड कर पा रही हूँ सोसाइटी के लिए। वो एक लाइफ जब ट्रांसफॉर्म हुई, आई थॉट ही वाओ, इफ आई कैन डू दिस, वाई कांट आई डू दिस फॉर सो मेनी पीपल अराउंड? इतने सारे लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ, मेंटल अवेयरनेस की लैग में गलत डिसीजन ले रहे हैं, और हर एज ग्रुप के ले रहे हैं। मैंने कहती सिर्फ बच्चे ही ले रहे हैं, सिर्फ टीन्स ही ले रहे हैं, सिर्फ वुमेन? देर आर मेन ऑल्सो हु आर स्ट्रगलिंग विद इट। अगेन, कंडीशनिंग, मेन डोंट टॉक आउट, आदमियों को रोने नहीं दिया जाता। सो दैट वन टर्निंग पॉइंट फॉर मी वॉज अ मेल क्लाइंट ऑफ माइन जो रोए मेरे सामने आके, अ 50 ईयर ओल्ड मैन क्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू हु स्पेंट ऑलमोस्ट ऑल हिज लाइफ एंड मेड, उन्होंने बिलियंस बना लिए, और जब उस आदमी की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी, तब मुझे लगा कि नहीं, यही पर्पस है, इसी कंडीशनिंग को हमें ठीक करना है, एंड दिस इज द वे आई कैन गिव इट बैक टू द सोसाइटी। सो वो एक क्लाइंट और एक दिन का एक घंटे का सेशन मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना।
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत वाक्य आपने हमारे साथ साझा किया। सच में जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जब आप सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ ट्रैक पे चलते हुए भी, आप अंदर से खाली फील करते हैं, और उस खालीपन की वजह कहीं ना कहीं भगवान आपको दिखाता है कि आपका बेटा ये रास्ता नहीं है, यू आर मेड फॉर अ बिगर पर्पज, अ बेटर पर्पज, एंड यू आर मेड फॉर पीपल। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आपका जन्म हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पॉकेट्स भरने के लिए काम करते हैं, बट कई लोग होते हैं जो आई थिंक चोजन वंस होते हैं, जिनको भगवान ये पावर देता है, ये थर्ड आई देता है, ये इंट्यूशन देता है कि वो अपने पर्पस को लार्जर पब्लिक में ले जा सके और उनकी हेल्प कर सके, उनकी मदद कर सके और उनको बाहर ला सके उन सब सर्कमस्टांसिस से। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप गॉड्स चोजन चाइल्ड हैं। और टैरो कार्ड की आपने हमारे साथ बात की, तो अगर मेरे लिसनर्स, आई एम श्योर हम सब बहुत इंटरेस्टेड होते हैं जैसे ही हम एस्ट्रोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री की बात शुरू करते हैं, तो अगर इस मॉडलिटी के बारे में थोड़ा सा ही, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप बता सकें, आप किस तरह से टैरो करते हैं, टैरो के कुछ एक बेसिक रूल्स या कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे श्रोता ले जा सके, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत लेमैन लैंग्वेज में अगर कुछ टिप्स या कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकें तो ब्रीफली.
1: अच्छा श्योर, आई वुड लव टू डू दिस. एक ये जो एक मिसकंसेप्शन टैरो को लेके बहुत अलग दुनिया बनी हुई है जिसमें कुछ लोग तो उस दुनिया से एकदम बाहर हैं और कुछ बहुत ही बिलीव करते हैं. तो एक एक जेनेरिक चीज अगर मैं बताऊं व्हाट इज टैरो, मैं 2005 से टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ. टैरो कार्ड मेरी रीडिंग टैरो कार्ड मेरी लाइफ में बहुत ही मिराकुलसली आए थे. इट वॉज अ मिराकल दैट हैपन टू मी. वो एक बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी इस बारे में हम बात करेंगे. बट टैरो क्या है? टैरो अनलाइक अदर मोडालिटीज लाइक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज 1+1=2. इट इज प्योर मैथ, इट इज डेफिनेट. हाउएवर टैरो क्या है? टैरो इंट्यूटिवनेस पे बेस्ड है. जैसे एस्ट्रोलॉजी आपको प्रिडिक्शंस देती है, टैरो इज मोर ऑफ अ गाइडिंग टूल. वो आपको गाइड करती है व्हेन यू आर ऑन क्रॉस रोड्स. फॉर एग्जांपल, आज आप बोलते हो मुझे ए पाथ चूज करना है या बी चूज करना है. टैरो इज अ परफेक्ट थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. इट इज अ ब्यूटिफुल गाइडिंग टूल जब आप क्रॉस रोड्स पे होते हैं. तो वो है टैरो. एंड टैरो पूरा इंट्यूटिव, आपकी माइंडसेट आपकी इंट्यूटिवनेस पे बेस्ड है. और एक स्टोरी बिल्ड करता है टैरो, है ना. तो अगर आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास टैरो कराने जाएंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत से एक स्टोरी सुना दी जाएगी आपको. वही सेम कार्ड्स के लिए स्टोरी आपके लिए अलग होगी और वही सेम कार्ड्स दूसरे के लिए एक अलग स्टोरी बना के देते हैं. वो टैरो की ब्यूटी है. बट हैविंग सेड दैट, मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं उनका एक बेसिक सवाल होता है इसकी एक्यूरेसी क्या है. तो ये एक्यूरेसी का जवाब सिर्फ इतना सा है, हर चीज की एक्यूरेसी सिर्फ उस पर डिपेंड करती है कि आपका उसमें कितना विश्वास है.
0: फेथ कितना है. करेक्ट,
1: एग्जैक्टली. सो टैरो इज ऑल अबाउट फेथ. तो अगर आपको टैरो सीखना है या अपनी रीडिंग करवानी है तो फेथ के साथ जाइए. फेथ के साथ करा हुआ हर काम आपको रिजल्ट अच्छे ही देगा.
0: बिल्कुल सही.
1: आई होप दैट आंसर्स.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड मैं इतनी एक्साइटेड हूं कि मैं चाहूंगी कि आप इस एपिसोड के बारे में, इस बातचीत के बारे में एक कार्ड जरूर पुल आउट करें और हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह का ये एपिसोड रहा. चलिए आगे चलते हैं हमारे आज के दूसरे गीत की तरफ. दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम खुद को एक नए रूप में जोड़ सकें. इसी जज्बे के साथ हम सुनेंगे एक बहुत प्रेरणा देने वाला गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत कर.

नहीं सुबह के संग सदा तुझे मिली नहीं उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो

0: अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है।
1: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक पूजा जी।
2: थैंक यू
1: मैम। आप अब आपका जो बेबी है ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। आपने हमें बताया कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक मूवमेंट जैसा है आपके लिए। तो जब आपने इसे शुरू किया, आपके दिल में सबसे पहला थॉट क्या था, इसका सीड कैसे डला आपके जीवन में, और एक बिजनेस बनाना लोगों के लिए किस तरह से लाइफ चेंजिंग हो सकता है, आपके लिए किस तरह से लाइफ चेंजिंग था, या और इस बिजनेस का जो पर्पस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब का पर्पस है, वो आई एम श्योर बिजनेस से बहुत आगे है। तो उस पर्पस को, उस विजन को हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें और हमें बताएं ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब के बारे में।
2: राइटली सेड, यस इट्स अ बेबी टू मी। ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब इज अ बेबी टू मी। और

0: इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जो मैंने एग्जाम्पल शुरुआत में शेयर किया था कि अगर एक जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है तो लाखों जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। यहाँ का पर्पस सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं नहीं बोलती कि आपको ट्रांसफॉर्म किस मोडालिटी से किया जाएगा। हो सकता है हम सिर्फ बात करके ही आपको ट्रांसफॉर्म कर दें, और हो सकता है आपको कोई एक टेक्निक या मोडालिटी की जरूरत पड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बट इतना कुछ सीखने और समझने के बाद, लाइफ में इतना एक्सपोजर लेने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब एक वो अम्ब्रेला है कि जिसके नीचे अगर आप आ गए तो किसी भी तरीके की बारिश से, किसी भी तरीके की सिचुएशन से आप जूझ रहे हो, दैट विल बी अ प्रोटेक्टिव टूल फॉर यू। और जब आप उसके बाहर निकलेंगे तो आप एक ट्रांसफॉर्म तरीके से ही निकलेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इसका नाम बस ऐसे ही किसी दिन सुबह उठ के मैंने नहीं रख दिया। ये बहुत थॉटफुली क्यूरेटेड एक कम्युनिटी है, एक फैमिली है। मैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता व्हेन आई यूज द टर्म क्लाइंट्स। यस, इट इज अ फैमिली, इट इज अ कम्युनिटी। जो यहाँ हमारे साथ जुड़ा है वो लाइफ लॉन्ग के लिए ही जुड़ा है। तो बिकॉज हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करते। आज अगर कोई आता है हमारे पास सेइंग कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ प्रॉब्लम पे काम नहीं करते, हम उस ओवरऑल इंसान पे काम करते हैं। आई बिलीव कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में बहुत सारी आएंगी। आज जॉब से रिलेटेड है, कल रिलेशनशिप से रिलेटेड होगी। बट इफ आई मेक यू अ गुड पर्सन, और इफ आई रियली ट्रांसफॉर्म यू एज अ पर्सन, अगर मैं आप में एक इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन ले आऊंगी, तो वो 100 प्रॉब्लम से भी उनको निकल जाएंगे उसमें से। तो दैट इज वॉट आई फील कि हम इंसान पे काम करते हैं, हम प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करते। तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब मेरा वही ड्रीम है, वही कम्युनिटी क्रिएट करी है, जहां पे हम कोचिंग के थ्रू, बेसिकली हम कोचिंग के थ्रू, कोचिंग क्या है, कोचिंग और काउंसलिंग में बहुत डिफरेंस है। हम कोचिंग के थ्रू आगे बढ़ते हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। हमारे पास बहुत सारे, और सिर्फ ये हमने किसी एज ग्रुप से तक इसको सीमित नहीं किया है। मेरा यंगेस्ट कम्युनिटी मेंबर 4 साल का है और एल्डेस्ट कम्युनिटी मेंबर इज 88 इयर्स ऑफ एज। तो इट इज नॉट लिमिटेड कि एक एज ग्रुप पे ही हम काम करते हैं, तो हम अक्रॉस एज ग्रुप्स काम करते हैं।
1: जी,
0: दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब इज।
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैम, इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे समझ आता है कि जब आप रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं, आपके जो मॉड्यूल्स हैं, मोडालिटीज हैं, उसमें रिलेशनशिप काउंसलिंग भी है, डिवोर्स नेविगेशंस भी हैं, इमोशनल हीलिंग भी है, यंग अडल्ट यू नो इश्यूज का को हील करना, डील करना, वो सब कुछ है। मतलब यू लाइक यू सेड कि आप सब एज ग्रुप से डील करते हैं और इन सब तरह की काउंसलिंग और नेविगेशंस आप प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब से। तो आई एम श्योर बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप खुद लोगों को हील करते करते आपके खुद के शायद कोई वूंड्स, कोई यादें या कुछ चीजें ट्रिगर हो जाती होंगी, या आप खुद लाइक यू नो बहुत हैवी एनर्जीज होती हैं कई बार लोगों की, तो उन सबको हील करते करते जब आप हैवी फील करते हैं, जब आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो किस तरह से उसे डील करते हैं, कैसे उससे आगे बढ़ते हैं? क्योंकि बहुत आई एम श्योर हीलर्स, ये सब हीलर्स ये गो थ्रू करते हैं, तो किस तरह से आप उसको डील करते हैं?
0: एक बहुत ही सेल्फिश नोट पे ये बात स्टार्ट करूंगी कि इस पूरा ट्राइब को क्रिएट करने के पीछे मेरा बहुत सेल्फिश मोटिव था, विच वॉज टू हील माई सेल्फ ऑल्सो। एंड आई वेरी ब्यूटिफुली आई ऑलवेज मेंशन दैट इन माई जर्नी ऑफ हीलिंग माई सेल्फ आई बिकेम अ हीलर, एंड दैट्स वाई आई बिकेम अ हीलर। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। जब जब किसी से बात होती है, किसी क्लाइंट से बात होती है, अगेन आई वुड नॉट वांट टू यूज अ टर्म क्लाइंट, किसी कम्युनिटी मेंबर से बात होती है, कोई ऑनबोर्ड होता है हमारे साथ, तो जब भी कोई ऐसा एपिसोड होता है जहां पे अपनी खुद का कोई इमोशन ट्रिगर होता है, तो वन थिंग दैट आई डू इज आई ऑलवेज लेट इट सरफेस। हम किसी भी चीज को अंडर द कार्पेट करके साफ नहीं कर सकते। जब तक आप उसको हटाओगे नहीं, उसको सरफेस पे लेके नहीं आओगे, तब तक वो साफ नहीं हो सकता। तो जब वो सरफेस होता है, आई नेवर कीप इट असाइड, आई लेट इट सरफेस इट मोर, एंड फिर उसके बाद आई यूज माई ओन मोडालिटीज ऑन माई सेल्फ। तो आई एम माई फर्स्ट क्लाइंट, आई एम माई फर्स्ट गिनी पिग, वट एवर यू कॉल इट, बट आई एम द फर्स्ट वन। आई ऑलवेज यूज एवरी मोडालिटी ऑन माई सेल्फ फर्स्ट। जर्नलिंग इज वन ऑफ सच ब्यूटिफुल मोडालिटी, एंड इफ एनी सच कोई फीलिंग ऐसी सर्फेस होती है, कोई इमोशन ऐसा सर्फेस होता है, कोई पास्ट ट्रॉमा ऐसा सर्फेस होता है, कंडीशनिंग ऐसी सर्फेस होती है, आई राइट इट डाउन, आई जर्नल अमिट्स ऑल दिस। एक चीज जो मैं अपने लिसनर्स को आपको बताना चाहूंगी, जर्नलिंग हमने बहुत सुनी है शायद, हमारे आसपास जर्नलिंग की बहुत बात हो रही है, बट एक मेरा जो यूनिक पॉइंट है जहां पे मैं जर्नलिंग करवाती हूँ, वो थी

0: प्रॉम्प्ट बेस्ड जर्नलिंग, हम सब कुछ ही नहीं लिखवाती बट बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपके लिए क्रिएट करके, मैं अपने लिए खुद के लिए क्वेश्चंस क्रिएट करती हूँ जहां पे हम उस पर्टिकुलर इमोशन को ही ट्रिगर करते हैं ताकि वो सरफेस हो और वो लेट गो हो जाए और वो वापस सबसाइड नहीं हो आपके सबकॉन्शियस में. तो ये एक प्रोसेस है जिससे मैं अपने आप को कंटिन्यूअसली हील करती हूँ. और दूसरी चीज जो कि मैं इस माध्यम से सारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी, एक बहुत बेसिक सी रेमेडी होती है सॉल्ट वाटर बाथ. आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे हीलर्स और बहुत सारे लिसनर्स ये कर रहे होंगे, बट डू इट रेगुलरली. आई थिंक हम सारे के सारे एक जिस भीड़ चाल में, रैट रेस में हम फंसे हुए हैं, हम बहुत एनर्जीज के साथ कोलाइड करते हैं पूरे दिन, अच्छी बुरी हर तरीके की एनर्जीज, हर तरीके के सोल्स होते हैं हमारे आसपास. तो टुवर्ड्स डे एंड आई थिंक और टुवर्ड्स डे बिगनिंग एक सॉल्ट वाटर बाथ अगर आप ले लें तो वो बहुत बड़ा हीलिंग फैक्टर बन जाता है आपके लिए एक टाइम के साथ. मेक इट अ प्रैक्टिस. So that's something जो मैं अपने लिए करती हूँ, journaling and salt water bath. It's a ritual and something that I also believe is in gratitude. Continue paying gratitude. जितना gratitude दोगे, किसी ने परेशान किया, okay, say thank you, thank you, thank you. Continue saying thank you. The more you say thank you, the more ripple effect it starts to create. और आप देखेंगे आपके आसपास वाले लोग अपने आप ही अलग तरीके से on a positive note आपको आपसे बात करने लग जाएंगे या फिर हट जाएंगे. That's how the universe transforms. And as a part of transformation tribe, I would always talk about transformation.
1: Correct. तो कहीं ना कहीं इन एनर्जी वेम्पायर्स के साथ आप इस तरह से डील करते हैं. और आपने सही कहा कि हम हर तरह की एनर्जी से कोलाइड करते हैं और बहुत जरूरी है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आपको सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना, यू हैव टू हील पीपल. सो अंटिल यू आर हील्ड नथिंग कैन वर्क आउट. एंड बहुत ही खूबसूरत लाइन आपने कही कि आप अपने फर्स्ट क्लाइंट हैं, तो उससे ये शो होता है कि आप कितने रूटेड हैं इस कॉज के लिए और कितना पर्सनल है ये कॉज आपके लिए. बहुत ही खूबसूरत बातचीत आपसे हो रही है. इसी के साथ हम आगे चलेंगे और सुनेंगे हमारा अगला गीत. दोस्तों, जिंदगी का सफर सिर्फ खुशियों का नहीं होता, लेकिन हर दर्द के बाद एक नई रोशनी जरूर आती है. इसी एहसास के साथ, इसी जज्बात के साथ हम सुनेंगे एक दिल को छू लेने वाला गीत, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल.

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, सच में प्रेरणादायक। पूजा जी, आपने वुमेन एम्पावरमेंट और आइडेंटिटी के लिए बहुत काम किया है और बहुत सारी वुमेन फोक के साथ आपने काम किया है, बहुत पर्सनली, बहुत रूट लेवल पे। तो जब आप देखते हैं आपके आसपास की वुमेन फोक को, उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके स्ट्रगल्स को, उनके चैलेंजेस को, उनकी डेली लाइफ को, तो आपको क्या लगता है इस सोसाइटी में सबसे ज्यादा उनके लिए डिफिकल्ट क्या है, खुद से लड़ना या सोसाइटल यू नो इश्यूज से लड़ना? क्या क्या वो खुद खुद की दुश्मन हो जाती हैं कई बार, या सिर्फ सोसाइटी ही है जो उनको हर बार लेट डाउन करती है, या इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ थिंग्स, पूरी कंडीशनिंग चेंज होने की जरूरत है? किस तरह से आप इससे डील करती हैं और क्या आपके एक्सपीरियंसेस में सही है, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है?
1: आई थिंक इट इज दोनों का ना ब्लेंड है ये। व्हेन आई टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, हैविंग सेड दैट, इन माय कोचिंग जर्नी मेरे पास मेन भी ऐसे आए हैं जो कि किसी ना किसी वुमेन की वजह से they've been traumatized. And let me tell you ki I take when I talk about women empowerment, it only talks about ki hum apne aap ko kaise saksham banaye ki hum ek achhi zindagi jiye. And why women, yahan pe hum women pe kyun itna emphasize kar rahe hain, wo sirf isliye hai because ek women agar mentally stable hogi, positive hogi, कंडीशनिंग अच्छी होगी उसकी, तो वो आगे घर परिवार बच्चों में वही चीज आगे दे पाएगी, ठीक है, वही चीज आगे सीप डाउन होगी बच्चों तक, बिकॉज इट्स अ वुमेन जो कि आपके घर में परिवार में सबसे ज्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है, तो इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट पासिंग इट अहेड टू द जेनरेशन ऑल्सो, हेंस वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। टॉकिंग अबाउट ब्लेंड ऑफ येस सोसाइटल नॉर्म्स भी कुछ ऐसे बने हुए हैं हमारे जहां पे एक औरत को बहुत अलग नजरिए से देखा जाता है। व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई थिंक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, एट द सेम टाइम अथॉरिटी नहीं दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे गो हैंड इन हैंड, राइट?
0: राइट।
1: तो वो वाली चीज में अभी धीरे धीरे करके शिफ्ट आ रहा है। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, मेरे लिए ये यही वुमेन एम्पावरमेंट है। आप वुमेन एंड हम दोनों ये बात कर रहे हैं और इस माध्यम से हम इतनी सारी वुमेन को और मोटिवेट कर रहे हैं। दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट फॉर मी, नॉट पिकिंग अप अ फ्लैग एंड डूइंग अ मार्च समवेयर एंड सेइंग नो आई एम द बेस्ट, नो इट इज नॉट दैट। एवरी लिटिल स्टेप जो हम कर रहे हैं दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। टुडे आई हैव अ डॉटर, उसकी कंडीशनिंग कैसी हो रही है, उसको चुप करना हमने नहीं सिखाया, उसको ये नहीं बोला तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकती। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैव बॉय किड्स, उनको कभी ये नहीं सिखाया तुम रोओगे नहीं, तुम रोओगे भी, और लड़की को ये भी सिखाया कि तुम चुप नहीं रहोगे, है ना, जहां पे तुम्हें लगता है। तो ये छोटी कंडीशनिंग है जहां से हम एक आगे आने वाली जेनरेशन को थोड़ा सा और बेटर बना सकते हैं। बट आई समवेयर आई फील कि हमारी जो हम अभी इस जेनरेशन के लोग हैं, हम कहीं ना कहीं दो जेनरेशन के बीच में फंस गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व बट वी स्टिल फॉलो द सोसाइटल नॉर्म।
0: बिल्कुल, द कंडीशनिंग इज सो स्ट्रॉन्ग,
1: राइट,
0: इतनी डीप रूटेड है हमारी कंडीशनिंग है कि वो एक नॉर्मल बन गया है।
1: एब्सोल्यूटली, सो वो चीज के बीच में हम जिस तरीके से अटक गए हैं, इट इज नॉट अबाउट कि आने वाली जनरेशन आर वे मोर स्मार्टर, दे नो। एटलीस्ट आज हम कंडीशनिंग के बारे में बात कर रहे हैं और वो इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बट इट इज दिस जेनरेशन दैट इज आर जेनरेशन दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज हम बात करते हैं कंडीशनिंग की। मेरे पास आज एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, शायद इससे ज्यादा अच्छे से बात समझ में आए कि एक देयर वाज दिस लेडी जो आई थी मेरे पास बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कि आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ, मतलब आई वॉन्ट टू जस्ट मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मुझे नहीं रहना इस घर में, और मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत एट्रोसिटीज करते हैं। नाउ व्हेन वी वेंट अहेड टू हेल्प हर, गाइड हर, कोच हर, देर वॉज वन पॉइंट इन टाइम जहां पे उस हस्बैंड ने कुछ भी बोला कि कोई बात नहीं, आगे से नहीं करूंगा, तुम वापस आ जाओ, राइट? उसने 8 साल उस घर में रह के, शी हैड बर्न मार्क्स ऑन हर बॉडी, शी वॉज हिट बैडली, बट कहीं ना कहीं उसकी कंडीशनिंग, उसके पापा ने जब बोला ना कि नहीं यही तुम्हारा घर है, और हस्बैंड ने बोला नहीं अब
0: नहीं करूंगा,
1: सी इट इज बिटवीन बोथ ऑफ अस, है ना, नहीं करूंगा की भी गारंटी नहीं, तो दिस लेडी सेड नहीं नहीं नहीं यही मुझे वापस जाना है। वो जो एक वो वाला जो एक फील फैक्टर होता है ना, जहां पे हम मैं उस सिर्फ एक लेडी की बात नहीं कर रही, हम सबकी बात कर रही हूँ, वहां पे हम स्टक हो जाते हैं। वी आर इमोशनली वल्नरेबल बिकॉज हमारी कंडीशनिंग वैसी है, वी नो कि ओ घर ये इज्जत की बात हो जाती है, वहीं पर ही मैं बात करती हूँ डिवोर्स नेविगेशन की. आई कॉल माई सेल्फ अ डिवोर्स नेविगेशन कोच. वाई? बिकॉज देर इज नो शेम इन कमिंग आउट ऑफ अ मिजरेबल रिलेशनशिप. क्यों? उस मिजरी में सिर्फ आप दो लोग नहीं रह रहे होते, मिजरी में एक पूरा परिवार पल रहा होता.
0: दो पूरे परिवार.
1: तो वाई? एग्जैक्टली, दो पूरे परिवार. तो द पॉइंट इज, वाई मेक एवरीबडी गो थ्रू दिस मिजरी एंड देन आफ्टर सर्टेन ईयर अगेन टॉक अबाउट कंडीशनिंग?
0: करेक्ट.
1: तो वाई नॉट करेक्ट इट नाउ? दैट इज वेयर वुमेन एम्पावरमेंट. आई एम श्योर हम एक वुमेन एम्पावरमेंट वाले क्वेश्चन से बहुत डाइवर्स हो गए, इधर डिबेट भी हो गए, बट देन आई थिंक इट वॉज इम्पोर्टेंट
0: डायलॉग. यस यस यस, आई फुली सपोर्ट इट. और मुझे लगता है बहुत जरूरी है ये डायलॉग. और जैसे आपने कहा कि आज हम कम से कम इस स्टेज पे तो आए हैं कि हम इन चीजों के बारे में बातचीत कर पा रहे हैं, डायलॉग कर पा रहे हैं. हमारे जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे ऐसा कुछ था ही नहीं. जो है वो ऐसा ही है और इसी को अडेप्ट करना है. सो यस, द किड्स आर मोस्ट स्मार्ट. दे आर ग्रोइंग अप इन अ एज जहां पे ये डायलॉग्स उनके आसपास कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं, एक आवाज कॉन्स्टेंटली चल रही है. तो कहीं ना कहीं बॉयज भी सही कंडीशन हो रहे हैं, कुछ चेंजेस उनमें भी आ रहे हैं. दे आर, उनके लिए चीजें थोड़ी ईज आउट हो रही हैं कि भाई सब प्रेशर डाउन उनके ऊपर, उन्हीं के ऊपर डाउनलोड ना होके इट इज लाइक दे आर गिवन सम स्पेस. एंड उसी टाइम पे वुमेन को एक एजेंसी दी जा रही है, एक वॉइस दी जा रही है, एक पावर दी जा रही है टू मेक द डिसीजंस एंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, एक्चुअली टेक स्टैंड कि हाँ ये मेरा स्टैंड है, ये मेरा डिसीजन है. तो बहुत जरूरी है ये बातचीत. एंड आई एम सो ग्लैड कि आज हमारी ये बातचीत हो रही है. और सच में वुमेन एम्पावरमेंट का यही मतलब है, झंडा लेके जाना नहीं है, अपने रोज के डायलॉग को चेंज करने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है एंड थोड़ा पुश करने की जरूरत है. आई नो इट्स नॉट वेरी इजी. जिस बेल्ट तक हम बात ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उन लिसनर्स के लिए बहुत इजी नहीं है, बट थोड़ा पुश तो करना इजी. जिस बेल्ट तक हम बात ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उन लिसनर्स के लिए बहुत इजी नहीं है, बट थोड़ा पुश तो करना पड़ेगा ना आपको. आपको खुद के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा. और शायद यही सबसे बड़ी सीख है, यही सबसे बड़ा लेसन है. एंड कुछ भी लाइफ में कभी भी चेंज इजी नहीं हुआ, हिस्ट्री इस चीज की गवाह है. तो यस, अपने लिए खड़ा होइए और अपने लिए बात करिए, डायलॉग करिए और उस एक एनवेलप को पुश करने की कोशिश करिए, क्योंकि कभी ना कभी वो उस डोर के अक्रॉस जरूर जाएगा. बहुत ही प्यारी बातचीत आपसे हो रही है मैम. इसी से मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स को रीडिफाइन किया है, जैसे कि आपने हमें बताया कि आप रिलेशनशिप कोच हैं और रिलेशनशिप्स नेविगेट करते हैं अपने हीलिंग मॉड्यूल्स के थ्रू. तो आज मेरे को लगता है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं एक इन चीजों से जुड़ी रही हूं, आई हैव बीन एन एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, एवरीथिंग, तो मैंने लोगों से डील किया है इस कॉन्टेक्स्ट में. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आती हैं लोगों की वो उनके रिलेशनशिप से ही रिलेटेड होती हैं. तो आपके हिसाब से एक हेल्दी रिलेशनशिप कि सबसे बेसिक फाउंडेशन क्या होनी चाहिए, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं बट वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो क्या होनी चाहिए मैम?
1: कम्युनिकेशन. बिकॉज बहुत एक फाउंडेशन है किसी भी रिश्ते की. और व्हेन आई से रिश्ता, एक रिलेशनशिप, सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप प्रोफेशनल भी एंड पर्सनल भी, दोनों में कम्युनिकेशन, बातचीत बहुत बेसिक फाउंडेशन है. जहां बातचीत बंद हो जाती है वहां पे उन रिश्ते में सुधार नहीं हो सकता. दैट कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप. और दूसरा है रिस्पेक्ट. ये दो चीजें किसी भी रिश्ते की एक बेसिक फाउंडेशन और नीड की तरह काम करती हैं. हमेशा, आज अगर हम बात करें, मेरे पास क्लाइंट्स

0: अगेन आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं इस कैपेसिटी में रिलेशनशिप्स की, चाहे ऑफिस में, चाहे कॉरपोरेट एनवायरमेंट में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हो, सबको मैं एक ही चीज बोलती हूँ, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन? नॉट दैट कि आप घंटों बैठ के बात कर रहे हैं, बट शाम को एक चाय पे बैठिए, ऑफिस में एक चाय पे बैठिए. अप्रेजल के लिए लेके जा रहे हैं अपने टीम मेंबर को, आप फीडबैक दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक चाय पे उससे बात करी जा सकती है. उसी तरीके से अपने बच्चों के साथ, उनके स्कूल में क्या हुआ, माना हम सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, बट वो 10 मिनट उस बच्चे को अगर हम सुन लें तो उसके लिए वो ही बहुत है. चाहे एक एज अ पेरेंट भी, आई ऑलवेज से दैट एक परफेक्ट पेरेंट बनना बहुत मुश्किल है, बट एक प्रेजेंट पेरेंट अगर आप बन जाएंगे ना, तो वो परफेक्शन की दौड़ खत्म हो जाएगी. क्यों? आप प्रेजेंट होंगे, और ये प्रेजेंस हर रिश्ते में जरूरी है, चाहे वो घर परिवार हो, बच्चे हो या ऑफिस हो. तो कम्युनिकेशन इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, एंड यस, रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ इट.
1: करेक्ट.
0: सो दैट्स हाउ इट इज.
1: बहुत ही खूबसूरत लाइन आपने कही, मैं रिपीट करना चाहूंगी कि भले ही आप परफेक्ट पेरेंट नहीं बन सके, क्योंकि परफेक्शन इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव, बट प्रेजेंट पेरेंट जरूर बने, अपने बच्चे के साथ वो टाइम जरूर स्पेंड करें, क्योंकि आपके लिए तो आपके ऑफिस की जद्दोजहद सबसे इंपॉर्टेंट है, बट उस बच्चे के लिए उसके स्कूल में, क्लास में क्या हुआ उस दिन, वही उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. तो अगर वो उसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो किस तरह से वो कहां जाके वेंट आउट करेगा. और सेम चीज अप्लाई होती है जैसे कि पूजा मैम ने हमें बताया, हर रिश्ते में, हर रिश्ते को वक्त दीजिए, कम्युनिकेट करिए, क्लैरिटी से कम्युनिकेट करिए और प्रेजेंट रहिए उस इंसान के लिए, क्योंकि बहुत बार सिर्फ बातचीत करने से बहुत मसले हल हो जाते हैं और हम चुप हो जाते हैं, और चुप होते होते वो चीजें नासूर बन जाती हैं. तो अपने रिश्तों को थोड़ी गर्माहट दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा प्रेजेंस दीजिए, थोड़ा कम्युनिकेशन दीजिए. इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे आज के आखिरी सवाल पर. हमारे लिसनर्स को मैम अगर आप कुछ मैसेज दे सकें अपनी लाइफ से, अपने लेसन से, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लिसनर्स मुझे आज पता है बहुत कंफ्यूज्ड होंगे, कहीं ब्रोकन होंगे, डायरेक्शन लेस फील कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक प्रैक्टिकल सी कोई एडवाइस, कोई सोल्यूशन, कोई डेली लाइफ में अपनाने वाला मंत्र, कोई भी मैसेज अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा?
0: एक चीज जो कि मैं जरूर बोलना चाहूंगी इस माध्यम से, कि जब भी आप अपनी लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हैं, जब भी आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज फील कर रहे हैं, आई थिंक वहीं से ही आपकी ट्रांजिशन की शुरुआत हो जाती है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो जाती है. क्लैरिटी एक एक्शन है, और उस क्लैरिटी तक पहुंचने के लिए कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है. तो अगर आप आज कंफ्यूज फील कर रहे हैं, तो यू आर नॉट समवन, आप किसी एक ऑकवर्ड पोजिशन में नहीं है, आप सबसे सही पोजिशन में है. तो क्लैरिटी में एक तो थम जाइए. ये जो भाग भाग की जिंदगी बन चुकी है, एक बहुत जरूरी चीज, थम जाइए, बैठ जाइए, एक पेन और पेपर उठाइए और अपने थॉट्स को उस पर लिखना शुरू कीजिए. मैं आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन राइटिंग इट डाउन. एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जब आप अपनी थॉट्स को लिखते हैं ना, तो आप अपनी थॉट्स को खुद देख पाते हैं. अगर आज हम सारे जितने लोग इस यहाँ पे सुन रहे हैं इस बात को, और मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं और बहुत सारे श्रोता और भी सुन रहे हैं, हम आज से अगर रोज ये करना शुरू करते हैं, दिमाग चलना शुरू होता है, भाग भाग कंफ्यूजन, आप खुद लिखना शुरू कीजिए. ट्रस्ट मी, इट इज अ गेम चेंजर. सेकेंड, अपनी कंफ्यूजन, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कीजिए. आप चाहे मेल है, आप फीमेल है, आप टीन है, आप एडोलेसेंट है, कम्युनिकेट अबाउट इट. देर आर पीपल लाइक अस, हम यहाँ बैठे ही इसीलिए हैं कि आप आए बात करें. सॉल्यूशंस है हर चीज के. इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, लोग अपने ही घर में घुट घुट के कितने गलत डिसीजंस ले रहे हैं. मत लीजिए ये डिसीजन, हम बैठे इसलिए है. मैंने अगर अपना 20 साल का कॉरपोरेट करियर, आई हैव जस्ट लेट इट गो फॉर एवरीवन लिसनिंग to this talk right now. We are here to listen to you, help you, support you. कोई गलत decision नहीं लेना. We are here to hand hold you. आपको बचपन में जिस तरीके से उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, life में ऐसी बहुत सारी problems आती हैं जहां पे फिर से किसी ना किसी की उंगली पकड़नी जरूरी होती है. तो please उस shame से बाहर निकलिए, उस guilt से बाहर निकलिए कि मैं at the age of 40 or 50 मैं कैसे एक सपोर्ट मांगू या कैसे हेल्प मांगू. नहीं, हेल्प मांगना, सपोर्ट मांगने की कोई एज नहीं होती. शाउट आउट फॉर सपोर्ट. आई ऑलवेज से शाउट आउट फॉर सपोर्ट. लिखिए, फिर हमारे पास आइए, शाउट आउट फॉर सपोर्ट एंड देयर इज डेफिनेट सपोर्ट दैट वी कैन प्रोवाइड यू। हर चीज का, हर प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, वही है, हर ताले की हर चाबी है, चाबी होती ही होती है, उसी तरीके से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता ही होता है। तो प्लीज टॉक इट आउट, आपको बात करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मोटिवेटिंग टॉक रहा पूजा जी आपके साथ। मैं खुद बहुत इंस्पायर हुई हूँ, मैं खुद बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ एंड मैं अपनी जर्नलिंग पे वापस जाऊंगी आज से ही बिल्कुल। और यही मैं हमारे श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि जर्नल करना शुरू करें, कम्युनिकेट करना शुरू करें, अपने आप को अपने अंदर जाके टैप करें उन जगहों पे जहां पे आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए या कुछ मिसिंग है। अपने आप के अंदर जाएं और फिर उससे बाहर निकल के किसी के साथ कम्युनिकेट करें ताकि आपको कोई इंसान हाथ पकड़ के उस कंफ्यूजन से, उस डार्कनेस से बाहर लेके आ सके, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट। एंड बहुत सारी चीजें आज जो पूजा मैम ने हमारे साथ शेयर करी, आई होप आप उसका फायदा उठा सकें, उसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकें और उससे अपनी लाइफ चेंज कर सकें। पूजा मैम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, क्या आप एक कार्ड पुल आउट कर सकते हैं आज के हमारी इस कॉन्वर्जेशन के लिए?
0: वेल डेफिनेटली, लेट मी टू डू दिस।
1: जी जी जी, सो दैट हमारे श्रोताओं को थोड़ा टैरो का फील आए।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली, एक काम करते हैं फिर, जो हमारी अभी एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जीज है सारे लिसनर्स की, इसी के बेस्ड एक रीडिंग करते हैं।
1: करेक्ट,
0: सो लेट्स डू दिस नाउ। ओके, आई थिंक देर इज अ व्हाट आई सी राइट नाउ थ्रू टैरो इज इंटेंस एनर्जी है। आई डोंट नो इज इट बिकॉज ऑफ द आउटर confusion and the stress that is going around in the world, but the listeners are stressed out. You know, वो stress दिख रहा है एक collective energy में।
1: जी,
0: collective energy क्या होती है? Collective energy जैसे आपने अपना, आप अपना ये वर्षफल और सब पढ़ते ही होंगे newspaper में, तो एक collective energy होती है, ये एक collective predictive energy होती है जिसमें अभी सिर्फ एक stress दिख रहा है।
1: जी,
0: stress को release करना बहुत जरूरी है।
1: Right.
0: जैसे कि मैंने कहा था, लिखिए
1: जी,
0: है ना, लिख के ये स्ट्रेस रिलीज होगा। सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए
1: जी,
0: ये स्ट्रेस सारे रिश्तों पे आता दिख रहा है आने वाले टाइम में। आप अगर बाहर से फ्रस्ट्रेट होकर आ रहे हैं, आई कैन सी दैट स्ट्रेस कमिंग आउट। हैविंग सेड दैट, जहां मैं ये बोल रही हूँ, अगर मैं दूसरा कार्ड भी पुल आउट करूँ, आई सी दैट देर इज हैप्पी मोमेंट्स अहेड।
1: जी,
0: खुशियां है आगे।
1: जी,
0: देर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ऑलवेज रिमेम्बर दैट।
1: बिल्कुल
0: राइट, सो व्हाइल द टनल इज डार्क, but there is light at the end of the tunnel, so that is what the tarot says today.
1: How beautiful!
0: I hope that answers.
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अगेन बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेशनल टॉक्स थी और मैं बहुत खुश हूं कि आज हम कनेक्ट हुए। कहीं ना कहीं ये डेस्टिन्ड थी ये कॉन्वर्जेशन, और हमारे श्रोता जी, हमारे श्रोता जो आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, अगर वो हमें सुन पाएंगे तो वो भी बाय डेस्टिनी आज हमारे साथ अलाइन हुए हैं इस कॉन्वर्जेशन के लिए, तो आई एम श्योर उन्हें बहुत फायदा होगा। दोस्तों, जिंदगी के रंग कभी कभी बहुत कठिन होते हैं, लेकिन कभी कभी उन रंगों से ही एक नई तस्वीर बन के आती है। आज की महफिल में हमारे साथ थी मिस पूजा शर्मा, जिन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी लाए। पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एक बार फिर से।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के लिए जिसके थ्रू मैं इतने सारे श्रोताओं से उनसे बात कर पाई, उनको छोटी सी टिप्स दे पाई। थैंक यू सो मच, आप बहुत ही ब्यूटीफुल काम कर रही हैं एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लक एंड लव एंड लाइट इन योर लाइफ।
1: थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग, गीतों के संग, आपकी अपनी आरजे तरानों की हम सफर तनुषा के साथ, सिर्फ एसएन रेडियो पर। मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान और नए गीतों के साथ और जिंदगी के एक और नए रंग के साथ।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ। जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए

0: गई।
1: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। दोस्तों, आज का रंग है अनुभवों की विरासत और मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं ऐसे व्यक्तित्वों से जिनका जीवन केवल वर्षों का नहीं अनुभवों का खजाना है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही सधे हुए, संवेदनशील और गहराई से सोचने वाले व्यक्तित्व डीएन शर्मा जी, जिन्होंने अपना जीवन बैंकिंग जैसी अनुशासित दुनिया में बिताया पर दिल हमेशा साहित्य की भावनाओं से जुड़ा रहा। वे न केवल एक सफल बैंक अधिकारी रहे बल्कि हिंदी साहित्य के प्रेमी, सामाजिक रूप से सक्रिय नागरिक और अपने 95 वर्षीय पिता के समर्पित पुत्र भी हैं। उनकी कलम सामाजिक पाखंडों को बेनकाब करती है और उनके शब्द समाज के आईने में हमें अपना असली चेहरा दिखाते हैं। आज के इस विशेष संवाद में हम जानेंगे उनकी जीवन यात्रा, उनके साहित्यिक विचार, उनके सामाजिक दृष्टिकोण और वह दर्शन जिसने उन्हें हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखा है। तो आइए स्वागत करें डीएन शर्मा जी का और चलें उनके साथ एक आत्मीय सफर पर अनुभवों की विरासत के इस प्रेरक संवाद में। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ा हिस्सा बैंकिंग की दुनिया में बिताया, एक अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित यानी टारगेट ओरिएंटेड जीवन। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस यात्रा को कैसे देखते हैं?
1: जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा 36 वर्ष 8 माह की मैंने बैंकिंग की सेवा की है। पंजाब नेशनल बैंक में कार्य किया और बैंक ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं बिहार, गुजरात, हरियाणा आदि कई राज्यों में मेरी पोस्टिंग रही। वहाँ के लोगों से मिलना जुलना हुआ, वहाँ की संस्कृति को देखा, निकट से जाना। बिहार एक बहुत ज़्यादा प्रचारित स्टेट है, लेकिन वहाँ पे जो मैंने निवास किया, वहाँ रहा, तो ये पाया कि वहाँ के लोग उतने ही सीधे और सरल हैं। बहुत ही अच्छा लगा, हालांकि वो बात बहुत पुरानी हो गई। 90 में हम वहाँ से वापस आ गए।
0: जी, और
1: इसके साथ ही बैंकिंग जीवन में जो लक्ष्य थे वो बैंक में थे। बाहरी जीवन में हम ग्राहक सेवा और एक टीम वर्क, ये दो भावनाएं मुझे वहां से सीखने को मिली। आप एक अच्छी टीम के साथ जब चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, और टीम बनाना आपके हाथ में, टीम के हर सदस्य का ख्याल रखना, तो अच्छी टीम का निर्माण का महत्वपूर्ण बिंदु।

0: ग्राहक सेवा एक ऐसी सेवा है जो ना सिर्फ बैंक का नाम रोशन करती है, वरन एक जो कहते हैं ना कि मानव सेवा ही नारायण सेवा है, ये संघ का एक मूल वाक्य है। तो नारायण सेवा यानी कि भगवान की सेवा, आप किसी अत्यंत कष्ट में जो आदमी है उसकी अगर अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं तो वो ग्राहक सेवा बहुत उच्च स्तर की मानी जाती है, और वो हमने की है। कई बार ऐसा हुआ, एक बार एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा। राजकोट में मेरी पोस्टिंग थी,
1: जी
0: रात 11 बजे मुझे फोन आया कि साहब आपका एटीएम काम नहीं कर रहा।
1: ओह
0: मैंने कहा
1: अच्छा
0: आप जी? तो बोला मैं अपने पिताजी को शहर वहां गांव से लेके आया हूँ और मुझे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, एटीएम काम नहीं कर रहा और मुझे पैसे चाहिए। मैं तुरंत एटीएम पे गया, पास में ज्यादा 1.5 किलोमीटर था राजकोट में जहां मैं रहता था, वहां
1: जी
0: उसकी परेशानी को समझा और सौभाग्यवश उस समय मेरे पास, मैंने कहा कितना पैसा चाहिए? कि साहब 5,000 चाहिए, आप चाहें तो मेरा ये कार्ड रख लें, मैं सुबह आके बैंक में आपको दे दूंगा पैसे। सौभाग्य से 5,000 रुपये, हम लोग बैंकर पैसे ज्यादा रखते नहीं है, लेकिन उस दिन किसी उस
1: जी
0: दिन किसी कारण से मेरे पास पैसे थे। मैंने कहा उसको मैंने वही पैसा दिया, क्योंकि वो बोला अब
1: जी
0: रात में मैं कहाँ जाऊं साहब, मैं तो
1: सही
0: इसी
1: बात है।
0: विश्वास पे आया था कि एटीएम से पैसे मिल जाएंगे, तो मुझे वो विश्वास उसका बरकरार रखना था, पैसे दिए। दूसरे दिन आके वो मुझे दे गया, बात आई गई हुई। लेकिन उस समय विशेष में अगर उसकी मैं हेल्प कर सका तो ये मेरे लिए अवसर था। जी
1: संतोष मिला आपको,
0: जी
1: संतोष मिला आपको, बिल्कुल सही
0: बहुत
1: बात।
0: ज्यादा। हाँ
1: चलिए चलिए।

0: क्या साहित्य की रुचि आपकी नौकरी के साथ साथ रही या सेवानिवृत्ति के बाद उसे गहराई से जीने का अवसर मिला है?
1: साहित्य से लगाव तो शुरू से ही रहा। बचपन में जब हिंदी में भी हमारे सिलेबस में गद्य और पद्य दोनों ही हुआ करते थे,
0: जी।
1: तो बहुत सारे ऐसे गद्यों की पद्यों की मैंने ऐसे कंठस्थ हो गए जिन्हें मैं जोर जोर से बोल करके सुनाता था। जैसे
0: जी।
1: दिनकर साहब का रश्मि रथी है,
0: हाँ, अच्छा, रश्मि रथी, बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: साहब वो बहुत, उसको भी मैंने बहुत गा गा करके भी सुनाया है।
0: अरे वाह,
1: और
0: अरे
1: हाँ,
0: वाह, अच्छा।
1: दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही कुछ इसे खा लेंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे।
0: वाह, अभी सुनेंगे कभी। वाह, बहुत
1: पर
0: बढ़िया।
1: दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष समाज की, लेने बहुत लंबी है तो उसके ये 2-3 लाइनें थी। बाद में जब किशोरावस्था आई तो उस जमाने की जो पत्रिकाएं थी उनमें साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बी,
0: हाँ,
1: सारिका,
0: धर्मयुग, धर्मयुग।
1: धर्मयुग, ये अब बंद हो गई है,
0: हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इन्होंने ये साहित्य से ही जुड़ी सारी पत्रिकाएं।

0: नहीं सर,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: दूसरा कि हंगामा, सिर्फ हंगामा करना मकसद नहीं
1: रही
0: है,
1: मेरी
0: ये हालात
1: सीरत,
0: बदलने
1: बदलने चाहिए, बिल्कुल
0: चाहिए सर वो। तो ये
1: बिल्कुल।
0: काफी इन्होंने जीवन में ये बातें अभी भी दिमाग में कौर की है। हाँ, और
1: आपकी इतनी सी बात ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी है, क्या बढ़िया
0: एक
1: बढ़िया पुरानी बातें, और वो हिंदी गद्य पद्य संग्रह आपने याद दिला दिया बचपन का, और
0: जी
1: कादम्बिनी ज्ञानोदय और धर्मयुग और साप्ताहिक
0: जी
1: हिंदुस्तान की याद दिला दी, वाह मजा
0: जी
1: आ गया।
0: कहा तो वह है
1: चलिए
0: ना, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर
1: जी
0: जी
1: जी
0: का ही
1: दिनकर
0: है
1: जी का, दिनकर
0: ये।
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: ये ऐसी लाइनें हैं, अमिट है, ये हमेशा रहेगी जीवन जी, मानना सीख
1: बिल्कुल।
0: मैं है।

0: आपको हिंदी साहित्य से तो विशेष लगाव है ही है।
1: जी
0: कौन से विशेष लेखक, हालांकि आपने दो तीन लेखकों अभी नाम दे दिया, या कवि जो आपके मन पे सबसे गहरी छाप छोड़ गए हैं, कौन है
1: हाँ,
0: ऐसा?
1: एक तो ये पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, जो पुष्प की अभिलाषा बहुत
0: पुष्पी
1: ही,
0: अभिलाष। हाँ हाँ
1: चाह नहीं मैं फूलों में गूथा
0: हाँ
1: जाऊं, हाँ चाह नहीं मैं चढ़ा शीश पर हरी के इठलाऊं, है ना,
0: इठलाऊं इठलाऊं,
1: लास्ट में ना, कि मुझे तोड़ लेना बनवाली,
0: छोड़ देना
1: उस
0: उस पद
1: पद पर
0: पर।
1: तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर रहे।
0: जय वीर ने, बहुत बहुत।
1: ये बहुत अच्छी लाइनें थी जो अभी तक भी देश सेवा के लिए प्रेरित करती हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया।
1: कहानियों में वो
0: वो
1: ईद
0: अब
1: का
0: आपने रश्मि रति की बात की थी, आप
1: जी,
0: तो चलिए कोई ऐसी रचना या कविता या पंक्ति जिसने आपके जीवन दर्शन को बदल दिया हो उसके बारे में कुछ बताएं, अगर उसको सुनाना चाहें थोड़ा सा ब्रीफ में, तो आपका स्वागत है।
1: कविता मैं तो अपनी वो मेरी खुद की बताई हुई है, लेकिन वो अभी सुनाता हूँ। हाँ
0: जी, सुनाइए सुनाइए
1: तो
0: सुनाइए।
1: सुनाता हूँ, अभी बन पाई है, आज समय अभाव में ऐसा कम मिलता है, लेकिन
0: जी
1: है कि भीतर जज्बात गड़े हुए,
0: अच्छा
1: भीतर जज्बात गड़े हुए, बाहर मुखौटे चढ़े हुए,
0: ओहो ओहो
1: सच की कीमत गिरती रोज, झूठ के सिक्के गड़े हुए,
0: वाह,
1: या
0: अच्छा।
1: नैतिकता के गीत सुनाए, नैतिकता के गीत सुनाए, खुद लाभ के राह बनाए, जन सेवा के वचन बड़े पर कर्म स्वार्थ में लिपट जाए, और लास्ट है कि दिखावे के छंद रचे, दिखावे के छंद रचे, असली मूल्य तो कहीं गुम, सामाजिक मंच पर नाटक चलता, अंतःकरण में

0: कह रहे हैं हम।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, सारा चीजें बदल गई हैं, धर्म और ये सब चीजें तो पुरानी हो गई है। आप ये
0: नहीं,
1: बताइए, इसके आज के डिजिटल युग में आप हिंदी साहित्य की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या ये पिछड़ रहा है या नए रूप में उभर रहा है? क्या सोचते हैं इसके बारे में?
0: पिछड़ तो नहीं रहा, स्वरूप बदल रहा है। पहले
1: अच्छा,
0: जो पहले प्रिंट मीडिया था, आज डिजिटल मीडिया है। प्रिंट
1: बिल्कुल
0: मीडिया में जब कहानियां, उपन्यास या कुछ भी सृजन होता था, लिखा जाता था, वो तो थोड़े ही हाथों में जाता था, थोड़ी ही आंखें उन्हें पढ़ पाती थी। पर
1: अच्छा
0: आज हर हाथ में मोबाइल, और
1: बिल्कुल
0: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसपे आपकी कही हुई बात तुरंत सब जगह फैल जाती। तो वास्तविक रूप से तो जनमानस, जो हमारा जो माइंड सेट है, उसको प्रभावित करने का ये सोशल मीडिया है। यही तो है सर, पहले भी साहित्य यही करता था। पहले का साहित्य घटनाओं का, घटनाएं घटने के बाद उनका वर्णन करता था, लेकिन
1: जी
0: फिक्शन तो एक अलग चीज थी, वो
1: हाँ,
0: पिक्चर और उसमें वो अलग मीडिया है। लेकिन प्रिंट
1: ठीक है,
0: मीडिया में मैं जब बात करता हूँ, तो जो फिक्शन कला, जब घटनाएं घट जाती है उसके ऊपर उसका विवेचन होता था। आज तो दृश्य मात्र सब कुछ आपके सामने होता है, लोग हाथों हाथ उसके वीडियो भी बना देते हैं। ये तो सत्यता आज बिल्कुल लोगों को जानने को मिल रही है, हर चीज उनके सामने है, तो उसके बाद वो अपने निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि माइंड सेट वैसा ही बनता है। तो सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, और जो साहित्य, यानी कि साहित्य नहीं रचा जा रहा, साहित्य भी है, लेकिन जो बातें पुरानी है, इतिहास, इतिहास का भी हमें पहले जितना बताया गया था उतना ही मालूम है, लेकिन
1: जी
0: आज लोग उसको कुरेद कुरेद के, कुरेद कुरेद के सारे प्रस्ताव के सामने ला रहे, तो बहुत अच्छा भविष्य है। एक स्वरूप बदल गया, जागरूकता बढ़ गई, ये मैं मानता हूं।
1: नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ट्विटर पे घटना घटती नहीं है, कोई स्टेटमेंट देता नहीं है और उसके रिएक्शन से एकदम ट्विटर पे या फेसबुक पे और इन पे आने शुरू हो जाते हैं। और कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें एक्सीडेंट होते ही उसकी एकदम तुरंत खबर भी आ जाती
0: तुरंत
1: है और रिलीफ भी पहुंच जाती है। हर
0: यही
1: प्लस
0: तो
1: एंड
0: कहता
1: माइनस
0: हूं,
1: दोनों रिलीफ भी
0: दोनों ही है।
1: पहुंचती है, देखे दोनों ही
0: और
1: बात है।
0: दूसरी बात है कि जो युवा जो है, जिसको अपन समझते हैं कि साहित्य में रुचि नहीं लगा, वो भी इसमें पूरा सक्रिय है ना, वो उसके
1: नहीं,
0: पास
1: बहुत
0: पहले
1: सक्रिय
0: पहुंच
1: है,
0: रहा, वो उसके पास पहले पहुंच रहा, वो उसकी प्रतिक्रिया पहले आ रही।
1: बिल्कुल सही बात। अब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल होने लग गए और काफी सफल हो गए और काफी युवाओं की भीड़ भी होती है वहां,
0: और बहुत
1: तो
0: अच्छी बात,
1: मतलब ठीक है, उसका अपना एक माइनस पॉइंट भी है, थोड़ा सा वहां कॉमर्शलाइजेशन है, लेकिन
0: हाँ
1: फिर भी
0: वो
1: चल
0: एक
1: ही
0: अलग
1: रहे हैं
0: बात।
1: वो
0: हाँ
1: अलग बात है।
0: ये जयपुर डायलॉग अभी होगा 7-8 नवंबर, मैं 3 साल से जा रहा हूँ, ये तीसरी बार होगा मेरे।
1: हाँ, जयपुर डायलॉग आने वाला है, मैं भी जाऊंगा उसमें।
0: हाँ
1: सर
0: तो
1: संजय
0: जयपुर डायलॉग,
1: संजय
0: संजय
1: संजय
0: दीक्षित, तो
1: दीक्षित,
0: बहुत अच्छा, वहाँ
1: बिल्कुल
0: सारे राष्ट्रवादी विचारकों के लोग आते हैं, उनसे व्यक्तिगत आप मुलाकात करते हैं, उनसे सेल्फी खिंचवाते हैं, तो बड़ा आनंद आता।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आऊंगा। और मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका में रहता है, वो संजय दीक्षित का बड़ा फैन है, वो भी आ रहा है अमेरिका से सिर्फ इसके
0: अरे
1: लिए आ रहा है। बोले कमाल है
0: हाँ,
1: ना।
0: कमाल नहीं, मेरे अपने
1: जी,
0: राजकोट, मेरे साथ जो काम किए हैं व्यास जी महाराज, वो भी आ रहे हैं। उन्होंने
1: अरे
0: पहले
1: वाह
0: ही फोन
1: वाह,
0: कर दिया कि आप वही हैं, मैंने कहा हाँ, बोले मैं उसमें आ रहा
1: बहुत
0: हूँ सर, मैंने कहा आओ पधारो,
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: बोला।

0: कन्हैया
1: ए रामा
0: उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्हैया आ रे बर्फी के सब रस ले लिया रे बिंदड़े वाले मुनिया।
2: चलिए तो ये जो आपने कविता भी सुनाई इससे ये लगता है कि आप समाज की जो दोहरी मानसिकता है या पाखंड है या हाइपोक्रेसी है इसको ये आपको सबसे ज्यादा खटकती है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ये क्यों हो रहा है और आपको ही क्यों ऐसा महसूस होता है कि हाइपोक्रेसी बहुत ज्यादा है हाइपोक्रेसी और पाखंड बहुत है हमारे समाज में डबल स्टैंडर्ड जिनको कहते हैं।
1: इसका मूल कारण जब मैं खोजता हूँ तो एक जो धारणा हम लोगों के मन में बिठाई कि पुण्य मिलेगा है ना एक आम धारणा बिठा देते ना ऐसा करने से पुण्य मिलेगा गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाएंगे ऐसा करने से यह होगा। भाई मूल तो यह है कि वो पाप करे ही क्यों ताकि धोना पड़े। दूसरा
2: अच्छा
1: पुण्य कमाना का आज जब मैं देखता हूँ अभी जा रहा था मेरे नाती को छोड़ने तो सड़क पर कुछ लोगों ने हरा चारा वहां रखा हुआ और गायें थोड़ी सी वहां कर रखी है और अब जो पुण्य कमा रहा है वो 10 रुपए की वो एक पुली खरीद के वहां बिखेरता वो सड़कों पे ट्रैफिक तो बर्बाद हो ही रहा ना ट्रैफिक का नुकसान हो लेकिन वो पुण्य कमा रहा है ऐसा पुण्य तो कोई काम का नहीं है। दूसरा बुजुर्गों की बड़े बूढ़ों की ये जो वृद्धाश्रम और ये जो खोल रहे हमारी संस्कृति में ही नहीं थे हमारे जीवन मूल्य ये कहते ही नहीं थे
2: जी।
1: जो वृद्ध था उसकी तो घर में ही सेवा होती थी
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: तो ये जो जीवन मूल्य राजनीतिक सुचिता कहाँ है सर राजनीतिक सुचिता है? हम अच्छा हमारे समाज में ये कहते हैं कि कमजोर की सहायता तो करते नहीं है और विश्व के कल्याण का नारा लगाते हैं तो विश्व का कल्याण कब होगा जब मेरा पड़ोसी अगर वो किसी कारण से अभाव में है तो उसकी तुरंत सहायता हमको करनी चाहिए ना वो हम नहीं कर पा रहे तो ये है दिखावा। आप जा रहे हैं मंदिर में लोगों को दिखाने के लिए वहां खूब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डोर भी अगर कोई गरीब या कोई वीक आदमी है आर्थिक रूप से कमजोर है कभी उसको पूछेंगे नहीं जाके तो भैया क्या हाल है कुछ चीज की जरूरत हो तो मुझे बता। तो ये अगर ऐसा करे तो अपने आप ही सारा समाज स्वस्थ हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा ऐसा मैं देखता हूँ। और
2: सही
1: दोहरी मानसिकता सर अब खाली इसमें ही नहीं है आप देखें आर्थिक जीवन मूल्यों का तो बहुत ही पतन हो अगर आर्थिक जीवन मूल्य का मैं यही मानता हूं कि आज देखते हम मिलावटी क्यों मिलता है सर नकली क्यों होता है हर मसाले खाने की चीज जिससे हमारा स्वस्थ रहना है आदमी को उसमें मिलावट नकली मिठाइयां आ रही नकली मावा आ रहा तो ये आर्थिक रूप से मैं इसको आर्थिक जीवन मूल्यों का पतन देखता हूँ वहां पारदर्शिता नहीं है आप कमाए ना भाई हर एक आदमी बैठा है कमाने के लिए रोजी रोटी है आप आजीविका करें लेकिन जीवन वहां पे भी तो मूल्य रखें कुछ कि मैं कुछ भी हो जाए मैं नकली या ये सब स्टैंडर्ड का काम नहीं करूंगा। ये यहां मैं वो देखता हूं हम देखते सारे सरकारी हर आदमी क्यों भाग रहा है सरकारी नौकरी मिल जाए क्यों क्योंकि वहां वो तनख्वाह जो मिलेगी ना काम करने की वो उससे संतुष्ट नहीं होता वो तो काम करने के अवज में जो मिलने वाला है उससे संतुष्टि आती
2: है।
1: अच्छा मुंशी प्रेमचंद ने साहब इसको कब नमक का दरोगा 100 साल
2: नमक का दरोगा बहुत साल
1: उसने लिख दिया था कि ये ऊपर की इनकम तो वो ये अमावस्या का चांद है जो दिखता नहीं है लेकिन बढ़ रहा जाता
2: है सही बात
1: और खाली तनख्वाह तो पूर्णमासी का चांद है जो एक बार दिखती है महीने और बाद में सिनेशन है लुप्त हो जाती है वो ये आज भी जब है समाज में हम ठीक नहीं कर पाए ये मेरे को कचोटती है बात
2: कचोटती।

0: नहीं बिल्कुल यार, मुझे भी आपकी बातों पे याद आ गई, एक सज्जनता का दंड एक प्रेमचंद जी की कहानी हुआ
1: अरे साहब, हाँ,
0: करती थी
1: प्रेमचंद जी
0: तो
1: ने तो,
0: उसमें भी
1: प्रेमचंद जी ने जो वो सामान्य मानसिकताओं का जो वर्णन किया है ना, वो सब, वो
0: बहुत
1: अभी तक मैं
0: बहुत
1: उनके नजदीक किसी को नहीं पाता।
0: बिल्कुल
1: उनकी
0: बिल्कुल सही
1: गहरी
0: बात है,
1: संवेदनशील लेखन जो था ना उनका, एक आदमी
0: बहुत
1: के अंदर तक घुस करके उसकी भावनाओं को जो उजागर किया है, कोई भी कहानी उठा ले वो
0: कोई भी
1: अभी
0: कहानी
1: तक। हाँ, अभी मैं बहुत कम साहित्यकारों को ऐसा मानता हूँ, हालांकि सबकी अपनी अपनी विधा है,
0: ना,
1: सब
0: सही
1: अपने
0: बात
1: अपने क्षेत्र में है, लेकिन
0: है।
1: वो मानवीय मूल्यों और ये संवेदनशीलता को जो लिखा है वो मुंशी प्रेमचंद।
0: बहुत बहुत सही बात है, क्या पुरानी बातें याद आ गई आपके साथ बात करके। चलिए, अब साहित्य समाज में परिवर्तन ला सकता है, या कुछ लगता है आपको कि अगर साहित्य पॉजिटिव लिखे या अच्छा लिखे तो उससे कुछ समाज में परिवर्तन आ सकता है? क्या किया जाए इस स्थिति में?
1: देखो, अभी मैं जब साहित्य के बारे में अपन बात करते हैं, तो मैं ये
0: जी
1: देखता हूँ कि अभी युवाओं का जो हुआ, ये एक IITian हुआ है ना, जिन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड हाफ वाइफ, और ये जिसपे एक पिक्चर भी बनी है अभी, ये एकदम से विस्मृत हो रहा है नाम उसका। तो उनका साहित्य
0: अच्छा,
1: देखता हूँ तो युवाओं के लिए तो उन्होंने कम से कम चार पांच उनके अच्छे उपन्यास हैं। हाँ,
0: चेतन भगत की बात कर रहे हैं क्या आप?
1: चेतन भगत,
0: चेतन भगत की
1: चेतन
0: बात कर रहे हैं? हाँ
1: है, वो भी साहित्य है।
0: चेतन,
1: तो
0: हाँ, वो
1: उन्होंने,
0: भी सर।
1: लेकिन उन्होंने, मैंने पढ़ी उसकी दो दो उपन्यास मैंने पढ़े हैं उनके।
0: हाँ, मैंने भी पढ़े,
1: तो
0: मैंने भी पढ़े।
1: वो जो युवा है ना, उसकी आज की परिस्थितियां, आज में उसके द्वारा किए गए कार्य, या आज किस प्रकार से वो रिएक्ट करेगा, उसका वर्णन किया। तो वो इतना प्रभावी और परिवर्तन वाला मैं नहीं मानता उस साहित्य को। अभी मैं देख रहा हूं कि समाज में धार्मिकता का एक ज्यादा बोलबाला चला हुआ है अभी पूरे समाज में,
0: जी
1: कोई भी
0: जी
1: हो,
0: जी
1: कोई भी,
0: बिल्कुल
1: चाहे
0: बिल्कुल
1: हिंदू
0: बिल्कुल
1: हो, मुस्लिम
0: हो
1: हो, क्रिश्चियन हो।
0: जा, बिल्कुल बिल्कुल
1: तो मेरा ये मानना है कि ये वास्तविक परिवर्तन तो हमारे गुरु लोग हैं या संत महात्मा। अभी देखते हैं हम, एक महात्मा जी अगर प्रवचन देने आया है, वो पंडाल भरे हुए हैं, तो
0: पंडाल भरे हो जाता
1: है,
0: है।
1: आप देखें
0: और
1: अभी विद्याधर नगर में भी काफी ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं,
0: हाँ, हुई है, और महिलाओं की
1: स्टैम्पेड भी
0: संख्या
1: होती है,
0: बहुत होती है उसमें,
1: बहुत
0: महिलाएं
1: होती
0: तो
1: है।
0: भरी पड़ी है, भरी पड़ी है,
1: हाँ साहब, तो
0: क्या है।
1: वो है संत महात्मा। अच्छा, मुल्ला मौलवी है। मौलवी साहब ने मस्जिद में जो तकरीर कह दी है वो ज्यादा प्रभावी है। तो वो अगर हमारे समझदार होंगे तो वो समाज को परिवर्तित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही।
1: ये मेरा ऐसा मानना है कि हम, क्योंकि अभी भी हम धर्म गुरुओं के उपदेशों से ही प्रभावित होते रहे हैं, और आज भी हो रहे हैं और
0: वो
1: आगे
0: आज
1: भी
0: भी
1: होंगे।
0: हो
1: तो
0: रहा
1: भले ही हम कहते रहे कि हमारी सोच, हम तो बहुत वैज्ञानिक हैं, लेकिन कर्म कांडों से तो मुक्त ना हो पाए हम। तो
0: बिल्कुल सही बात।
1: परिवर्तन, परिवर्तन के लिए मुख्य जो हस्तियां हैं, तो वो उनमें मैं इनको मानता हूं कि साहित्य एक, उसकी रीच बहुत कम है, साहित्य को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो इनकी
0: बिल्कुल
1: रीच ज्यादा है। तो अगर वास्तविक परिवर्तन लाना होगा तो हमें इनसे ही, इनसे गुजारिश करनी होगी कि ये अच्छी बातें बताए। है
0: सही बात,
1: वैसे हमारा दर्शन बहुत बढ़िया, सनातन का भी दर्शन बहुत बढ़िया, विश्व बंधुत्व की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया है, यही सब हमारे है, हमारे विश्व का कल्याण हो, यही कहते हैं ना बाबा। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यही
1: ये,
0: है।
1: हाँ, तो ये ज्यादा प्रभावकारी और परिवर्तनकारी इन लोगों की भूमिका है, ये अच्छे होने चाहिए। और दूसरा,
0: बिल्कुल सही।
1: हमारे जो शिक्षक वृंद है, जो प्रारंभिक शिक्षा देते हैं, बड़े नहीं, प्रारंभिक, क्योंकि वहां हमारा बेस तैयार होता है, हमारी सोच का जो बेस है मूल, वो वहां तैयार होता है। तो वहां पे हमें जो भी हमारे शिक्षक वृंद है वो इतने उत्तरदायी अपने आप को समझे कि यार मेरा ये ड्यूटी है मैं बच्चों में अच्छे संस्कार डाल, तो वहां से शुरू होगा, मेरा ये मानना है कि
0: बिल्कुल
1: समाज
0: सही
1: को
0: है,
1: पर
0: ये पॉइंट आपका बहुत सही है। शिक्षक की जो समाज में स्थिति अब बन गई है
1: बन गई है। हाँ
0: वो बहुत ही पीड़ादायक है। मैं तो यही कहूंगा, एक जमाने में गुरु का जो प्राइमरी का स्कूल का टीचर होता था वो जिंदगी भर याद रहता था, और कितना भी आदमी बड़ा बन जाए उसके जाके चरण स्पर्श
1: पांव
0: करता था,
1: छूते ही थे, पांव
0: पांव
1: छूते ही
0: छूते ही
1: थे
0: पांव
1: सर।
0: छूते थे।
1: आज
0: लेकिन
1: भी
0: अब
1: हम तो छूते
0: तो
1: हैं, हम तो छूते हैं, हमारे जो
0: बिल्कुल
1: पुराने गुरु हैं। अब
0: अब
1: नई जनरेशन,
0: ये
1: नई
0: पंचायत नगर पालिकाओं ने इनने बिल्कुल टीचर्स का बहुत बहुत ही वो एक्सप्लोइटेशन कर दिया है, पर बुरा।
1: एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है। दूसरा, वो अपनी जवाबदारी से भी मुक्त हो गए। वो उनका ये मानना है कि
0: बहुत
1: ये इतना पैसा मिल रहा है, ये काम किया जरा,
0: बहुत है, बहुत है।
1: ये
0: और फिर सरकारी नौकरी है इसलिए कोई बात है
1: हाँ
0: नहीं।
1: इनका कुछ है नहीं। अच्छा, पढ़ाने का काम सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे
0: वो लंबा
1: हैं
0: लंबा लंबी
1: ये
0: डिस्कशन है।

0: चलिए, अब थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन की तरफ आते हैं आपके। आपसे चर्चा में पता लगा आप अपने 95 वर्षीय पिता की देखभाल कर रहे हैं। ये बहुत ही अलग है। ये अनुभव आपको जीवन, धैर्य और परिवार के बारे में क्या सिखाता है, और क्या ऐसा इमोशनल कनेक्ट है आपका अपने पिताश्री से जिसको आप इस तरह से कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं हमें।
1: जी सर, हमारे तो हमारी जो मूल अवधारणा है ही कुटुंब की। हाँ,
0: जी,
1: कुटुंब में जो सबसे बुजुर्ग होते थे उनकी एक आवाज भी सारा कुटुंब सहम जाता था, पूरा परिवार। याद करें सर आप भी। और आज
0: बिल्कुल,
1: स्थितियां कहाँ आ गई हैं। आज आज अपने बच्चे या ग्रैंड ग्रैंड सन्स भी यही कर रहे हैं, अरे आप तो कुछ पता नहीं सर, आप कुछ नहीं
0: बिल्कुल
1: जानते। लेकिन
0: सही।
1: हमारे सांस्कृतिक मूल्य वही हैं, जीवन मूल्य वही हैं। अब पिताश्री आज 95 पूर्ण करके, अभी 96 का हम मनाएंगे, उनकी दिवाली के बाद आती है उनकी। हर साल हम उनकी जन्मदिन मनाते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। अब
0: बहुत
1: क्या है,
0: सुंदर
1: शारीरिक शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए, तो चलने
0: जी।
1: में भी उनको मैंने बिल्कुल मना किया हुआ कि आपको कहीं पे भी जाना हो तो मुझे बोला, मैं साथ चलूंगा। तो जितनी भी चिकित्सक की है जरूरत है होती है इस एज में, डॉक्टर को
0: नेचुरली
1: दिखाना है मैं जाऊंगा साथ में, दवाई लानी है मैं जाऊंगा साथ में। मैं जब उनके सुबह सुबह का मेरा समय होता है 11 बजे के आसपास, तब उनके पांव दबाने का और हाथ दबाने, तो
0: अच्छा।
1: जुई में वो शुरू करता हूँ ना सब, तो वो निद्रा में चले जाते हैं। वो सुख की उनकी जो अनुभूति है ना,
0: अरे
1: निश्चिंत
0: वाह,
1: होकर के, तो
0: हाँ,
1: वो मुझे जो ऊर्जा देता है ना, वो दृश्य वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ कर पा रहा हूँ। भगवान की इतनी कृपा हुई है मेरे पे कि हम कुछ कर पा। दूसरी बात, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब समाज में, वो द्विगुणित होके वापस आएगा।
0: वापस
1: हम
0: आएगा।
1: बिल्कुल, हम जैसा जो भी कर, हम अगर किसी को गालियां और ये दे रहे हैं तो वो उससे ज्यादा हमको पड़ने वाली है आगे। तो हम अगर ये संस्कार अपने बच्चों में दे पा रहे हैं कि हम ये भी करते हैं, तो उनमें भी वो संस्कार आएंगे। हालांकि मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है कि लोग ऐसा मुझसे भी करें, लेकिन अगर संस्कार है तो स्वभावतः ही वो होगा,
0: सही
1: ऐसा
0: बात
1: मैं
0: है, बिल्कुल
1: मानता हूं। तो ये है।
0: सही, बिल्कुल
1: तो
0: सही बात है।
1: पिताश्री का तो जो पितृ ऋण है वो तो हम चुका तो नहीं सकते, तो उसको थोड़ा थोड़ा किस्तों में इस प्रकार से हम पूर्ण हुआ चाहते हैं। तो और सुख जो मिलता है वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी है साहब।
0: ये बहुत ही सुंदर विचार है, और कुछ बड़ा पीड़ा का विषय है कि आज के समाज में ये प्रवृत्ति बहुत ही कम है। बच्चे महानगरों में रह रहे हैं, कुछ विदेश में रह रहे हैं, तो पिता को जो
1: बिल्कुल बिल्कुल छोड़
0: सेवा करने का
1: देते
0: जो
1: हैं,
0: सुख है वो तो
1: वो
0: बिल्कुल।
1: नहीं मिल पा रहा है। हाँ
0: मैं किसी जमाने में बापूनगर में था तो बहुत सारे ऐसे लोग आया करते थे बैंक में,
1: हाँ
0: जो इस तरह से
1: हाँ
0: क्या कहें इसके बाद।
1: तो उसी को
0: बहुत,
1: देख के तो जेल साहब ने टाइम बैंक बनाया
0: हाँ, टाइम बैंक बनाया है हमारे पीसी जैन सर ने, बिल्कुल सही
1: तो
0: बात।
1: वो टाइम बैंक क्या है, आपको समय दो बुजुर्गों को,
0: यही है, समय दो, जो लोग लोनली है उनको समय दो, यही बात है, बिल्कुल सही
1: उनको
0: बात,
1: समय ज्यादा चाहिए सर। वो
0: बिल्कुल
1: आज की तारीख में, हमारी माताश्री चली गई थी 2014 में, तो
0: जी।
1: उसके बाद वो जो लोनलीनेस होता है ना एक, तो
0: हाँ, वो
1: वो उनकी बात सुनेगा कौन
0: कौन
1: वो।
0: सुनेगा, बिल्कुल
1: और दूसरी, कोर्ट में कहा दिया है कि सुनते नहीं है, तो वो
0: हाँ,
1: स्थितियां ऐसी है कि हम कोई बात कहे भी तो 2-3 बार में धीरे से कान के पास ले जाकर वो
0: क्या
1: समझाना पड़ता है।
0: सुन, समझाना पड़ता।
1: तो उनका जो वो, मैं कंपेयर करता हूँ, मेरे ग्रैंड सन, मेरा जो पोता है उसकी हरकतें है और पिताश्री की हरकतें, वो मिलती
0: मिलती है, बिल्कुल,
1: जुलती
0: कहता है
1: है। तो
0: बचपन वापस आ जाता है, बिल्कुल
1: हाँ
0: सही
1: सर,
0: बात,
1: वही केयर उनको देते हैं वही केयर इनको चाहिए, हमको भी तो मिली है सर।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: ये है मेरी भावना।
0: बहुत अच्छा।

0: आप सामाजिक रूप से भी सक्रिय हैं, किन
1: जी
0: सामाजिक मुद्दों या गतिविधियों से जुड़े हुए हैं शर्मा जी आप?
1: सामाजिक में तो देखो सर, मैं एक ही बात से मेरे को ये समझ में आई कि सेवानिवृत्ति के बाद आप जब दैनिक कार्यों से मुक्त हो जाते हैं, अब जाना नहीं है कहीं, ड्यूटी
0: जी
1: पे नहीं जाना है, तो आपके
0: जी
1: पास समय होता है, तो एक रिक्तता आ जाती है, अरे अब क्या करें। तो
0: बिल्कुल सही बात है।
1: तब जुड़ा मैं संघ से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, और
0: आरएसएस से
1: उसमें
0: जुड़े? अच्छा,
1: जी उसमें नियमित है मेरा सुबह का 1.5 घंटा शाखा में जाना, और ये सब
0: अच्छा,
1: कर वहां की
0: ओके,
1: मूल भावना है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो वो देश को दें या समाज को जो कुछ हम दे पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक और है उसमें सेवा विभाग है। तो
0: अच्छा
1: सेवा विभाग में कुछ ऐसी बस्तियां होती है या क्लस्टर रूप में लोग रहते हैं, वो वंचित
0: अच्छा
1: हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित है, अभावग्रस्त है। ऐसे
0: अच्छा
1: लोगों की जो बस्तियां हैं, अभी जयपुर शहर में 223 के करीब ये ऐसी बस्तियां चिन्हित की हुई, वहां जाकर
0: अच्छा
1: के
0: अच्छा
1: जी,
0: जी
1: वहां पे बाल संस्कार केंद्र है, वहां 4 प्रकार के आयाम है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य चिकित्सा का है, और स्वावलंबन का है, एक शिक्षा का है, और स्वरोजगार का है। इनके
0: अच्छा
1: तहत इनके तहत हम उनको वो कार्य करवाते हैं बाल
0: अच्छा
1: संस्कार में। अब ऐसी ऐसी बस्तियां जहाँ वो सब पेरेंट्स तो निकल जाते हैं लेकिन बच्चे रहते हैं, वहां 2 घंटे के लिए एक कोई शिक्षिका लगा के उनमें संस्कार जगाते हैं कि किस तरह उठना चाहिए, बैठना चाहिए, कुछ ये है। तो एक तो वो कार्य है,
0: अच्छा
1: दूसरा अपना ये है ही सर, ये एसोसिएशन में भी अब पुराने साथी हैं सब मिल करके देंगे
0: हाँ,
1: आप
0: उसमें मिलते हैं मिलते हैं। हाँ, वो तो
1: उसमें
0: है
1: भी
0: ही।
1: सचिव बना दिया मेरे को, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन
0: जी,
1: में जयपुर यूनिट का, तो उसका भी कार्य
0: अरे
1: रहता ही है।
0: उसका
1: अब
0: भी कार्य।
1: आज ही शाम को 4 बजे बैठक रखी है उसकी
0: अच्छा
1: त्रैमासिक
0: अच्छा अच्छा अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया।
1: ये है समाज में।

0: तो चलिए, अब मैं एक अंत में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।
1: जी
0: सफलता और सुख की परिभाषा अब आपके लिए क्या है इस दौर में, और क्या
1: हाँ
0: ये आपके युवा दिनों से अलग है जब आपने पहले कुछ सोचा था और अब कुछ महसूस होता है? क्या कैसे परिभाषित करेंगे?
1: देखो सर, सफलता हम तब मानते हैं कि जैसे आज आज की तारीख में मेरी सारे जवाबदारियां जो जिम्मेदारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। सभी बच्चे मेरे अच्छे अच्छे अपने कार्य कर रहे हैं, अपने अच्छी जगह है। मेरा बेटा अभी IBM में है, अच्छी पोजीशन पे है। एक एक बेटिया SBI में सीनियर मैनेजर है और एक बेटी लेक्चरर है वहाँ जोधपुर में। तो वो सब
0: अच्छा
1: अपने
0: अच्छा
1: अपने क्षेत्र
0: अपने
1: में
0: अपने
1: अच्छा,
0: सेटल
1: हाँ अच्छा कर रहे,
0: सर।
1: तो वहां तक तो ठीक है। अब आता है बात सफलता और सुख। तो सफलता तो यह है कि आपने सबको अच्छा किया है। अब सुख की परिभाषा मैं ये समझता हूं कि एक स्वस्थ शरीर और सकारात्मक दृष्टिकोण, ये दोनों है तो हम सुख में है। हतोत्साहित तो नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे, सफलता या असफलता, हमारे अपने कर्मों पर ही तो आधारित है। हम उसे कितनी कुशलता से, कितने योग्यता से करेंगे, वही तो है। तो
0: बिल्कुल सही बात
1: और कृष्ण भगवान ने कहा भी, कर्म तो हर इंसान को करना ही है। कर्म तो आपको कर्मशील तो रहना ही है। तो कर्म जब करेंगे ही और उनका परिणाम भी मिलेगा ही, तो फिर अच्छे कार्य क्यों ना किए जाए। ये मेरा एक मूल सिद्धांत रहा है और मैं अपने जीवन से अभी बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हाँ, युवावस्था में क्या अलग थी विचार। युवावस्था में तो एक छोटी छोटी बातों पे भी हम कुंठाग्रस्त हो जाते थे, और
0: हाँ
1: ये
0: सही
1: क्यों
0: बात
1: नहीं हुआ है।
0: है।
1: ये वो कुंठाएं आपको विचलित भी करती है।

0: उनपे अपन को कंट्रोल, अब तो खैर अध्यात्म भी थोड़ा बहुत अध्ययन करने को मिलता है, करता भी
1: जी
0: हूँ, तो वहां जो दर्शन है हमारा जीवन का वो बिल्कुल अलग है। और ये क्योंकि वो अध्यात्म में तो संन्यास है और इधर कर्मयोग है, तो कर्मयोग जो अभी जो लोग कर्म में है उनको तो कर्म करते ही रहना और
1: करने
0: योग्यता
1: बिल्कुल सही,
0: के साथ कर।
1: बहुत बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: जी
1: तो शर्मा जी, बहुत ही खूबसूरत सच्चा संवाद रहा आज का, और डीएन शर्मा जी ने हमें सिखाया कि जीवन की सफलता केवल कैरियर या पद में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों, संवेदनाओं और रिश्तों को निभाने में है। इनकी यात्रा हमें एहसास कराती है कि उम्र के साथ अनुभव बढ़ते हैं और अनुभवों के साथ जीवन की गहराई। बैंकिंग की दुनिया से लेकर साहित्य के संसार तक और अब समाज के उत्थान के प्रयासों तक उनका हर कदम हमें प्रेरित करता है। हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं शर्मा जी का, और आज हमारे साथ अपनी सोच और संवेदनाओं को साझा करने आए हैं। श्रोताओं, याद रखिए, जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम कर्तव्य, करुणा और कर्म तीनों का संतुलन साध पाते हैं। इस प्रेरणा के साथ आज हम आज के कार्यक्रम के रंग अनुभवों की विरासत को यहीं विराम देते हैं। मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं डीएन शर्मा जी का श्रोताओं की तरफ से, रेडियो स्टेशन की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमें मौका मिला तो हम शर्मा जी को फिर कभी कष्ट देंगे। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में जिस गायक के बारे में हम बात करेंगे वो यूं तो साउथ इंडियन हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए भी भरपूर गाने गाए। वो हैं एसपी बालासुब्रमण्यम। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों उनके इस गीत से।

एसपी बालासुब्रमण्यम एक भारतीय प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, डबिंग आर्टिस्ट, फिल्म निर्माता और अभिनेता भी थे। इन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।

एसपी बालासुब्रमण्यम का नाम भारत के दिग्गज गायकों में से एक है। इनको प्यार से एसपी बालू बुलाया जाता था। एसपी बालू को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। तो पेशे खिदमत है उनका गाया हुआ ये गीत।

एसपी बालू ने अपने जीवन काल में 16 भाषाओं में 40,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। दोस्तों, तेलुगु सिनेमा में इन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 पुरस्कार जीते हैं। चलिए हो जाए इनकी आवाज में ये नगमा।

एसपी बालासुब्रमण्यम और आरडी बर्मन साहब बहुत नजदीकी दोस्त थे। मैं आपको एक फिल्म का गाना सुनाना चाहूंगा जिसमें आरडी बर्मन साहब ने म्यूजिक दिया और बालासुब्रमण्यम ने इस गाने को गाया। इस गाने को सुन के ही लगता है कि बालासुब्रमण्यम और आरडी बर्मन साहब ने ये गाना खुद अपने लिए बनाया है। दोनों अपने अपने फन के उस्ताद थे और उन्होंने इस गाने को भरपूर इंजॉय किया है। तो सुनिए इस गाने को और महसूस करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आरडी बर्मन और बाला ने इस गाने को इंजॉय किया।

एसपी बालासुब्रमण्यम का जन्म 4 जून 1946 को चित्तूर जिले आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम एसपी साममूर्ति था, जो हरिकथा में एक आर्टिस्ट के रूप में अभिनय किया करते थे। लीजिए इनका गाया हुआ एक गाना सुनते हैं।

एसपी बालासुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्मों में ज्यादातर सलमान खान के लिए गाने गाए। तो लीजिए एक गीत, उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया और एसपी बालूजी का गाया हुआ ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

आज की कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों, आज की गायिका है अलका याग्निक। जी हाँ, अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनकी माता का नाम शोभा याग्निक था। अलका ने अपनी पढ़ाई मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स कोलकाता से की। घर में संगीत का माहौल था तो बस अलका की रुचि भी संगीत की ओर हो चली। चलिए सुनते हैं उनका गाया हुआ ये गीत।

अलका ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी, जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक भजन गाया। उसके बाद 10 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ बॉम्बे आई। बॉम्बे में निर्माता निर्देशक राज कपूर से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने की सलाह दी। तो हो जाए उनकी आवाज का ये प्यारा सा गीत।

1980 में अलका ने अपना पहला गाना गाया, पायल की झनकार। बतौर सिंगर अलका याग्निक के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जब उन्होंने गायन को अपना करियर चुना तो उनके सामने भारत के सुर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले थी। लेकिन अलका ने भी इन सब के बीच अपने आप को प्रसिद्ध करने की ठान ली। तो हो जाए इनकी आवाज का एक और नगमा।

अलका ने अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म लावारिस में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाया, जो बहुत जबरदस्त हिट हुआ। लगभग 8 साल तक मुंबई में संघर्ष करने के बाद 1988 में फिल्म तेजाब में अपने गीत 1, 2, 3 की सफलता के बाद वो पार्श्व गायिका के रूप में सफल हो गई। तो आइए दोस्तों, हो जाए यही गीत।

0: आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार?
1: हाँ।

सन 1989 में अलका ने फिल्म कयामत से कयामत तक में उदित नारायण के साथ ऐ मेरे हमसफर, अकेले हैं तो क्या गम है, गजब का है ये दिन, सोचो जरा जैसे सुपर हिट युगल गाने गाए। इन फिल्मों की सफलता के बाद तो अलका को कई अच्छी फिल्मों के ऑफर्स मिले। सन 1994 में फिल्म हमारा ही प्यार के सॉन्ग्स के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो पेशे खिदमत है दोस्तों उन्हीं की प्यारी सी आवाज में ये प्यारा सा गीत।

1999 में प्रदर्शित फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई भाषाओं की 700 से ज्यादा फिल्मों में करीब 20,000 गाने गाए। तो लीजिए उन्हीं की आवाज का ये गाना।

2012 में हिंदी सिनेमा के 100 सालों के दौरान फिल्म ताल के गीत ताल से ताल मिला को देसी मार्टिनी, हिंदुस्तान टाइम्स, फीवर 104 के द्वारा किए गए एक पोल में उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले। तो ये लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी आवाज में एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारे प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं वो हैं सीमा सिकंदर जी। बाकी की बातचीत हम सीमा जी से ही करेंगे। सीमा जी आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के मुखातिब होइए और अपना परिचय दीजिए।
1: श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। मैं सीमा सिकंदर हूँ, गाजियाबाद से हूँ और गजल पे काम करती हूँ, गजलें कहती हूँ।
0: तो सीमा जी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अपना पहला कलाम या अपनी पहली गजल आप सबको सुनाएं।
1: जी मैं, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है हमारा स्वतंत्रता दिवस, तो उसी पे गजल के माध्यम से अपने अशआर पेश करती हूँ वतन के लिए। तो जी जी शुक्रिया। देखिएगा, होंठों की

धड़कने और जान हिंद है, हमारा दिल हमारी धड़कने और जान हिंद है, सुरों की तान सरगम होठों की मुस्कान हिंद है, जमी से आसमां तक जमी से आसमां तक ये शिखर

जो सिपाही शान हिंद है, खड़ा सरहद पे एक एक, जो सिपाही शान हिंद है, हमारा दिल हमारी धड़कने और जान हिंद है। इबादत प्रार्थना पूजा हवन

0: हमेशा ध्यान हिंदू है, हमारे जहन में बसता हमेशा ध्यान हिंदू है। हमारा दिल हमारी धड़कने और जान हिंद है। सरों की तान सरगम, होठों की मुस्कान हिंद है। आखिरी कलाम करती हूँ।
1: इशारा
0: करूँ मैं सौ दफा कुर्बान इसकी आन पे खुद को।

0: जी
1: बहुत खूब, बहुत खूब
0: जी
1: साहब, बहुत खूब।
0: जी बहुत शुक्रिया
1: रोंगटे खड़े हो गए साहब सुन
0: आपका
1: के। सीमा जी बहुत शुक्रिया, आपने
0: जी
1: बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही जगह पर सही कलाम, सही गजल आपने हमें सुनाई है।
0: जी बहुत बहुत बहुत धन्यवाद
1: अब आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी पसंद के

0: एक गजल गायक जो भी हों उनकी किसी एक गजल को हमें सुनवाएं।
1: जी, एक तो गजल बहुत पसंद है मुझे, और उन्हीं में से मैं एक मेहदी हसन साहब ने गाई है, और वो है, क्या टूटा है अंदर अंदर, चेहरा क्यों मुरझाया है।
0: अरे
1: आप भी
0: वाह,
1: सुनिए। जी, और मैं अपने श्रोताओं को ये अपनी पसंद की फरमाइश करती हूँ कि आप, अगर आपके पास हो तो आप।
0: आप बेफिक्र रहें, आपकी पसंद की यही गजल हम श्रोताओं को सुनवाते हैं। लीजिए दोस्तों, सीमा जी की गुजारिश पर, सीमा जी के हुक्म पर ये गजल हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस गजल के लिए और आपकी फरमाइश के लिए। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े हमारे प्रोग्राम में, कि फर्ज कीजिए आपको एक तीन ख्वाहिशें पूरी करने वाला जिन्न कहीं से मिल जाए, तो आप उससे क्या तीन ख्वाहिशें मांगेंगी?
1: मैं कुछ नहीं मांगूंगी, कि मैं बड़ी बात नहीं कह रही हूँ कि मुझे उसने, ऊपर वाले ने या जिन जो भी है, सारा कुछ दिया है। क्योंकि जरा सी कोई भी इच्छा करती हूँ तो मेरी कुछ किस्मत वाली या कुछ भी कह सकते हैं, तो मुझे लगता है मेरी कहीं ना कभी न कभी पूरी हो जाती है। और जैसे ये प्रोग्राम था, मैंने एक बार ऐसी कभी सोचा भी नहीं था, रियली
0: जी
1: मैं उससे थैंक्स कहूंगी कि मुझे जो भी कुछ दिया है, और बहुत ज्यादा दिया है, जितना मैंने सोचा नहीं था। बस दुनिया में इंसानियत इंसानियत जिंदा रहे
0: जी
1: और रहनुमाई जिंदा रहे, बस ये बहुत बड़ी चीज है। अगर ये चीज हमारे पास रहेगी तो सारी चीजें अच्छी चलेंगी। तो दुनिया का आजकल हाल थोड़ा सा सोच नहीं हो रहा हम सभी के लिए,
0: सही फरमाया आपने, सही फरमाया,
1: तो जी जी
0: बहुत खूब।
1: तो जी
0: सीमा जी, तो फिर इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: अच्छा, मैं एक दूसरे मिजाज की गजल सुनाती हूँ। मैंने थोड़ी सी वैरायटी देना चाहती हूँ,
0: जी जी जी
1: और जी, मैं श्रोताओं को अपनी फिर से नमस्कार करती हूँ और बात करती हूँ गजल के हवाले से, ठीक
0: जी
1: है।

मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, नरमी से हर

0: बेहतरीन बेहतरीन, बहुत खूब
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: खूब। मैं
1: बहुत
0: बीच में बोलना ही भूल
1: धन्यवाद
0: गया था, मतलब इतनी मतलब इतना सुनने में मुश्किल हो गया।
1: जी। सर आपका मैं इन अल्फाजों में शुक्रिया अदा करूं कि श्रोताओं का भी कि मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं रियली, क्योंकि हम लेखक होते हैं, तरन्नुम तो कभी कभी आ जाता, तो ये बड़ी बहर की गजल है, तो इसमें थोड़ा सा गला मेरा वैसा हुआ, लेकिन ये कि मैंने कोशिश की बात कहने की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी
0: तो सीमा जी, अगली गजल आप कौन सी सुनवा रही हैं, आपकी प्रिय गजल गायिका?
1: जी मेरे प्रिय गजल गायक थे जसजीत सिंह साहब, और गुलजार साहब ने इस गजल को लिखा है, तो वो है, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे ऐसा उतारता है कोई। तो
0: जी
1: मैं चाहूंगी श्रोताओं के लिए गजल पेश की जाए।
0: तो आइए दोस्तों, सीमा जी के हुक्म पर ये गजल सुनते हैं।

0: सीमा जी, अगला छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं? जब कभी आपको वक्त मिलता है तो आप उसमें क्या करना पसंद करते हैं?
1: मैं क्या बताऊं कि मुझे पढ़ना ही सबसे अच्छा लगता, मेरा शौक है ये, मतलब मेरा सबसे बड़ा शौक है, और मैं सिर्फ मुझे पढ़ना ही अच्छा लगता है, बल्कि मुझे देखना भी नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ कभी, और आपको हैरानी होगी, नहीं कहना चाहिए, मतलब एक अजीब किस्म की हूँ, मैंने अखबार कई सालों से नहीं पढ़ा,
0: जी जी
1: डेली का बुक्स पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, अलग अलग तरह की, स्वामी विवेकानंद को भी मैं बहुत पढ़ती हूँ, और अध्यात्म में मेरी अभिरुचि है, योगा में भी मेरी अभिरुचि है, मैंने डिप्लोमा किया हो, और बाकी ये गजल पे इसी इन्हीं चीजों को पढ़ती हूँ, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कोई चीज ख्याल आएगा नहीं, ख्याल आएगा लेकिन उसे अल्फाजों में कैसे पेश करेंगे आप अपने तरीके से, तो ये जरूरी है कि पढ़ना जरूरी है मेरे लिए, सभी के लिए होता है मुझे लगता है, लेकिन मैं अपने लिए एक जैसे खाना खाने की खुराक होती है डेली की, मेरे लिए ये खुराक, बल्कि मैं सोती हूँ तो मेरे सिराने बुक्स होती हैं, ये मेरी कमजोरी है।
0: नहीं साहब, मैं इसको आपकी कमजोरी नहीं कहूंगा, आप चिंता ना करें, आप अकेले नहीं हैं संसार में। पिछले 17-18 सालों से मेरे घर में टेलीविजन नहीं है और मैंने भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो आप चिंता मत करिए, आप अकेले नहीं हैं। जहां तक किताबों की बात है, मैंने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर जो हमारे घर में सो कॉल्ड एक खामा खामे कहने वाला ड्राइंग रूम जैसी जगह होती है, जो दरअसल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कभी कोई मेहमान आता है उसके लिए ड्राइंग रूम बनाया जाता है, तो मेरे को समझ में नहीं आता, मेहमान तो भगवान होता है ना, तो उसको तो हमें अपने दिल में बैठाना चाहिए, ड्राइंग रूम में क्यों बैठाते
1: हैं? जी बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत खूबसूरत।
0: तो ड्राइंग रूम में मैं किताबें सजाना चाहता हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ, काफी सारी हो भी गई है, ये अलग बात है। तो मैं सीमा जी आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना अगला कलाम, अपनी अगली गजल हमें सुनाए।
1: जी अगली बार मैं आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए तहस में बात कहती हूँ, वो देख

0: देखिएगा, थोड़े अरवान मिजाज की है वाली, देखिएगा जी। दूरियां तुमसे बना लो, दूरियां तुमसे बना लो, फासला हो जाऊं तो क्या करोगे ये बताओ, बेवफा हो जाऊं तो। दूरियां तुमसे बना लो, फासला हो जाऊं तो क्या करोगे ये बताओ, बेवफा हो जाऊं तो। रास्ता रास्ता उस दिन बताओ कौन सा अपनाओगे, रास्ता उस दिन बताओ कौन सा अपनाओगे, दूर जाने के अलावा लापता हो जाऊं तो।
1: ओह माय गॉड, बहुत खूब, बहुत सुंदर
0: जी। दूरियां तुमसे बना लो, फासला हो जाऊं तो क्या करूं ये बताओ, बेवफा हो जाऊं तो। मैं अभी हूँ रास्ते में, मैं अभी हूँ रास्ते में और लंबा है सफर, मैं अभी हूँ रास्ते में और लंबा है सफर, एक अधूरी दास्तां का वाकया हो जाऊं तो क्या करोगे ये बताओ, बेवफा हो जाऊं तो।
1: बेहतरीन बेहतरीन
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नफरतों के साथ कैसे पेश आओगे कहो, नफरतों के साथ कैसे पेश आओगे कहो, आंखों से दिल में उतर कर मरहला हो जाऊं तो क्या करोगे ये बताओ, बेवफा हो जाऊं तो।
1: ओह माय गॉड, बहुत सुंदर।
0: दूरियां जी जी, दूरियां तुमसे बना लूं, फासला हो जाऊं तो क्या करोगे ये बताओ, बेवफा हो जाऊं तो। और ये कलाम पसंद किया आपने, मुझे लगता है श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा मेरे,
1: बेहद
0: जी जी,
1: बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही सेंसिटिव भी, बहुत ही संवेदनशील, शानदार। सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगली गजल आप कौन सी सुनवाना चाहेंगी हमारी श्रोताओं को?
0: जी, गजल गायिका है हमारी फरीदा खानम और इसके लेखक है फराह सादात
1: जी।
0: हमारे दर्शकों ने भी बहुत बार सुनी होगी ये गजल, आपने भी सुनी होगी। तो उसका कलाम ये है कि आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद न करो, यूं ही सहेली बैठे रहो।
1: बहुत बहुत खूब जी। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गजल फरीदा खानम साहब की गाई हुई और सीमा जी की फरमाइश पर।
2: आज जाने

0: सीमा जी, अगला एक बहुत ही मासूम सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आपको आपके बचपन में जाने का मौका मिले तो क्या एक ऐसी चीज होगी जिसको आप बदल देना चाहेंगे अपने बचपन में जाके?
1: मुझे लगता है कि मैं अपने घर ही जाना चाहूंगी, अपने घर से अपना बचपन लिया, और मैं अपनी माँ, मतलब मैं अपने माहौल को, पूरे माहौल को, घर के माहौल को, मुझे पता नहीं क्यों हमेशा फील होता है और ऐसा लगता है अगर मुझे मौका मिले तो शायद मैं फिर से वहां चली जाना चाहूंगी।
0: तो सीमा जी, फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कि अपनी अगली गजल हमें सुनाए।
1: मैं पुनः अपने श्रोताओं से जुड़ती हूँ और एक कलाम पेश करती हूँ अपने गजल के चंद अशआर। देखिएगा, मिजाज क्या और शऊर उनका, मुझे खबर है, मुझे पता है, कहानियों में मुझे वो अपनी उतार लाए असल वफा है।
0: जी।
1: जो बात दिल में बही जुबां पे उसी को मैंने जिया असल में, कुछ हो क्या है बताए मेरा अगर जमाना खफा हुआ है। मिजाज बदला, ख्याल बदला, समझ का सारा हिसाब बदला, न मेरे बस में मेरी सुमारी चली ये कैसी गजब हवा है। मिजाज क्या और शऊर उनका, मुझे खबर है, मुझे पता है, मेरी बसर की तमाम मसले, मेरी बसर के तमाम मसले सुने कोई तो कभी कहीं से, सवाल मैंने भरी सभा में मगर उठाया कई दफा है।
0: जी।
1: मिसाल अपनी बनाने वाले कहाँ गए कुछ पता नहीं पर, मिसाल अपनी बनाने वाले कहाँ गए कुछ पता नहीं पर, जहाँ ने उल्फत मेरी नजर में किसी विषय से बड़ी बना है।
0: बहुत खूब
1: जी। कयास अपनी लगाने वालों अगर कहीं मैं गलत नहीं तो, कयास अपनी लगाने वालों अगर कहीं मैं गलत नहीं तो, जरूर कोई बजा भी होगी मलाल कर जो खबर बना है। मिजाज क्या है शऊर शऊर उनका, मुझे खबर है, मुझे पता है, कहानियों में मुझे वो अपनी उतार लाए असल वफा है।
0: बहुत खूब
1: जी,
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत खूब,
1: शुक्रिया जी, जी शुक्रिया, बहुत बहुत।
0: सीमा जी, इसी बात पे फिर आप हुकुम करें, आपके कौन से गायक की कौन सी गजल हम सुनवाएं?
1: जी, मेरी पसंदीदा राधिका चोपड़ा जी हैं, गायिका, बहुत खूबसूरत उनकी आवाज है, ये बड़ी ही खूबसूरत लहजे में उन्होंने गाया है, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, है लुधियान जी साहब इनके लेखक है, और मेहरबानी होगी, मुझे बहुत ही प्यारी ये गजल लगती है, मुझे लगता है श्रोताओं को भी मेरे लिए पसंद आएगी।
0: जी जरूर जी, जरूर जी। दोस्तों, इसी गजल को सुनते हैं राधिका चोपड़ा जी की गाई हुई।

0: सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके
1: जी
0: कलामों के लिए। तो
1: जी
0: अगला सवाल मैं आपसे पूछ
1: जी
0: लूं?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था जी, लेकिन अच्छा लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सहज जी जी
0: किसी भी दिन, आजकल कोई भी दिन होता है, तो उस दिन आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, अपने आप को उत्साहित रखने के लिए, अपने आप को जोश में भरे रखने के लिए क्या करते हैं आप?
1: हाँ जी सर, मैं अच्छा सोचने के लिए मेरे पास हमेशा मैं सुबह को, हालांकि बहुत गोपनीय बात है कि मैं सुबह को बहुत जल्दी उठती हूँ
0: जी
1: और कुछ योगा के आसन करती हूँ, बाकी ध्यान करती हूँ, आरती करती हूँ, और ये मेरा सबसे बड़ी पावर है, मेरी बहुत बड़ी ताकत है, सुबह मेरा ये काम होता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें, ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी है, ये मुझे सपोर्ट करती है और मेरी यही सकारात्मक सोच ये मुझे देती है। कोई भी चीजें बहुत सी होती, सभी के साथ होती, मेरे भी साथ होती, लेकिन मैं उन चीजों से ऊपर उबर जाती हूँ, कैसे नहीं उबर जाते हैं। तो जब इस जगह बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत बड़ी ताकत मिली
0: सीमा
1: कहीं
0: जी, आपसे गुजारिश है कि अपना अगला कलाम हमें सुनाएं।
1: से जी। जी ये थोड़ा सा हटके है और इसे तरन्नुम में मैं देती हूँ,
0: जी
1: और जी तो मैं जारी करती हूँ बात
0: इंशा
1: कहते हैं।

सुनो ओ कभी, तोड़ा नहीं मैंने मिला उसका मगर खत आज तक।

0: जी
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत शानदार,
0: जी
1: बहुत शानदार। तो सीमा जी, अगली कौन सी गजल सुनवाएं हम अब?
0: जी मेरी पसंदीदा लाइन में जो भी आ रहे हैं, तो ये गजल का है कलाना जी साहब, और उनके ये कलाम कहा है उन्होंने शहर यार साहब ने, और कहते ना जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है हमें, बहुत फेमस गजल है। जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सीमा जी आपका बहुत बहुत आभार है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। बातचीत करने में जो मजा आया है वो हमारे सुनने वालों ने भी सुना होगा, कितनी खूबसूरत बातचीत हम लोगों के बीच हुई। आपके कलाम हमने सुने, आपकी गजलें हमने सुनी। मुझे उम्मीद है कि आपकी गजलें, आपके कलाम हम सुनते ही रहेंगे।

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मध्यम गति से ये बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग क्या कहता है इस पर आज नजर डालेंगे। साथ साथ में साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम काफी विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं, जैसे कि कपास की खेती। चूंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो यहाँ पर कपास की खेती का विशेष ध्यान दिया जाता है, किसान विशेष तौर पर इस खेती को करते हैं। कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे इसको करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है तो हमारे किसान साथी इसको भी, मधुमक्खी पालन भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में सफल किसान की कहानी पर भी हम एक नजर डालेंगे। लेकिन इन बातों से पहले हम साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का मौसम विभाग इस बार का क्या कहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा, चक्र से होकर गरज रही है और प्रदेश के चंबल संभाग के जिले तथा ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, आगरा जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में आ चुका है मानसून। आज अगर बात करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर रीवा, इंदौर एवं चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े अगर देखा जाए तो छपारा, गोहरगंज, नागदा, पचौर और परसवाड़ा, अनूपपुर, बहोरीबंद, देवेंद्रनगर, गुलाबगंज, रायसेन, खाच रोड और नर्मदापुरम में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में काफी गिरे और शेष संभागों में जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्वालियर संभागों के जिलों के सामान से विशेष रूप से कम है और सागर संभागों के जिलों में सामान्यता काफी कम, इंदौर और उज्जैन संभागों में सामान्य, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में सामान्य से कम और शेष संभागों में जिलों में सामान्य वर्षा हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं कहां पर किस तरीके की बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग क्या कहता है, वर्षा या गरज चमक के साथ बौछार किन किन स्थानों पर होनी है। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में संभावित है। आगामी 24 घंटों में भारी और मध्यम वर्षा कहां कहां होने वाली है। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बताई जा रही है, जहां पर डिंडोरी आएगा, बैतूल, बालाघाट, राजगढ़, रायसेन, धार, उज्जैन, अनूपपुर, मंडला एवं सिवनी जिलों में। और कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने के अल्पकालीन

0: तेज हवा की संभावना उसमें रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिले इसमें आते हैं। तो ये थी हमारे जानकारी जो अभी आप सुन रहे थे मौसम की। अगर झाबुआ जिले की बात करें तो अधिकतम तापमान आज का जो रहा है वो 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वर्षा अभी तक नहीं हुई है, बहुत कम हुई है। 1 जून से अभी तक जो वर्षा कुल आंकी गई है वो 15.9 मिलीमीटर आंकी गई है। तो ये मौसम आधारित जानकारी आपको हम दे रहे थे क्योंकि इस आधार से हमारे किसान साथी चुनाव कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें फसलों का चयन करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम में जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी कपास की खेती कर सकते हैं, साथ साथ में जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान साथी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो आइए इस रेडियो रिपोर्ट को हम सुनते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटे भील 90.8 FM, आप लो रेडियो अपनी बात है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आप लो रेडियो अपनी बातें।
2: किसानी में हम आपको बताएंगे कपास की खेती के बारे में। जी हाँ, कपास की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक दृष्टि से इसका काफी महत्व है और इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। लेकिन कई तरह की बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कपास की अच्छी पैदावार हमारे किसानों को प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
3: कपास नगदी फसल है जो हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है। भारत में कपास की सबसे ज्यादा खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में की जाती है। हमारे देश में देसी और बीटी दोनों ही कपास की खेती की जाती है। हालांकि बेहतर मुनाफे के लिए किसान आजकल बीटी कपास ज्यादा लगा रहे हैं। बीटी कपास में भी कई प्रजातियां लोकप्रिय हैं, जो स्थान विशेष के हिसाब से रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। इसकी खेती के बारे में विस्तार से बात करें तो इसकी बुवाई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने पर मई माह में की जाती है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश शुरू होने पर ही कपास की बुवाई करें। बुवाई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बुवाई के लिए उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज जबकि संकर व बीटी जातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। बुवाई करते समय कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं कपास की सघन खेती में कतार से कतार 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। फसल के सही विकास और बेहतर उत्पादन के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए। उन्नत किस्मों में 80 से 120 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश, करीब 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जबकि संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नत्रजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसके अलावा सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन के अंदर डोरा चलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी का छिड़काव भी किया जा सकता है। फसल में सिंचाई की बात करें तो शाखाएं निकलने की अवस्था व 45 से 50 दिन पर, फूल व फल बनने के दौरान 75 से 85 दिन पर, इसके बाद 95 से 105 दिन की फसल होने पर और 115 से 125 दिन की फसल होने पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान टपक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 70% पानी की बचत की जा सकती है, साथ ही खरपतवारों और कीटों पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है। कपास की फसल में चुनाई का काम बहुत विशेष होता है। देसी व उन्नत जातियों की चुनाई खासकर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, संकर जातियों की अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी तक, बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कपास की चुनाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि चुनाई ओस सूखने के बाद ही करें, गीले घेटों की चुनाई ना करें। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां, डंठल ना आए। चुनाई के बाद कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती है। लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर कपास का बेहतर उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है।
2: है हमारा पशुधन पर। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, सरकार भी मधुमक्खी पालन को काफी प्रोत्साहित कर रही है और आज के समय में युवाओं के बीच में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। खास बात यह है कि मधुमक्खी पालन से न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होती है बल्कि साथ ही साथ उनकी फसलों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो कैसे करें मधुमक्खी पालन और कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए डालते हैं नजर।
3: हमारे देश में मधुमक्खी पालन के कई फायदे हैं। इससे जहां परागण में सहायता मिलती है वहीं अतिरिक्त आय भी होती है। हाल के कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन में खासी दिलचस्पी बढ़ी है जिससे भूमिहीन किसानों के सामने रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। मुनाफे की ओर ले जाने वाले इस व्यवसाय में मधुमक्खी पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाभ के साथ साथ मधुमक्खी का भी ख्याल रखें जिससे उनकी घटती संख्या में कमी लाई जा सके। मौजूदा समय में तापमान में हो रही बढ़ोतरी के साथ कुछ खास प्रबंधन करने होते हैं जिससे मधुमक्खियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इस समय कौन से हैं वो खास बिंदु, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय।
4: गर्मियों का मौसम है, मधुमक्खी पालक के लिए जरूरी है कि कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखे ताकि मधुमक्खी पालक अच्छे से मधुमक्खियों का देखभाल कर सके तो अच्छे से उनको लाभ मिल सके। सबसे जरूरी है क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय जो तापमान है वो 40 के ऊपर है, तो इसलिए जरूरी है कि मधुमक्खी पालक जो मधुमक्खियां हैं उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां फूल यानी के फ्लोरा हो। इसके लिए इस समय जो है सीसम, जहां सीसम हो, नीम हो, जामुन हो, यूकेलिप्टिस हो या इसके अलावा मल्टी फ्लोरा हो तो वहां मधुमक्खी को अपने उस स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी का समय है तो पीने के पानी, स्वच्छ पीने का पानी मधुमक्खी के लिए जरूर होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे स्थान पर मधुमक्खी को रखें जहां छाया हो, क्योंकि इस समय लू और गर्मी ज्यादा है तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां ऊपर पेड़ पौधे उसके आसपास हो। और इसके लिए जरूरी है कि कहीं कहीं अब इस समय फ्लोरा की कमी है तो उनको भोजन के रूप में आर्टिफिशियल भोजन दें। इसके लिए एक भाग पानी और एक भाग चीनी दोनों का घोल बनाकर एक चाशनी तैयार कर लें। उस चाशनी को ठंडा होने के उपरांत फीडर की सहायता से किसान भाई यानी कि मधुमक्खी पालक आदि मधुमक्खियों में इस भोजन को दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम थोड़ा और भी बढ़ सकता है, टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, तो जो टाट के बोरे होते हैं उन टाट के बोरे को जो बॉक्स है मधुमक्खी के उसके ऊपर डाल देना चाहिए। साथ ही साथ दो या तीन बार उनको गीला करना चाहिए दिन में ताकि जो बॉक्स का तापमान है वो सामान्य बढ़े रहे और मधुमक्खी को ज्यादा दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखें कि इस समय मधुमक्खी पालक को मधुमक्खी का विभाजन नहीं करना चाहिए। अगर कमजोर मधुमक्खी है, बॉक्स कमजोर है, परिवार बॉक्स कम है तो ऐसे समय पर उनको विभाजन नहीं करना चाहिए।
3: गर्मी के मौसम में पर्याप्त फूल नहीं होते जिससे मधुमक्खियों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मधुमक्खी पालकों को चाहिए कि उनके कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करें। इसके लिए क्या करें, जानते हैं विशेषज्ञ से।
4: तो स्थान का चुनाव करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना है मधुमक्खी पालक को।
3: ये तो बात हो गई मधुमक्खियों के भोजन की, अब बात कर लेते हैं उनकी सुरक्षा की। इस समय अन्य कीटों से उन्हें कैसे सुरक्षा दी जाए, आइए जानते हैं।
4: मधुमक्खी पालक ये देख ले कि ऐसे स्थान का चुनाव इस समय करे कि जहां फूल यानी कि फ्लोरा हो, वैसे स्थान पर मधुमक्खियों का स्थानांतरण कर दे। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि पहले से वहां स्थान आपका होना चाहिए कि पानी वहां है, अच्छा पीने के लिए स्वच्छ पानी है, आसपास जो है कोई हाईवे रूट तो नहीं है, साथ ही साथ कोई किसी तरह की पेस्टिसाइड, क्योंकि आजकल जो फसलें हैं अधिकतर किसान भाई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ये भी देख लें कि अधिकतर वहां ज्यादातर किसान कीटनाशियों का अधिक प्रयोग ना करते हो, और करते भी हो तो ये भी शोध कर ले कि किस कीटनाशी या फंजीसाइड का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब मक्खी होती है तो वो फूल के पास जाएगी, उससे फूल से रस चूसेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो केमिकल होता है उसका इफेक्ट मधुमक्खी के में आएगा और धीरे धीरे उससे उसकी जो है मोर्टिलिटी होने की भी संभावना बनी रहती है।
3: इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान और मधुमक्खी पालक उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उनकी संख्या में इजाफा भी। एचएस और बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें।

किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की

0: योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशुपालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों से बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दे। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव।

0: पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं, तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो केबीके रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का, आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, क्योंकि कहीं कहीं छोटी छोटी बरसात हो गई है, यानी छुटपुट बरसात हो गई है और हमारे किसान साथी तैयारी करने में जुट गए हैं कि जैसे ही अब अगली बार बरसात हो वैसे ही अपने खेतों में अपने बीज को लगा दें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या होती है। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है, कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन है, उसको किस तरीके से हम समतलीकरण कर सकते हैं इससे पहले, बोनी से पहले, और साथ साथ में मेड़बंदान भी कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जो साइंटिस्ट बैठते हैं, यानी वैज्ञानिक बैठते हैं, उनसे हम सलाह ले सकते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से अमरूद के बागवानी के तरीके क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे। धान की बुवाई से पहले किस तरीके से बीज का उपचार करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। खासतौर पर हम पशुओं पर भी चर्चा करेंगे कि इस माह हमें पशु का किस तरीके से देखरेख हमें करना चाहिए, इस विषय पर साथ में हम बातचीत करेंगे। वो बातचीत होगी कि छत पर बागवानी जो हम लगाते हैं वो किस तरीके से लगाई जाती है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम में हम देर नहीं करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से अमरूद की बागवानी किस तरीके से तैयार की जाती है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मौसम आधारित जानकारी। आने वाले 5 दिनों में आसमान में छिटपुट से घने बादल रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस व 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा पश्चिम दिशा से 17.4 से 28.9 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना बताई जा रही है। आगामी 5 दिनों में वर्षा 11.0 मिलीमीटर होने का अनुमान बताया जा रहा है। अगर कृषि परामर्श की बात करें तो जिले में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 5 दिनों में आसमान में मध्यम घने से मध्यम से छुटपुट बादल छाए रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खरीफ फसलों की खेती हेतु खेत तैयार कर लें। फसलों के बीज की बुवाई का समय और उर्वरक व बीज का मिलाकर बुवाई कभी ना करें और फसलों की बुवाई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें। इस हेतु बीज उर्वरक कल्चर, फफूंदनाशक दवाओं की व्यवस्था भी साथ में कर लें। खरीफ फसलों की बुवाई 3 से 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुवाई करें। स्वयं से तैयार बीज की सफाई कर लें व अंकुरण की प्रतिशत अवश्य जांच लें। अंकुरण का प्रतिशत यदि 70% आता है तो ठीक है, आपका बीज अच्छा है, बोने लायक है। यदि 70% से कम आता है तो नए बीज की व्यवस्था भी साथ में कर लें। जो मक्का की फसल है उसके लिए जो परामर्श दिया गया है, बताया गया है, वो मक्का की खेती के लिए उपयुक्त किस्म जो है वो JVM 421 है, HPQM 1 है, JM 216 या फिर उत्तम अवधि की संकर किस्म की व्यवस्था कर लें बीजों की। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की खेती हेतु उपयुक्त किस्म जो है JS 2069, JS 2098, RS 24, JS 2029, RVS 2001-4 आदि की व्यवस्था कर लें। उड़द के लिए उड़द की उत्तम किस्म है उत्तरा, JU 86, PU 31, प्रताप उड़द 1 की व्यवस्था अवश्य कर लें। कपास की उन्नत किस्म है DCH 32, BT 2, कपास की किस्मों की व्यवस्था कर लें। साथ साथ में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं उनमें खासतौर पर अगर नर्सरी के पौधों में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उनके रोकथाम के लिए प्रोफेनोवस दबा जो रहती है 3.0 मिलीमीटर प्रति लीटर घोल बनाकर छिड़काव कर दें। अदरक और हल्दी की खेती हेतु प्रकंड की बुवाई करें, साथ में बुवाई के पूर्व प्रकंड को डाइएन M45 और कार्बोडाइजिम 2.0 ग्राम प्रति लीटर में घोल बनाकर 20 से 30 मिनट डुबो कर रखें। बरसात की सब्जियों की रोपणी में जल निकास की उचित व्यवस्था भी कर लें। तो ये थी हमारे मौसम आधारित जानकारी जो हम आपको उपलब्ध करा रहे थे। साथियों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं अमरूद की बागवानी करने से पहले हम किस तरीके से सावधानी, किस तरीके से हमें अमरूद की बागवानी लगानी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस विराम के बाद।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान भाइयों बहनों, एक ऐसा फल जो हर उम्र के व्यक्ति को पसंद आता है। जी हाँ, साथ ही अगर हमारे किसान उसका प्रसंस्करण करके उसके उत्पाद की बिकवाली करें तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। कौन सा है ऐसा फल, आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
2: अमरूद की बागवानी पूरे भारत में की जाती है। विटामिन सी और पेक्टिन के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर इस फल को आसानी से घर के आंगन से लेकर खेतों की बाड़ और बागों में उगाया जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अमरूद की खेती अधिक तापमान, गर्म हवा, बारिश, लवणीय या कमजोर मृदा, कम जल या जल भराव की दशा से अधिक प्रभावित नहीं होती है। ये सख्त किस्म की फसल है और इसकी पैदावार के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और कम जल निकास वाली मिट्टी भी शामिल है। इसकी पैदावार 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी में भी की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए इसे गहरे तल, अच्छे निकास वाली रेतीली चिकनी मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी में लगाना चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए इसकी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, चित्तीदार, एप्पल कलर, ललित, अर्का मृदुला, श्वेता, पंजाब किरण। ऐसे करें खेत तैयार। पौधे की बढ़वार अच्छी हो और जड़े आसानी से अपनी पकड़ बना ले, इसके लिए खेत की 2 बार तिरछी जुताई करें और फिर समतल करें। खेत को इस तरह तैयार करें कि उसमें पानी ना खड़ा रहे। अब बात कर लेते हैं पौधे रुपाई के बारे में। तो अमरूद का बाग लगाने के लिए सबसे पहले इसके पौधे नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इन तैयार पौधों को खेत या बाग में रोपा जाता है। रुपाई का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का होता है, लेकिन यदि सिंचाई की बेहतर सुविधा हो तो फरवरी मार्च में भी रुपाई का काम किया जा सकता है। पौधे की रुपाई के लिए पहले 60 सेंटीमीटर चौड़े, 60 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे को तैयार करें। इसमें 20 से 25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट और 40 से 50 ग्राम मिथाइल पैराथियन पाउडर को ऊपरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को भर दें। मिट्टी सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भरें। इसके बाद मिट्टी पर सिंचाई करें। गड्ढों में मिट्टी पौधा लगाने के 15 से 20 दिन पहले भर देना चाहिए। इस तरह तैयार गड्ढों में नियत समय पर पौधों की रुपाई करें, साथ ही हल्की सिंचाई भी करें। इस फसल में वैसे तो ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शरद ऋतु में पौधे की सिंचाई 15 दिन के अंतराल पर और गर्मियों के मौसम में 7 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। साथ ही अमरूद के खेतों में 10 से 15 दिनों के अंतर पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालते रहे। बारिश के मौसम में इस बात का खास ध्यान रखें कि बाग में अनावश्यक पौधे ना उग पाए। इसके अलावा अमरूद में कीड़े की समस्या बारिश के मौसम में ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में कीटों के प्रकोप से बचने के लिए नीम की पत्तियों के उबले पानी का छिड़काव करना चाहिए। वहीं अमरूद में उकठा रोग, तना कैंसर रोग के लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। पौधों की मजबूती और सही वृद्धि को बनाए रखने के लिए टहनियों की हल्की छटाई करनी जरूरी होती है। इसकी कटाई हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए। इस तरह कटाई के बाद नई टहनियों से ज्यादा फल उत्पादन की संभावनाएं रहती है। अब बात कर लेते हैं फलों की तुड़ाई की। पौधा रोपण के 2 से 3 साल बाद अमरूद के फल लगने शुरू हो जाते हैं। तैयार फलों का रंग हरे से पीला होना शुरू हो जाता है। फलों की तुड़ाई सही समय पर कर लेनी चाहिए। फलों को ज्यादा पकने नहीं देना चाहिए। यदि फल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है तो किसान उसे प्रसंस्कृत करके भी अच्छी आय ले सकते हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, अगर एक ही खेत से हमें दोहरा लाभ मिले तो कितना अच्छा होगा। ये संभव हो सकता है। अगर आप धान की खेती करते हैं तो उसी में आप मछली पालन भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपके मुनाफे को दोगुना कर सकता है। कैसे, आइए जानें हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन के जरिए।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है, जो धान की फसल के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि धान की फसल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। पानी से भरे धान के खेत में किसान एक और लाभ ले सकते हैं और वो है मछली पालन। जी हाँ, पानी से भरे इन खेतों में किसान आसानी से मछली पालन कर सकते हैं। इस दोहरे लाभ में धान की पैदावार भी अच्छी होगी और किसान को दोहरा लाभ हो सकेगा। हालांकि धान की खेती और मछली पालन का ये कॉम्बिनेशन नया नहीं है। फिश राइस फार्मिंग चीन, बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड जैसे देशों में काफी लोकप्रिय है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता हमारे किसानों का ध्यान भी आकर्षित कर रही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से। इस तकनीक में धान की फसल में जमा पानी में मछली पालन किया जाता है। अगर किसान चाहते हैं तो धान से पहले ही मछली का कल्चर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मछली कल्चर खरीद भी सकते हैं। ध्यान रहे कि इस तरीके से मछलियों का उत्पादन खेती, प्रजाति और उसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। खेती की इस तकनीक में एक ही खेत में मछली व दूसरे जल जीवों को एक साथ रखा जाता है। इससे धान के उत्पादन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता है, बल्कि खेत में पल रही मछलियों को भरपूर चारा मिलता रहता है, तो मछलियों को वेस्ट फसल के लिए जैविक खाद का काम करती है। इसके अलावा मछली पालन से धान के पौधों में लगने वाली कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। फिश राइस फार्मिंग करने के लिए निचली जमीन वाले खेत का चुनाव करें। इस तरह के खेत में काफी आसानी से पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके साथ ही खेत को तैयार करते समय जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद से मछलियों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। फिश राइस फार्मिंग तकनीक में शुरुआत में किसान रोहू, मृगला, मुगली, कतला प्रजातियों की मछलियों का चयन कर सकते हैं। ये मछलियां उथले पानी में आसानी से रह लेती है। साथ ही बेहतर लाभ लेने के लिए धान की लंबे समय में तैयार होने वाली किस्मों का चयन करें, जैसे वानी धान CR26077, ADT6, ADT7। इससे मछलियों को 4 से 5 माह का समय मिल जाता है। ये मछलियां 3 माह में ही करीब 500 से 700 ग्राम की हो जाती है। किसान एक एकड़ के खेत में 400 किलो मछली का बीज या करीब 2000 मछलियां छोड़ सकते हैं। किसान इस बात का ध्यान रखे कि रुपाई के करीब 7 दिन बाद ही मछलियां छोड़े। साथ ही खेत में पानी का स्तर बनाए रखे। धान के खेत में करीब 6 इंच या इससे ज्यादा पानी रखे। पानी का स्तर 9 इंच

0: 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें। आज किसान कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं और अपनी सीमित क्षमताओं को उम्मीदों के पंख लगाकर सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम ऐसे ही किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। उनके ये प्रयास और उनसे मिली सफलता बाकी किसानों को भी नया करने की प्रेरणा दे रही है। लहलहाते खेतों के बीच चहलकदमी करते ये है किसान परमजीत सिंह, जिन्हें इनकी मेहनत और अलग खेती करने के लिए जाना जाता है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने संघर्ष का लंबा दौर जिया है। वो बताते हैं कि पहले उनके परिवार में पारंपरिक खेती ही हुआ करती थी, जिससे बमुश्किल घर का गुजारा चलता था। परमजीत बताते हैं कि जब वो 14 साल के थे तभी से खेती किसानी में अपनी सेवाएं देने लगे थे और बचपन से खेतों में समय गुजारने के कारण परमजीत को खेती से लगाव होने लगा। लेकिन वो खेती में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कम संसाधन में भी अच्छा मुनाफा लिया जा सके। इसके लिए परमजीत ने बदलते वक्त के साथ खेती के तरीकों में भी बदलाव किया और पारंपरिक खेती के स्थान पर सब्जियों की खेती व बागवानी करने लगे।
1: क्योंकि सर जो पुराना समय है, जो ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, खेती तो हम करते थे लेकिन जो रवायती फसल है उसमें इतना मुनाफा भी नहीं हो पाता था। बड़ी मंदे हालात थे उस टाइम के, तो उस समय हमने बड़ा स्ट्रगल भी किया है लाइफ में। उसके साथ साथ खेती भी करते थे लेकिन उस समय ऐसे हालात थे कि हम एक जैसे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, 2.5 किलोमीटर हमारा स्कूल दूर था जी, तो हम सोचते थे कि अगर साइकिल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, उस पे जाके जल्दी आ सकते हैं। लेकिन हालात ऐसे थे, वो भी नहीं था किस्मत में। तो खेती करते करते जो नया रेगुलेशन आया है उसके चलते फिर हमने भी खेती को चेंज किया और नई तकनीक से खेती करने लगे। उसमें सब्जी भी लगाई है, पहले बहुत गोभी वगैरह आलू की हम खेती करते थे, तो जब से फिर हमने खेती का काम पूरे अपने काम उससे किया है तो फिर इसको चेंज किया है और नई नई तकनीक से हमने खेती की है, हर तरह की मशीनरी का हमने प्रयोग किया है।
0: समय बीतता गया, नफा नुकसान लगा रहा, लेकिन उनकी मेहनत तब ज्यादा रंग लाई जब उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की। हालांकि शुरू में एक छोटे से हिस्से में स्ट्रॉबेरी की खेती की, लेकिन इससे जो मुनाफा मिला उसने परमजीत के लिए सफलता के नए द्वार खोल दिए। आज परमजीत करीब 10 एकड़ खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की अलग अलग किस्में लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी इस नई फसल के लिए कैसे बाजार तैयार किया और कैसे आया उन्हें ये आइडिया, आइए जानते हैं उन्हीं से।
1: और ये हमारी एक हिमाचल में मूंगफली बहन है जिसने हमें प्रेरित किया है ये स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के लिए, जिससे मेरी पूरी लाइफ है। जो पिछले 5 साल से मैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करता आ रहा हूँ, मैंने दो जो एक एकड़ होती है उसमें से चौथा हिस्सा हमने पहले लगाया था, तो धीरे धीरे करते करते पिछले साल हमारी 5 से 6 एकड़ थी, तो इस बार हमने 10 से 11 एकड़ हमारी जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो हम कर रहे हैं। पहले पहले तो लगाई हमने, स्ट्रगल भी किया है। मैं खुद जो किसान मंडियां लगती हैं चंडीगढ़ में 15 सेक्टर में है, 46 में है, 43 में है, 34 में है, मैं उनमें बैठ के किसान मंडियों में इसको सेल करता था, जिसमें पहले पहले मेरे को मार्केटिंग की समस्या के कारण मेरे को ये भी करना पड़ा है। उसमें मेरे को बहुत फायदा मिला है क्योंकि जैसे जैसे पता भी चला है कि इसको कैसे सेल करना है, कहाँ बेचना है।

0: उसमें मैंने इसका जैम भी बनाया है जी स्ट्रॉबेरी का, और लड्डू और बर्फी भी बना के सेल किए हैं, और हम स्ट्रॉबेरी भी लूज जैसे खुली सेल करते थे।
1: स्ट्रॉबेरी भारत की जलवायु में ठीक से तालमेल बिठा सके इसके लिए स्थान के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। परमजीत जी किन किस्मों को लगाते हैं आइए जान लेते हैं।
0: हम हिमाचल से जो पुराना पौधा है उससे पौधा तैयार होता था, वो लगाते थे, उसकी प्रोडक्शन में बड़ी दिक्कत आती थी और कम भी रहती थी, तो धीरे धीरे हमें भी जैसे जैसे काम करते आ रहे हैं तो पता चलता आ रहा है, तो फिर हमने जो इसका वैसे ये बाहर की वैरायटीज है, बाहर की फार्मिंग है, और इसका जो पौधा है वो भी कैलिफोर्निया अमेरिका से और इटली वगैरह से आता है, जो हम वहां से मंगवाते हैं। पुणा की एजेंसियां हैं दो तीन, एक प्लांट पैराडाइज है, जैन ट्रेडर्स वाले हैं, और हैं दो तीन, वो बाहर से मंगवाते हैं मदर प्लांट, तो मदर प्लांट उनसे लेके 70 रुपए प्रति प्लांट के हिसाब से हमें वो मदर प्लांट मिलता है, उसको हम प्लांटेशन करवाते हैं हिमाचल में। टोटल इसकी जो पूरे संसार में वैरायटीज हैं वो तो 7 और 8 के करीब हैं। जो इंडिया में कामयाब वैरायटी हैं वो है कैमरोज है जी, और एसए है जी, जो अर्ली वैरायटी है नई है, और विंटर डॉन और विंटर स्टार। डिमांड सभी की एक है, लेकिन मार्केट में भाव तकरीबन 10-20 रुपए का 2 किलो का डब्बा रहता है, उसमें 8 डिब्बी छोटी रहती हैं, 10-20 रुपए का फर्क रहता है, लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता है जो विंटर डॉन और विंटर स्टार बहुत ज्यादा कम है। जो कैमरोज है या ऐसे है उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो तकरीबन 1 से लेके 5-6 दिन तक रहती है।
1: परमजीत जी आज जिस मुकाम पर है वहाँ बागवानी विभाग का काफी सहयोग रहा है। वो बताते हैं कि कृषि विशेषज्ञों ने हर कदम पर साथ दिया, वहीं आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सरकार की योजनाओं ने काफी मदद की। आज आलम ये है कि परमजीत सिंह का उदाहरण देकर बागवानी विभाग काफी किसानों को भी आगे बढ़ने में सहायता कर रहा है।
0: जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का ब्लॉक का, उसमें HDO है युवराज भारद्वाज, उसने हमें इतना मोटिवेट किया है, उसने हमें बताया कि आप ये खेती करो आपको इसमें ये मुनाफा है, तो इसमें आपको ये सब्सिडी मिलेगी, कि वो आगे जो 4-5 और मेरे गांव के लड़के हैं वो भी जैसे मशरूम वगैरह या स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करना चाहते हैं उनकी हेल्प के लिए भी जुटे हुए हैं। बढ़िया है जी, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स हमें बढ़िया मिला है।
2: 5 साल से जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, इन्होंने 1 एकड़ से हाफ एकड़ से स्टार्ट किया था काम, उसे बहुत सी प्रॉब्लम आई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है मार्केटिंग की आई दिक्कत, उसके बाद लेबर की बहुत प्रॉब्लम आई, ये इनकी फैमिली का और इनके जो गांव का वो सारा कोऑपरेटिव सिस्टम रहा, उनका साथ रहा है, उसकी वजह से जो ये हैं आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। आज इन्होंने 10.5 एकड़ लगाई हुई है, लास्ट टाइम जो इन्होंने 4.5 एकड़ लगाई थी, उन्होंने बोला है इनका टारगेट जो है 25 एकड़ तक लगाने का स्ट्रॉबेरी का है। 2015 से मैं इनके टच में आया हूँ, तब से मैं लेके आज तक इनको तो हमारा हॉर्टिकल्चर का एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इनको बुलाते हैं, जैसे कैंप लगाते हैं इनके गांव में, जैसे ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं, और गांव के जो फार्मर्स हैं उनको इस हॉर्टिकल्चर के लिए डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए ये उनको उत्साहित कर रहे हैं इस टाइम, और हमारे साथ हर साल 1-2 फार्मर इनकी वजह से हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं।
1: आज परमजीत सिंह जी ने अपने कृषि के दायरे को आगे बढ़ाते हुए करीब 25 लोगों को भी रोजगार दे रखा है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। वो ठंड के मौसम में स्ट्रॉबेरी तो बाकी सीजन में अंतर फसलें लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं, जिसमें परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। हो भी क्यों ना, इसी खेती ने आज उनके कई सपने साकार कर दिए हैं।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में, और अभी आप सुन रहे थे इस रेडियो रिपोर्ट को और जाना कि किस तरीके से हम अमरूद की बागवानी किस तरीके से कर सकते हैं, साथ में पशुपालन किस तरीके से कर सकते हैं, किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, धान की बुवाई हम कैसे कर सकते हैं, सफल किसान की कहानी को भी जानना कि किस तरीके से हमारे पंजाब के किसान ने स्ट्रॉबेरी करके अपने आय में वृद्धि की है। तो ऐसी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ तीन ही खेती में फसलें उगाई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें देखना होगा कि हमारे मिट्टी में कौन तत्व, किस तत्वों की कमी है, उस तत्वों को हम पूर कर कर हम किसी भी फसल को हम लगा सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यानी विराम लेते हैं, इसके बाद हम छत पर बागवानी करने के तरीके, किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से सावधानी हमें बरतनी चाहिए, उस विषय पर हमारे विषय विशेषज्ञ की सलाह हम जान लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8।

0: रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: आज मेरा नर्सरी में आने का जो मकसद है वो बहुत सिंपल है कि हमने अगर टेरेस में या बैल्कनी में अपने गार्डन बनाना है तो हमको किस किस चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। पर नर्सरी में आने से पहले आपको अपने घर का पूरा म्योना करना पड़ेगा। समझो मैं टेरेस में खड़ी हूँ, मुझे ये देखना है कि मेरा टेरेस कौन सी डायरेक्शन का है, साउथ का है, नॉर्थ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, या खुले टेरेस में मेरे को चारों डायरेक्शंस मिलती हैं। डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने किस किस्म का पौधा लगाना है वो आपका डायरेक्शन ही बता पाएगा। बालकनी का भी यही हाल है। सेकंड, आपको किस चीज का शौक है, आपको फलों के पेड़ों का शौक है, आपको फूलों का शौक है, आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स का शौक है, या आपको सिर्फ ग्रीनरी का शौक है, जैसे आप फॉलिएज ही लगाना चाहते हैं, तो वो सब चीजों में आपको अपना डायरेक्शन देखना पड़ेगा। मोटा मोटा मैं समझा दूं, सबसे ज्यादा धूप जो है वो साउथ में और वेस्ट में रहती है। तो अगर आपको फलों के पेड़ लगाने हैं तो आपको ये डायरेक्शन जरूर आपके छत पे होनी चाहिए। अगर आपने सॉफ्ट पौधे लगाने हैं, मतलब जिनके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं, तो आपको ईस्ट देखना पड़ेगा, पूर्व। और अगर आपको पानी के पौधे लेने हैं या अगेन डेलिकेट पौधों का ख्याल रखना है जिनको एक आधा घंटे की बस धूप चाहिए, तो आप नॉर्थ में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना सबसे पहले टेरेस को देख के आइए या अपनी बालकनी को देख के आइए, और उसके बाद आप नर्सरी में आइए। अब हमको ये देखना है कि हम जो पौधा यहाँ से लेके जाएंगे वो हमारी बालकनी में या हमारी छत में सूट करता है। जैसे कोई पौधा है बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, कोई पौधे होते हैं वो हाइट बहुत ले लेते हैं, कोई पौधे होते हैं वो बहुत ही नीचे ड्रॉप वैरायटी के होते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको किस किस्म का पौधा लेना है जो उस डायरेक्शन में, उस सन डायरेक्शन में और उस कंडीशन में सूट करे। तो उसके लिए आपको अपने जो नर्सरी में लोग घूम रहे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो आपकी बहुत मदद कर देंगे। जो माली भैया होते हैं उनको इन चीजों का बहुत जानकारी रहती है, और उनके साथ अगर आप बोलें कि बेस्ट है कि अगर आजकल तो सबके पास मोबाइल है, थोड़ा सा अपना टेरेस का वीडियो बना के ले आइए या एक आधी फोटोज खींच के ले आइए, एंड देन अगर आप दिखाते हैं माली भैया को, तो वो आपकी बहुत मदद कर

0: जैसे हमारा फेस हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आप कहीं जाएं और कोई कहेगा क्या बात है, आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो आप कहोगे मुझे आज बुखार है। इसी तरीके से पौधा अपनी सेहत के बारे में बता देता है, और जैसे हमारा फेस है वैसे पौधे के पत्तियां होती हैं। लीव्स आर द फेस ऑफ द प्लांट। तो आपने ये देखना है नर्सरी में कि आपको क्या पौधे में देखना चाहिए जो आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ रहे। सबसे पहले है कि पीले पत्ते ना हो। जो पीले पत्ते होते हैं इसका मतलब है उसमें कोई बीमारी है। दूसरी बात हो जाती है जैसे रूट बाउंड हो जाती है। आप देखेंगे छोटे से गमले में जगह जगह से ठूस ठूस के जड़ें बाहर निकल के आ रही हैं। इसका मतलब है वो पौधा बहुत स्ट्रेस में है। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर पौधा स्ट्रेस में है तो वो अपनी ग्रोथ ठीक से नहीं ले पाएगा। तो आपने ये जरूर देखना है कि उस पत्ते बिल्कुल शाइन कर रहे हों, साफ सुथरे हों, उनमें चमक आ रही हो। अगर पत्तों में कहीं कीड़े हैं तो आपको जरूर पत्तों में छेद होंगे, होल्स होंगे। सबसे ज्यादा जो पत्ते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, तो आप जरूर अपने पौधे को थोड़ा सा उठा के देखिए कि उसके पीछे में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं चिपके हुए हैं। सेम तरीके से अगर आपके गमले में वीड्स हैं, जंगली बूटियां निकली हुई हैं, तो वो क्या कर रही है जंगली बूटी, वो आपके पौधे की जो ताकत है उसको साथ साथ खा रही है। ठीक है, तो आपने वो वाले पौधे भी नहीं लेने हैं। जरूर गमला उठा के देखिए उसकी जड़ नीचे से निकल तो नहीं आई है। अगर नीचे से निकल आई है इसका मतलब है अगेन वो स्ट्रेस में है, उसको मत लीजिए। बहुत बार होता है आप पन्नियों में ले लेते हैं पौधे, मे भी पन्नियों में बेटर हो जाता है क्योंकि आपने घर जाके उसको अच्छी तरीके से अपने किस्म से आपने रिपोर्टिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसे आप कोई पौधा लेके घर जाते हैं एकदम उसको लगाने की कोशिश मत करिए। लोगों को होता है पौधा लाए, माली आओ, जल्दी आओ, या खुद लगा के आप पौधा लगा लेते हैं, वो मत करिए। पौधे को आपकी मिट्टी, आपके घर की हवा, आपके घर के पानी को एडजस्ट होने दीजिए। सिंपल चीज है, केरला से किसी को आप कश्मीर ले जाएंगे तो उसको एक दो दिन तो लग ही जाएंगे ना एडजस्ट होने में। इसी तरीके से पौधे को भी एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। जरूर जाके पौधों को घर में मिट्टी पे रखिए, सीमेंट पे मत रखिए या पत्थरों पे मत रखिए, उसको आपकी मिट्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने दीजिए।
1: प्लांट को अपने घर लेकर आते हैं तो आपने उसकी देखभाल उसी तरह करनी होती है जिस तरह आप एक छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आपके प्लांट की हेल्थ कैसी है। जब एक प्लांट आपके घर आता है तो इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल जाता है। ये देखना चाहिए कि उसकी मिट्टी कैसी है, उस प्लांट में किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं, क्योंकि अगर आप बीमारी या कहीं डिजीज वाला प्लांट अपने घर ले आएंगे तो उसकी ग्रोथ होने में डिफिकल्टी हो सकती है। कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट से।
0: अगर आपके डॉक्टर, आपके जैसे जो जीपी होता है, आप जनरली अपने जीपी को फोन करते हैं कि मेरे को खांसी है या बुखार है या टांग में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली दवाई देते हैं। आप कहीं छुट्टी पे भी चले जाएंगे तो आप उनको फोन करके पूछ लेते हैं कि मैं कौन सी दवाई लूं, क्योंकि आपको उस डॉक्टर के ऊपर फेथ है, वो आपका जीपी है। इसी तरीके से आपको अपने आसपास में एक लोकल नर्सरी के साथ जरूर रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वहां से जो आप पौधा लेके आएंगे वो आपको सही पौधा मिलेगा, क्योंकि नर्सरी वाले को अपनी रेपुटेशन भी संभाल के रखनी है। बड़ी बार लोग करते हैं मैं देहरादून से पौधा ले आई, मैं ये वाला पौधा केरला से ले आई, या ये वाला पौधा मैं गुजरात से ले आई। बहुत अच्छी बात है, एक आधा पौधा आपके गार्डन में ऐसा हो, व्हाई नॉट, बट अगर वो पौधा खराब हो जाता है तो आप किसको पकड़ेंगे। पर आपका अगर लोकल नर्सरी वाला होगा तो आप उसको पकड़ सकते हैं, और उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो वो आपका पौधा एक्सचेंज भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मैंने गलत सीजन में गलत पौधा दे दिया है। आप बड़ी बार देखेंगे लोगों को आजकल सक्यूलेंट एंड कैक्टाई का बहुत शौक हो गया है, बहुत सुंदर वैरायटीज उसमें आती हैं, पर कब हमने वो लेनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। नर्सरी वाले भी सक्यूलेंट एंड कैक्टाई को एक पर्टिकुलर सीजन में नहीं संभाल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं 70% ऑफ पे आपको दे देते हैं, और आप भाग के जाके सारे उठा लाते हो।

पर एक एक करके वो आपके घर में खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इम्पल्स बाय मत करिए। एग्जीबिशन देखी तो भाग के जाके सारे पौधे उठा लिए। इम्पल्स बाय में ज्यादा से ज्यादा पौधे नहीं चलते, दे आर कॉल्ड वन सीजन प्लांट। अगर आपने ट्यूलिप लाना है तो एक ही सीजन चलेगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं उस बल्ब को हर साल चला पाऊंगी, मुश्किल हो जाती है। नर्सरी वालों को इतनी मुश्किल होती है तो हम लोगों को क्यों नहीं होगी। एंड नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम वेदर्स हैं हमारे पास, गर्मी है तो भीषण गर्मी है, सर्दी है तो बहुत ठंड है, तो पौधों को एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई पौधा लाएं उसका पहला सीजन, हर जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है तो हम उसका पहली दिवाली, पहली होली, हर फेस्टिवल बड़े अच्छी से मनाते हैं। इसी किस्म से अगर आप एक पौधा लेके आते हैं, उसका हर सीजन आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी पहली गर्मी, पहली बरसात, पहला ठंड, वो एक बार उसने वो पार कर लिया आपके प्यार से, आपके लुकिंग आफ्टर से, फिर वो पौधा आपका बहुत ख्याल रखेगा। अगर आपने एक बड़ा पौधा लिया, जैसे फल का पौधा लिया है, तो एक कहावत है, अपनी हाइट तक उस पौधे का ख्याल रखिए और उसके बाद वो पौधा सारी जिंदगी आपका ख्याल रखेगा। वो साउथ में और वेस्ट में रहती है, तो अगर आपको फलों के पेड़ लगाने हैं तो आपको ये डायरेक्शन जरूर आपके छत पे होनी चाहिए। अगर आपने सॉफ्ट पौधे लगाने हैं, मतलब जिनके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं, तो आपको ईस्ट देखना पड़ेगा, पूर्व। और अगर आपको पानी के पौधे लेने हैं या अगेन डेलिकेट पौधों का ख्याल रखना है जिनको एक आधा घंटे की बस धूप चाहिए, तो आप नॉर्थ में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना सबसे पहले टेरेस को देख के आइए या अपनी बालकनी को देख के आइए और उसके बाद आप नर्सरी में आइए। अब हमको ये देखना है कि हम जो पौधा यहाँ से लेके जाएंगे वो हमारी बालकनी में या हमारी छत में सूट करता है। जैसे कोई पौधा है बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, कोई पौधे होते हैं वो हाइट बहुत ले लेते हैं, कोई पौधे होते हैं वो बहुत ही नीचे ड्रॉप वैरायटी के होते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको किस किस्म का पौधा लेना है जो उस डायरेक्शन में, उस सन डायरेक्शन में और उस कंडीशन में सूट करे। तो उसके लिए आपको अपने जो नर्सरी में लोग घूम रहे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो आपकी बहुत मदद कर देंगे। जो माली भैया होते हैं उनको इन चीजों का बहुत जानकारी रहती है, और उनके साथ अगर आप बोलें कि बेस्ट है कि अगर आजकल तो सबके पास मोबाइल है, थोड़ा सा अपना टेरेस का वीडियो बना के ले आइए या एक आधी फोटोज खींच के ले आइए, एंड देन अगर आप दिखाते हैं माली भैया को तो वो आपकी बहुत मदद कर दे।

जैसे हमारा फेस हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आप कहीं जाएं और कोई कहेगा क्या बात है, आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो आप कहोगे मुझे आज बुखार है। इसी तरीके से पौधा अपनी सेहत के बारे में बता देता है, और जैसे हमारा फेस है वैसे पौधे के पत्तियां होती हैं। लीव्स आर द फेस ऑफ द प्लांट। तो आपने ये देखना है नर्सरी में कि आपको क्या पौधे में देखना चाहिए जो आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ रहे। सबसे पहले है कि पीले पत्ते ना हो। जो पीले पत्ते होते हैं इसका मतलब है उसमें कोई बीमारी है। दूसरी बात हो जाती है जैसे रूट बाउंड हो जाती है। आप देखेंगे छोटे से गमले में जगह जगह से ठूस ठूस के जड़ें बाहर निकल के आ रही हैं। इसका मतलब है वो पौधा बहुत स्ट्रेस में है। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर पौधा स्ट्रेस में है तो वो अपनी ग्रोथ ठीक से नहीं ले पाएगा। तो आपने ये जरूर देखना है कि उस पत्ते बिल्कुल शाइन कर रहे हों, साफ सुथरे हों, उनमें चमक आ रही हो। अगर पत्तों में कहीं कीड़े हैं तो आपको जरूर पत्तों में छेद होंगे, होल्स होंगे। सबसे ज्यादा जो पत्ते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, तो आप जरूर अपने पौधे को थोड़ा सा उठा के देखिए कि उसके पीछे में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं चिपके हुए हैं। सेम तरीके से अगर आपके गमले में वीड्स हैं, जंगली बूटियां निकली हुई हैं, तो वो क्या कर रही है जंगली बूटी, वो आपके पौधे की जो ताकत है उसको साथ साथ खा रही है। ठीक है, तो आपने वो वाले पौधे भी नहीं लेने हैं। जरूर गमला उठा के देखिए उसकी जड़ नीचे से निकल तो नहीं आई है। अगर नीचे से निकल आई है इसका मतलब है अगेन वो स्ट्रेस में है, उसको मत लीजिए। बहुत बार होता है आप पन्नियों में ले लेते हैं पौधे, मे भी पन्नियों में बेटर हो जाता है क्योंकि आपने घर जाके उसको अच्छी तरीके से अपने किस्म से आपने रिपोर्टिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसे आप कोई पौधा लेके घर जाते हैं एकदम उसको लगाने की कोशिश मत करिए। लोगों को होता है पौधा लाए माली आओ जल्दी आओ या खुद लगा के आप पौधा लगा लेते हैं, वो मत करिए। पौधे को आपकी मिट्टी, आपके घर की हवा, आपके घर के पानी को एडजस्ट होने दीजिए। सिंपल चीज है, केरला से किसी को आप कश्मीर ले जाएंगे तो उसको एक दो दिन तो लग ही जाएंगे ना एडजस्ट होने में। इसी तरीके से पौधे को भी एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। जरूर जाके पौधों को घर में मिट्टी पे रखिए, सीमेंट पे मत रखिए या पत्थरों पे मत रखिए, उसको आपकी मिट्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने दीजिए। अगर आपके डॉक्टर, आपके जैसे जो जीपी होता है, आप जनरली अपने जीपी को फोन करते हैं कि मेरे को खांसी है या बुखार है या टांग में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली दवाई देते हैं। आप कहीं छुट्टी पे भी चले जाएंगे तो आप उनको फोन करके पूछ लेते हैं कि मैं कौन सी दवाई लूं, क्योंकि आपको उस डॉक्टर के ऊपर फेथ है, वो आपका जीपी है। इसी तरीके से आपको हर, जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है तो हम उसका पहली दिवाली, पहली होली, हर फेस्टिवल बड़े अच्छे से मनाते हैं। इसी किस्म से अगर आप एक पौधा लेके आते हैं उसका हर सीजन आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी पहली गर्मी, पहली बरसात, पहला ठंड, वो एक बार उसने वो पार कर लिया आपके प्यार से, आपके लुकिंग आफ्टर से, फिर वो पौधा आपका बहुत ख्याल रखेगा। अगर आपने एक बड़ा पौधा लिया, जैसे फल का पौधा लिया है, तो एक कहावत है अपनी हाइट तक उस पौधे का ख्याल रखिए और उसके बाद वो पौधा सारी जिंदगी आपका ख्याल रखेगा। चीख पे मरना शुरू हो जाता है और आप बड़े हैरान होते हो और आप कहते हो पौधा तो मैं बहुत हेल्दी लाया था या लाई थी और 10-15 दिन तक भी ठीक रहा, पता नहीं अब क्या हो गया, मेरा पौधा खत्म हो गया। तो उसका उसके बारे में आप समझिए, उस पौधे को जो प्रोटेक्शन मिली है वो प्रोटेक्शन हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए ग्रीन हाउस में जो पौधे पड़े हैं वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनको घर लाके
अपने बैल्कनी में या अपने छतों पे रखने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये चीजें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी, या तो आपको पहले ये पौधों को कुछ टाइम के लिए शेड में रखना पड़ेगा, जैसे आपके घर में कोई नीचे पेड़ है, पेड़ के नीचे में उसको रखिए, उसको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप करके उसको वो हार्श कंडीशन में लेके आइए। पौधे की हेल्थ की एक और बात मैं जो बताना चाहती हूँ, पौधे का जो स्टेम होता है वो बहुत अच्छी से देखिए। बड़ी बार क्या होता है, गमले के ऊपर से ही या पन्नी के ऊपर से ही 3-4 टहनियां निकल के आ जाती हैं, वो ठीक नहीं है। मैक्सिमम आपके पास 2 टहनियां ही निकल के आनी चाहिए। आप अगर ग्राफ्टेड पौधा ले रहे हैं, एक तो वो महंगा पड़ता है, पर वो ग्राफ्टेड पौधे में आपने देखना है कि वो ग्राफ्टिंग कहाँ से हो रही है। अगर बिल्कुल ही जड़ के पास से ग्राफ्टिंग है तो उसको मत लीजिए। कम से कम आपके गमले में 6-8 इंच का एक, जैसे कहते हैं ना, क्लीन स्पेस होना चाहिए और उसके बाद ग्राफ्टिंग हो तो वो पौधा ज्यादा अच्छा रहता है। जो पौधा अपनी ग्रोथ कहाँ से लेता है, पौधा अपनी ग्रोथ स्टेम से लेता है। वो स्टेम अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो हम लोग कह सकते हैं वो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बहुत बार आप देखते हैं लोग कुप करके बैठ जाते हैं या सीधा बैठ नहीं पाते हैं, लेट जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अगर आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी सेहत अच्छी होगी। इसी तरीके से अगर आपका स्टेम स्ट्रॉन्ग है

0: और रंग भी है ऊपर रखना है।
1: तो रंग बिरंगे पौधों को देख के मन मचल जाता है, खासकर फूल वाले जो गमले होते हैं उनको देख के लगता है सारे के सारे अपने घर में ले आए। पर आपको समझना आना चाहिए कि जब फूल लगे हों तो वो वाला पौधा मत लीजिए, जिसमें बड्स हों, कलियां हों, उसको लीजिए। क्योंकि जब आप ये फूल वाले पौधों को घर लेके जाएंगे, जैसे ये पौधे को आप घर लेके जाएंगे, इसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तो ये ग्रीन हाउस के अंदर है। इसको आप जब घर लेके जाएंगे तो ये सारे के सारे इसके जो फूल हैं ये ड्रॉप हो जाएंगे और आप फिर वेट करते रहेंगे शायद नेक्स्ट सीजन के लिए, जब इसमें फिर से फूल आएगा। पर अगर आप कलियां लेके जाएंगे, जैसे ऐसे कलियों वाला पौधा लेके जाएंगे, तो ये पौधा आपके घर में जाके एडजस्ट हो जाएगा और स्ट्रेस में आने के कारण ये जो कलियां हैं ये फूल बन जाएंगी, और जब ये फूल बन जाएंगी आपका गार्डन बहुत ही शानदार हो जाएगा। पौधा लेने के टाइम डूज एंड डोंट्स बहुत जरूरी हैं। आप किसी स्कूल में जाएंगे तो वहां भी डूज एंड डोंट्स होते हैं। हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही आप चलते हैं, तो पौधों में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। अब डूज क्या होते हैं? आपके पौधे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसका स्टेम अच्छा होना चाहिए, उसमें जो ब्रांचिंग है वो अच्छी से हो, पर नीचे से पौधा उठ रहा है वहां पे आपकी ब्रांच एक या दो होनी चाहिए। एक या दो ब्रांच के बाद वो इस तरह करके अगर ब्रांचिंग करेगा तो वो पौधा आपका बहुत अच्छा हेल्थ लेगा। अननेसेसरी उसमें ब्रांचेस ना हो, जैसे इनवर्ड ब्रांचेस जो हम कहते हैं कि इधर से आपकी ब्रांच इधर आ रही है, इधर से ब्रांच इधर आ रही है, वो क्या करती है, हवा की डायरेक्शन को भी खराब कर देती है। तो आपको वो क्लिप करना है। टाइम टाइम पे आपको अपने पौधे की प्रूनिंग करनी है, टाइम टाइम पे आपको उसको खाना पीना देना है। तो जब आप पौधे को घर लेके जाएं, सबसे पहले जरूरी चीज है पौधे को एकदम तुरंत उसको लगाने की कोशिश मत करिए, उसको वहां पे छोड़ दीजिए अपने घर में मिट्टी पे, उसको एक्लिमेटाइज होने दीजिए, उसको आपकी हवा आपके एनवायरमेंट के साथ जुड़ने दीजिए। जो भी आप चीज करें स्टेप बाय स्टेप करें। पौधा जब भी लगाएं शाम को लगाएं, सुबह लगा के धूप में रख देंगे पौधा एकदम मुरझा जाएगा। बहुत अगर गर्मी है तो पौधों को घर के अंदर में ले आइए, उसको फिर शाम को फिर बाहर निकालिए। जब भी आप उस पे कोई दवाई छिड़कना चाहते हैं तो दवाई याद से शाम को छिड़केंगे, पर अगर आप उनको कोई नरिशमेंट देना चाहते हैं तो वो आप हमेशा सुबह में देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, और आपको अपने गार्डन का पता चल जाएगा तीन चीजों से, जिसको कहते हैं 3 B's, बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज। अगर आपके गार्डन में ये तीन चीजें आ रही हैं, इसका मतलब है आपका गार्डन बहुत अच्छी से चल रहा है। तो ये आपके गुड गार्डन के साइंस होते हैं। जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप कोई कोर्स करते हैं, तो अगर आपको 3 B's का सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका मतलब है आपका गार्डन इज डूइंग वेरी वेल।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी हमने जाना कि किस तरीके से हम छत पर बागवानी कर सकते हैं, किस तरीके से नर्सरी लगा सकते हैं अपनी छतों पर, कौन कौन पौधे हम अपने छत पर लगा सकते हैं, ये सारी बातों को हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना। साथ में हमने किसान साथियों ने जाना कि किस तरीके से अमरूद की बागवानी हम कर सकते हैं, पशुपालन में किस तरीके से सावधानी, कौन सा जो महीना चल रहा है इस बरसात के मौसम में हम किस तरीके से अपने पशुओं की सुरक्षा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, ये सारी बातों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना। अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। नमस्कार।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। दोस्तों, आज के कलाकार में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वो मंच है जहां पर नए गायक, नए टैलेंट अपने प्रतिभाओं को दिखाते हैं, हम उन्हें सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को समझते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाता हूं डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी से। बाकी की बातचीत हम डॉक्टर पुष्पा से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, कौन है वो, कहाँ है वो, क्या करती हैं वो। डॉक्टर पुष्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं।
1: नमस्ते, मैं पुष्पा हूँ, मुझे आप पुष्पा कुमारी के नाम से जानते हैं
0: जी।
1: और वर्तमान में मैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ और फिलहाल मैं अभी जोधपुर में हूँ। इसके पहले हमने 20 साल कोलकाता में बिताया है और वैसे मैं बिहार को बिलोंग करती हूँ, मेरा नेटिव प्लेस बिहार है और यहाँ 2 साल हुए हैं मुझे जोधपुर आए हुए, पर ये जगह भी मुझे बहुत प्यारी लगती है और बहुत ही अच्छा जोधपुर भी सिटी है, इसको सूर्य नगरी कहते हैं हम। और बिहार के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, वो तो है अपनी परंपरा और अपने गौरवशाली इतिहास के लिए।
0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर पुष्पा एक साइंटिस्ट हैं, अभी वो जोधपुर में हैं जिसको राजस्थान का रियल हेरिटेज सिटी बोला जाता है, जहां पर अगर आपको रियल राजस्थान देखना हो तो आपको जोधपुर में दिखाई देता है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को डॉक्टर पुष्पा के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब डॉक्टर साहब, चलिए आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: बचपन में मैं एग्जैक्टली क्या बनना चाहती थी ये मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि बचपन तो मैंने बहुत बिंदास गुजारे हैं। बचपन में मैं बहुत शैतानी भी करती थी और पढ़ाई में बहुत अव्वल रहती थी मैं। और पढ़ाई मैंने बहुत मन से किया बचपन से ही। और स्कूली शिक्षा जब हमारी समाप्त हुई, मैं बता दूं आपको कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट रही हूं। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अपनी पढ़ाई मैंने वहां से की। और जब हमने स्कूली शिक्षा समाप्त की, उसके बाद मेरे जहन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने MBBS के लिए कोशिश की। 3-4 साल अटेम्प्ट भी दिए उसमें, पर भगवान ने कुछ और फैसला रखा हमारे लिए। फिर मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं प्लांट जेनेटिक्स में काम करूं, रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन वो भी मेरा नहीं हुआ। और इन द मीन टाइम मुझे एक मौका मिला, एक JRF की इंटरव्यू की एक एडवर्टीजमेंट छोटी सी हमने देखी आफ्टर MSc, तो हमने उसमें अप्लाई की और उसके इंटरव्यू के लिए हम गैंगटोक गए। गैंगटोक बहुत खूबसूरत सी जगह है और वो जगह देख के मुझे लगा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया और तब से हमारी दिशा बदल गई। और उसके बाद हमने रिसर्च में अपना कैरियर शुरू किया 2002 से, और उसके बाद मैं फिर साइंटिस्ट बन गई। और डॉक्टर जो थे, जो फिजिशियन डॉक्टर होते हैं, वो तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ, डॉक्टर पुष्पा कुमारी जरूर बन गई हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। डिजिग्नेशन, खैर मेरा पर्सनली मानना है ये है कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता, आपका जो काम होता है वो ज्यादा जरूरी होता है। आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो गुण हैं उनसे आपकी पहचान होती है। आप क्या काम करते हैं, अपने लिए, अपने समाज के लिए, दुनिया के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर पुष्पा की ही आवाज में।

0: बहुत प्यारा। पुष्पा जी, बचपन से लेकर आज तक की जीवन में आपके फेवरेट टीचर कौन रहे थे और क्यों?
1: ये तो एक ऐसा सवाल है जिसमें मैं अपने सारे टीचर्स का नाम ले सकती हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही थी और इनफैक्ट मैं बहुत सारे टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट रही हूँ। और वैसा ही आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे टीचर भी हमारे फेवरेट रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी को कम या ज्यादा महत्व नहीं दिया, किसी भी टीचर को। जितने भी हमारे गुरुजन शिक्षक रहे, शुरू से हमने सभी को इक्वल मान दिया, सम्मान दिया। और वैसे मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं बहुत छोटी थी, जब जैसे क्लास 1-2, ऐसे जो मुझे याद है, जब से हमने लिखना पढ़ना शुरू किया, हमारे एक टीचर जो अभी भी है, हमारे रामबालक सर, हम उनको बुलाते हैं, तो वो उन्होंने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया है और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। इनफैक्ट गाना भी उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने शुरुआत की कि चलो ठीक है, इसको गाना आता है। उनको बहुत अच्छा आता था गाने, वो मुझे भी साथ साथ गवाया करते थे। और उसके बाद फिर अगर मैं अपने जीवन को देखती हूँ, आज मैं जो बनी हूँ, उसमें हमारे स्कूल में नवोदय विद्यालय के जो प्रधान जी थे, जो है अभी भी, डॉक्टर श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा जी, तो वो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे उस समय। और जो उन्होंने हमारे अंदर वैल्यूज दिए हैं, और उसके एवज जो मैं आज बनी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं भी किसी के भी सामने खड़ी हो सकती हूँ। और मतलब आप क्या कह सकते हैं उसमें, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पंक्चुअलिटी, एक डिसिप्लिन वे जो होता है, एक ट्रूथफुलनेस जो होता है, अपनी ड्यूटी के लिए जो आपकी सच्चाई है, वो आप कैसे वो करते हैं, कैरी करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाई और इनकलकेट किया हमारे अंदर, जो वैल्यूज होते हैं मानव के जीवन में जो होने चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि ऐसा अपॉर्चुनिटी हर बच्चों को मिले, कि उनको ऐसे अच्छे टीचर और गुरु मिले जो उनका जीवन संवार सके, जो मुझे मिला, मैं भगवान का बहुत बड़ा उपहार समझती हूँ।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत।
1: और मैं एक और नाम लेना चाहूंगी इसमें, जो हमारे गुरु है अभी फिलहाल, मैं जिनसे संगीत की शिक्षा ले रही हूँ, ये मुझे अभी मिले हैं, मतलब 6-8 महीने पहले, वो भी SM के थ्रू इनसे जान पहचान हुई हमारी, और इनसे मैं अभी जुलाई से मैंने सीखना शुरू किया है। ये भी बहुत अच्छा सिखाते हैं और इनमें भी बहुत अच्छी क्वालिटीज है, और इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलेगा, और जो मेरी सांगीतिक शिक्षा रहेगी अभी जीवन में इसके आगे, मुझे लगता है कि इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उसमें।
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात कही आपने पुष्पा जी। जो मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है, आपके टीचर्स से आप बहुत इन्फ्लुएंस रहे, बहुत मोटिवेटेड रहे, सारे टीचरों को आपने बहुत रेस्पेक्टफुली एक्नॉलेज किया। मुझे जो समझ में आया वो ये कि आपके सारे टीचर्स ने आपको बहुत विनम्र और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ तैयार किया। आप विनम्र हैं, हर चीज का श्रेय आप देना चाहती हैं, ना कि खुद लें। ये बड़ी बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कलाकार के लिए कि वो विनम्र रहे, अहंकार का आ भी उसको छू के ना जाए, ये बड़ी खूबसूरत बात होती है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत, बहुत ही प्यारा गीत पुष्पा जी का, जो हम पुष्पा जी के सारे टीचर्स को डेडिकेट कर रहे हैं, और खास करके वो टीचर जो आज की डेट में पुष्पा जी का साथ दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत। तो आगे बढ़ते हुए पुष्पा जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा और समझने के लिए, ऐसे ऐसे कौन से तीन शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे, जो आपको सबसे अच्छा डिफाइन करेंगे, आपकी शख्सियत को बयान करेंगे, आपकी शख्सियत पर सूट करेंगे, ऐसे तीन शब्द बताइए।
1: अच्छा, इसमें आप सबसे पहला तो ले सकते हैं, मैं बहुत ही डिसिप्लिन रही हूँ, तो यू कैन से दैट आई एम अ वेरी सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन। और जिसको मतलब क्या करना है उसके लिए किसी को कभी भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ आपको ये करना चाहिए, वो मैंने खुद से किया। जब मुझे सेंस हुआ कि अब मुझे ये करना चाहिए, देन आई एम वेरी मच डिसिप्लिन अबाउट कि मुझे ये करना है। और दूसरा मैं कह सकती हूँ आपको, मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ तो कंपैशनेट हो सकती हूँ मैं दूसरों के प्रति। मुझे लगता है कि कोई सामने अगर कोई दुखी हो रहा हो किसी रीजन से, और मैं अगर उसको समझ पाती हूँ तो उसको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे अगर किसी के बात करने से या उससे बात करने से अगर उसकी कुछ तकलीफ कम हो जाए या फिर उसकी समस्या का समाधान हो सकता हो तो मैं करना चाहती हूँ। और खुश देखना चाहती हूँ मैं दूसरे लोगों को भी, और ऑप्टिमिस्टिक मैं हूँ। अगर कुछ घटना ऐसी भी हो जाए जिससे दुख पहुंचे तो मैं उसमें थोड़े, अब मानव हूं तो दुखी तो हो ही जाती हूँ थोड़े कुछ पलों के लिए, लेकिन फिर मैं उसमें बाद में ये सोचती हूँ कि इसमें अच्छा क्या हुआ, या इसका अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जब भगवान कुछ करता है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक जो हमें दिखता है और एक जो नहीं दिखता होता है। तो जो अच्छाई जो नहीं दिख रही होती है, अगर उसमें कोई अच्छाई छुपी हुई है तो हमें उसको देखना चाहिए। और मैं देखने की कोशिश करती हूँ, समझाती हूँ अपने आप को भी, और ऑप्टिमिस्टिक आप कह सकते हैं मुझे।
0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बात,
1: जी
0: बड़े ही प्यारे तीन शब्द जिन्होंने आपको डिफाइन किया। दोस्तों, अब आपको काफी कुछ समझ

0: खूब। चलिए एक मजेदार सा ट्विस्ट लेते हैं, एक मोड़ लेते हैं। अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार खाने की चीज आपने कुछ क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। खाना बनाना मुझे कभी आया नहीं, और इसके कुछ मजेदार वाक्य हैं जो मैं बताना चाहूंगी।
0: जी
1: सबसे पहले एक्चुअली मैं स्कूलिंग हमारी ऐसी थी कि वहाँ हमें मेस की सुविधा रही, कभी भी खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो पहलू था, बाद बाकी सारे काम हमें खुद करने होते थे, तो सब तो हमने सीख लिया। खाना बनाना नहीं आता था, और घर में भी मैं बहुत लाडली प्यारी थी सबकी, तो किचन तक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी लोग जाने नहीं देते थे, तो चलो ठीक है, अभी खाना बनाना आया नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि घर में कोई था नहीं, मैं अकेली थी और पापा थे। शाम को पापा के बहुत सारे दोस्त आते रहते थे, हमारे पापा समाज सेवा में रहे शुरू से, तो लोग मिलने के लिए आते रहते थे बहुत सारे। उस दिन भी कई लोग इकट्ठे आ गए। उन्होंने, मेरा भाई चाय बनाया करता था, तो भाई था नहीं, पापा ने बोला कि चाय चाय बना दो, चाय चाय भिजवा दो। अब कोई था नहीं, तो मैंने चाय बना दी और चाय बना दी और दे भी दी। उसके बाद सब लोग चले गए, पापा ने कुछ बोला नहीं। और दूसरी बार जब कुछ हुआ, तो मैंने उनको पूछा कि पापा मैं बना दूं, तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला, ना ना रहे दा, मतलब ना ना छोड़ दो, प्लीज आप मत बनाइए, रहने दीजिए। इसका मतलब ये था कि वो चाय ऐसी बनी होगी कि उन्होंने दूसरी बार प्रिफर किया होगा कि मैं नहीं बनाऊं।
0: ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्यूट।
1: और खाना बनाने के संदर्भ में मैं ये बताऊं आपको कि जब मैंने अपनी रिसर्च के लिए गैंगटोक सर्कल में जब ज्वाइन किया था एज अ JRF,
0: जी
1: तो जब मैं वहां गई, तो वहां मुझे खाना बनाने की सबसे पहली बार जरूरत पड़ी 2002 से। तो मुझे खाना बनाना तो आता नहीं था, तो हमारी दीदी ने मसाले दिए थे मुझे कि सब्जी में डालने के लिए, हल्दी और धनिया मिर्ची, ये उसने रेशियो बताया था कि 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्ची, ऐसा डालना। और मैं अगर सब्जी बनाऊं, एक आलू और एक आदमी के लिए एक आलू और कुछ इतना डालू, तो उसमें मसाले में वही डालती थी, एक
0: ओ
1: चम्मच
0: माय
1: हल्दी
0: गॉड,
1: 2 चम्मच धनिया।
0: ओहो, फिर तो क्या बनता होगा।
1: तो वो क्या बनता था उसके बाद वो खाई ना जाए और फेंकी भी ना जाए। तो मैं उसको क्या करती थी कि उसको मैश करके और फिर वो बना के कुछ पॉलिथीन में डाल के उसको कचरे में ले जाके उसको डिस्पोज, गैंगटोक में आप जहां तहां कचरा भी नहीं फेंक सकते, तो उसको बैग में भर के फिर हमें मार्केट में ले जाके डालना पड़ता था। तो खाना बनाने के साथ जो हमारी है थोड़ी सी मतलब ये समझदारी उतनी अच्छी है नहीं हमारी। अब तो थोड़ा
0: ओके
1: बहुत कुछ बना लेते हैं तो बन जाता है खाने के लायक।
0: ओके ओके ओके, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात। दोस्तों आपने सुना किस तरीके की घटनाएं और किस तरीके की जुझारूपन पुष्पा जी ने दिखाया।
1: जी, खाना बनाने से वास्ता हमारा नहीं रहा शुरू से, तो इस
0: नहीं,
1: फील्ड में मैं थोड़ी
0: रियली फन, रियली फन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: जी।
0: तो चलिए दोस्तों, हो जाए पुष्पा जी की ही आवाज में एक प्यारा सा गीत।

0: आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा पुष्पा जी कि गाना गाने के अलावा, संगीत के अलावा आपकी हॉबी क्या है?
1: जी मैं एक्चुअली सबसे बड़ी हॉबी तो मेरी गाना सुनना और गुनगुनाते रहना और गाते रहना ही रहा है बचपन से। इसके अलावा मैं ड्राइंग भी करती हूँ, तो बचपन से मैं थोड़ी बहुत अच्छी ड्राइंग भी कर लिया करती थी। उसमें पेंसिल आर्ट ज्यादा अच्छा था हमारा, क्योंकि फिर जब मैं पेंसिल का कुछ वर्क करती थी तो हमारे एक टीचर थे, वो उनको अगर पसंद आए तो वो कहते थे ये मुझे दे दो, तुम इसको और कुछ मत करो। तो कभी कलर कलर जो है उस पे करने का मौका नहीं मिला, तो पेंटिंग इनफैक्ट विद द कलर्स उतना अच्छा नहीं था। पर हाँ, अब ये जो ड्राइंग हमने उस समय की उसका मुझे अभी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है कि मैं बोटानिकल आर्ट्स की जो लाइन ड्राइंग होती है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, और जिसके लिए मुझे मतलब क्यू जर्नल्स या वहां से भी अप्रिसिएशन मिले कि आपकी बोटानिकल लाइन ड्राइंग्स बहुत उम्दा क्वालिटी की है और काफी अच्छी बनी। हमारी अभी जो बुक आई है उसमें भी सारे हमने खुद बनाए हैं। और इसके अलावा पुरानी फिल्में देखना मुझे पसंद है, और फिलहाल आप वॉक करना मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं इवनिंग वॉक पे या मॉर्निंग वॉक पे मैं जाती ही जाती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है करना।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। बस यूं ही बात को जरा सा आगे बढ़ाने के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा पुरानी फिल्में देखना आपको पसंद है, कौन सी फिल्म लेटेस्ट में आपको पसंद आई है?
1: अभी हमने थोड़े दिन पहले दोबारा से मंडी देखी थी, और एक मूवी आई थी आलाप जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, और वो मैंने देखा ऐसे ही
0: क्या
1: आपके प्राइम उस पे। जी, दो मूवी हमने पुरानी देखी है, मतलब 10-15 दिन पहले तक।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और एक और बढ़िया सा प्यारा सा गीत सुनते हैं पुष्पा जी का ही।

0: पुष्पा जी, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कुछ
1: जी
0: लोगों के व्यवहार में, किसी के मैनरिज्म में कहीं कुछ आप ऐसा पाती हैं जो आपके एक अच्छे खासे मूड को खराब कर देता हो? ऐसा क्या होता है?
1: हाँ जी सर, होता है ऐसा। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत खुश हैं, आप कहीं कुछ और सोच रहे होते हैं, और उस समय कोई सामने आपके साथ जो लोग हैं, या फिर आपके ऑफिस में, आपके घर में, कहीं भी, वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बिल्कुल ही अपोजिट हो उस समय आपके मूड के हिसाब से, तो सारा मूड स्पॉइल हो जाता है। आपने जो भी दिमाग में सोचा होता है, कहीं खुशी मन में रहते हैं आप, वो सारा का सारा बिगड़ जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। और दूसरी बात एक ये होती है कि अननेसेसरली के आर्ग्यूमेंट्स मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कई बार मैं उसमें उलझ जाती हूँ। मैं नहीं उलझना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कंपल्सन हो जाता है कि आप किसी को जवाब दीजिए किसी बात के लिए, तो और आप उसमें फिर इंडल्ज होते जाइए। तो इससे क्या होता है कि आपका एक तो मूड खराब हो जाता है, फिर आपका जो टाइम है वो पूरा चला जाता है उसमें, आपकी पॉजिटिव जो दिशा में एक आपकी सकारात्मक एनर्जी जाना चाहती थी वो फिर वहां से ड्रैग आउट हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको उल्टे दिशा में लेके जाती हैं। आपको कभी कभी आप इमोशनली ब्रेकडाउन भी हो जाते हैं, तो या फिर अपने ही लोगों में जब अनबन सी रहे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई बात समझ नहीं रहा, आपका कोई अपना ही खास आदमी हो वो नहीं समझ पा रहा है आपकी बात को, या उस तरीके का कुछ ऐसा आ जाता है मैटर, तो फिर ये इन सारी चीजों से थोड़ी परेशानी तो होती है
0: ओके ओके ओके,
1: जी।
0: हम इंसान हैं पुष्पा जी। दोस्तों, आपने सुना, किसी भी इंसान की तरह पुष्पा जी भी परेशानी महसूस करती हैं लोगों के व्यवहार से। ये सवाल जानबूझकर मैं हमारे टैलेंट से इसलिए पूछता हूं दोस्तों कि हम इनके जवाब को सुनते समय खुद को चेक कर पाए कि कहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना, और किसी को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, हम अपने आप को सुधार लें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक प्यार सा गीत सुनते हैं पुष्पा जी की ही आवाज में।

0: आगे बढ़ते हुए पुष्पा जी, हमें बताइए ना, आपकी जिंदगी में अब तक की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या रही?
1: सर देखिए, मैंने लगभग अपनी आधी जिंदगी से ज्यादा ही पार कर ली है अभी तक तो, और मुझे ऐसा नहीं लगा है कि मैंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। लेकिन हाँ, जो मेरे अपने लोग हैं, जैसे मेरी माँ पापा, पापा तो अब खैर फिजिकली प्रेजेंस नहीं है उनका धरती पर, लेकिन फिर भी जान में तो रहते ही हैं।
0: जी
1: और जो अपने मतलब भाई बहन हैं, तो इनको सबको जरूर लगता है कि दीदी ने बहुत अच्छा किया है कुछ, तो दे थिंक कि मैं जैसे मैं साइंटिस्ट बन गई, या फिर मैंने किताब लिख ली, मेरी कोई बुक पब्लिश होके आ गई, तो
0: जी
1: इन सारी चीजों से उन लोगों को लगता है कि हाँ दीदी ने कुछ अच्छा काम किया है। मुझे भी लगता है कि चलो थोड़ा बहुत कुछ तो योगदान है मेरा। जैसे मैं अभी बताऊं आपको कि मैंने मेरा जो काम है बेसिकली साइंटिस्ट के तौर पर, वो मैं बैम्बूज के ऊपर काम करती हूँ। मैं प्लांट साइंटिस्ट हूँ और टैक्सोनॉमी पे काम रहता है हमारा। टैक्सोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, उसके क्या उपयोगिता है, और उसमें आप और फर्दर उसका क्या यूज हो सकता है, कहाँ पे किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम ऑन ग्राउंड जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारा जो हमने 2002 में अपना सफर शुरू किया था रिसर्च का, और लगभग 20 साल काम करने के बाद एक हमारे BSI की तरफ से जो पब्लिकेशन आई है, हमारी फ्लोरा ऑफ इंडिया सीरीज हमारा पूरा रिवाइज हुआ है, उसमें बैम्बू स्वाइटी एक सेपरेट वॉल्यूम बन के आई है, जो कि 50-100 साल तक लोग उसको रेफर करेंगे, और वो एक बेस जो जो होता है रिसर्च का वो रहेगा, तो पूरी दुनिया में उसको लोग जानेंगे। तो ये मुझे लगता है कि चलो ठीक है, ये हमारा एक योगदान, एक उपलब्धि आप इसको कह सकते हैं।

0: पुष्पा मैम, हम अपने प्रोग्राम के उस पदान पर आ गए हैं जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल की जो भागदौड़ की स्टाइल हो गई है, जीवन में एक वे ऑफ लिविंग हो गई है, उसमें लोग बहुत ही ज्यादा टेंशनाइज्ड रहते हैं हमेशा, और जीवन को जीना भूल गए हैं। एक तरीके से आप कहें तो सिर्फ गुजार रहे होते हैं अपनी जिंदगी, और दुनिया में लोगों की संख्या दिन पर दिन भले ही बढ़ती जा रही हो, लेकिन एक एकाकीपन जो है वो लोगों में बहुत गहरे बैठ रहा है, जिससे लोगों में एक अविश्वास और इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स वो सारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इन चीजों से बचने की कोशिश करें, अपने जीवन को रोज जीना। जो मैं करती हूँ मैं वही बता रही हूँ, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी, चूंकि मैं भी ऐसे ऐसे दौर से गुजरती रहती हूँ बीच बीच में, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे एक बेहतर तरीका सोच सकूँ अपनी लाइफ को और अच्छे से जीने का, क्योंकि जीवन तो एक ही मिलता है सबको, उसमें हर दिन आदमी को इस तरीके से जीना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ ठीक है, आज का दिन मैंने अच्छे से जिया और भरपूर जिया। तो अपने अपने जो लोग हैं आपके, उनसे मिलते रहिए, उनको उनके दुख सुख में शामिल होइए, उनकी खुशियों में शामिल होइए। आजकल लोग खुशियों में कम शामिल होना चाहते हैं, दुख में भले ही दुख दिखा देंगे लेकिन दूसरे की खुशी देखकर लोग सोचते हैं कि अच्छा वो इतना खुश क्यों है। तो ये सब नहीं करें, और सही अपने दिल को साफ रखें लोगों के बीच में, और विश्वास करें एक दूसरे का, अपनी सोच सकारात्मक रखें तो सब कुछ अच्छा दिखता है और अच्छा होता भी है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो अपने लोग हैं कम से कम उनसे जुड़े रहें, क्योंकि आजकल डिजिटली तो हम लोग जुड़ गए हैं, लेकिन जो एक भावनात्मक जुड़ाव रहता था वो काफी हद तक, और एक विश्वास जो है वो काफी हद तक बहुत दूर हो गया है लोगों से। तो उन सब चीजों को, जो अच्छी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़कर, और जो जीवन के जब लास्ट एक वो आता है, आदमी जब सोचता है कि हमने पूरे जीवन बिता लिए और ये नहीं किया, लोगों से जुड़े नहीं रहे, तो अंत समय में एकाकीपन और ज्यादा खलता है, उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं रहता करने को। तो समय हमें एक बेहतर वो देने का तो जरूर उपाय करता है, आपको मौका देता है, तो आप उस तरीके से जिए। और अंत में मैं अपने आपके इस चैनल के लिए मैं ये कहना चाहूंगी लोगों को कि यहाँ जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं वो एक से एक बढ़िया कलाकार हैं, और सब लोग अच्छा कर सकते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन उनका बहुत अच्छा हो सकता है, और वो अपनी प्रतिभा को और अच्छा निखार सकते हैं, यहाँ पे उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें जारी रखें और भरपूर सहयोग जो है वो देने की कोशिश करें।
0: बहुत खूब डॉक्टर पुष्पा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यारी बातें कही आपने, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपके गीत सुने, थैंक यू सो मच।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया लोगों से जुड़ने का, क्योंकि ये एक पहला हमारे लिए भी मौका है जहां हमारे मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां मैं लोगों से सीधे जुड़ सकूं, बात कर सकूं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सुनने वालों को हमारा प्रणाम, नमस्कार।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर, हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं, शुभ रात्रि।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: ये लीजिए दोस्तों, आज के कलाकार का बिल्कुल ही नया, बिल्कुल ही मासूम, बिल्कुल ही प्यारा सा एपिसोड लेकर हम फिर से हाजिर हैं। और आज जो टैलेंट, जो गायक हमारे साथ हैं, आइए ना मिलते हैं उनसे। वो हैं तुषार सामंत भाई। बाकी तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मोस्ट वेलकम इन अवर प्रोग्राम। एंटायर फैमिली इज वेटिंग फॉर यू।
1: प्लीज सर, नमस्कार। आपको भी नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार।
0: बहुत खूब। बस मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सभी सुनने वालों के लिए, अपना परिचय दीजिए ना। आप भला कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं?
1: सर मैं रिटायर्ड स्टाफ हूँ भारत पेट्रोलियम का। मैंने भारत पेट्रोलियम में सर्विस की 34 इयर्स। उसी के साथ एक म्यूजिकल संस्था है रुदेश आर्ट्स नाम, उसमें भी बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता के स्वरूप में काम किया है, जो म्यूजिकल इवेंट अरेंज करती है। पार्ला में बहुत ही बड़ा नाम है रुदेश आर्ट्स करके। तो सर्विस के साथ साथ मैंने संगीत से भी जुड़ा हुआ मैंने बहुत सारा कार्य किया है। और गाने का अभी तक ये नहीं था, वो अब मैंने गाना अभी चालू किया है 2-3 साल पहले ही। लेकिन बहुत बचपन से मैं तबला सीख रहा हूँ और ये करते करते संगीत क्षेत्र से जुड़ गया हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों को सुनना मिला, गाना नजदीक से उनके साथ परिचय हुआ, उनके साथ बहुत ही संगीतमय वातावरण में मैं पला बड़ा हूँ।
0: तुषार भाई, थैंक यू सो मच। मैं देख पा रहा हूँ आपके डीपी पे, मेरे ख्याल से आप आशा भोसले मैम के साथ हैं।
1: यस सर।
0: आह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओहो, मुझे तो जलन हो गई साहब आपसे। बताओ यार दोस्तों, आपने
1: मंगेशकर
0: जी,
1: मंगेशकर परिवार से हमारा बहुत ही एक फैमिली रिलेशन रहा है इतने सालों से। ये जो रुदेश आर्ट्स संस्था है, उसका नाम भी हृदयनाथ मंगेशकर के नाम से, वो रुदेश आर्ट्स ऐसे करके हुआ। और हमारे ये संस्था का औपचारिक मीन्स उद्घाटन समारोह जो बोलते हैं ना, तो आशा जी के हस्ते ही हुआ है।
0: ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।
1: आशा जी ने हमारी ये संस्था चालू करके दी है हृदयनाथ मंगेशकर से नाम से, रुदेश ये नाम करके। और हमारे अविनाश प्रभावकर जी है जो हमारे इस ग्रुप के हेड करते हैं, मेन है। तो लता दीदी साक्षात सरस्वती देवी 40 बार हमारे फंक्शन में आ चुकी है।
0: ओ बाप रे, ओके।
1: तो उनके साथ और उनके परिवार के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल है हमारा।
0: बहुत खूबसूरत।
1: सौभाग्य है संगीत से जुड़े हुए। और कोई सर्टिफिकेट की लगती है कि कोई जरूरी ही नहीं है।
0: हाँ हाँ, अरे मतलब ही नहीं है। आशा भोसले
1: सेवा करने का जो मौका मिला है ना, और हम लोग बोलते ना कि जिंदगी में और क्या चाहिए, ये तो सबसे बहुत ही भारी चीज मिली है कि साक्षात देवी का वो मिलने का, जुलने का और उनकी सेवा करने का मौका मिला, यही हमारा सौभाग्य है।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों। मुझे तो ऐसा लगता है सारा प्रोग्राम खत्म हो गया बस यहीं पर।
1: क्या बात है, सही बात है।
0: अरे यार,
1: इसके आगे हम लोग कुछ
0: क्या बोलेंगे।
1: यस, बिल्कुल,
0: कुछ बात करने को ही नहीं रह जाता है। अगर लता मंगेशकर मैम खड़ी हैं और आशा भोसले मैम खड़ी हैं तो बात खत्म। वाओ दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक बार तुषार जी का डीपी जरूर देखिए, डिस्प्ले प्रोफाइल कितना सौम्य, कितना पवित्र, देखकर ही मजा आ गया साहब। बहुत खूब, मेरा तो दिन बन गया आज, क्या बात है।
1: यस, धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: तो चलिए दोस्तों, फिर आशा ताई और लता मंगेशकर जी का आशीर्वाद मिला हुआ है जिनको, उनकी आवाज में ये गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत बढ़िया तुषार भाई, आपने मुझे अभी अभी कहा अपने बहुत ही प्यारे से परिचय में कि आप बचपन से गाते तो नहीं थे लेकिन आप तबला बजाते थे, सही कहा ना सर? तो तबला बजाने की जो मोटिवेशन था या इंस्पिरेशन था, तभी आप तबला बजाने का जो आइडिया था वो दरअसल कहाँ से आया, किसने आपको मोटिवेट किया कि बेटा आपको तबला बजाना है, सीखो इसको? आपको
1: इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बोलता हूँ
0: जी।
1: मेरे डैडी सर्विस करते थे, मेरी सिस्टर में तभी 8-10 साल का था और सिस्टर स्कूल में जाया करती थी दोपहर को, मेरी स्कूल सुबह रहती थी और माँ और मैं घर में दोनों ही रहते थे, लेकिन मम्मी जब भी बाहर जाती थी तो मैं घर के सारे बर्तन बाहर निकाल के उनका गमसेट बना के बिलन बिलन से जो भी बजाना वो ढांगर ढींगा बोलते जैसे मराठी वो, हाँ वो घर में होता था और हमारा घर मेरे दोस्तों को लेके एक ऑर्केस्ट्रा का रूप होता था।
0: ओके।
1: और मम्मी आने के बाद बाजू वाले सब बोलते थे कि तू घर से बाहर मत निकल, हमको क्या क्या सब बर्तन की आवाज सुनने पड़ती है कर। लेकिन वो ये
0: oh my God.
1: ये साल था 70-72 का। पिताजी ने ये देखा और पिताजी ने मेरे को पहले तबला क्लास के लिए ये किया, और तभी वो मेरे पहले गुरु थे पंडित प्रकाश जी गोरे जो वसंतराव देशपांडे के साथ संगत करते थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके साथ मीन्स मेरा तबला का ये प्रवास शिक्षा शुरू हो गई, और उनके साथ जाते जाते मैं वसंतराव देशपांडे, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, ये लोगों के साथ जिधर भी गुरु मेरे तबला बजाते थे तो मैं उनके साथ उनके तबले उठा के लेके जाता था और वो सब लाइव परफॉर्मेंस सुनने मिला। इतने बहुत प्रोग्राम सुने हैं मैंने, कटियार का आजाद घुसली जैसा नाटक उनको उसी समय जो बजता था तबला बजाते थे गुरुजी, तो वो 25 बार तो मैंने वो ड्रामा देखा हुआ है वसंतराव देशपांडे जी का।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या एक्साइटिंग, क्या इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर होता होगा। दोस्तों एक बार सोच के देखिए, अगर कभी आपने किसी भी लाइव परफॉर्मेंस को देखा हो, सुना हो, कोई भी सिंगर हो या कोई ऑर्केस्ट्रा हो, एक अलग वाइब्स होती हैं, बिल्कुल अलग, जो कि हमारे डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड पर हो ही नहीं सकती। उस चीज को एक्सपीरियंस करना अपने आप में स्वर्ग पाने जैसा होता है दोस्तों, ट्रस्ट मी।
1: यस।
0: चलिए आगे बढ़ते हुए तुषार भाई का ही प्यारा सा एक गीत सुनते हैं, फिर तुषार भाई के बारे में, उनकी एक्साइटिंग जर्नी के बारे में और जानेंगे। आइए ना।

0: खानदान के साथ, परिवार के साथ आपके संबंध होने के नाते संगीत में तो आप हो ही गए थे। फिर आपने कहा कि अभी बस दो एक साल पहले से आपने गायन शुरू किया, गाना गाना शुरू किया, ठीक है ना। तो दो साल पहले जब आपने गाना शुरू किया तो कैसे आपके मन में आया, किसी ने आपको कहा कि यार तुषार जी अब आप शुरू कर लो गाना, या किसी ने मोटिवेट किया, किसी ने छेड़ दिया?
1: मोटिवेट किया।
0: कौन?
1: कोविड का जो सीजन चालू था 2020 का, ये 2020 में, तो बीपीसीएल के ऑफिस में हमारे एक महेंद्र कुमार करके मेरे जनरल मैनेजर थे, तो उन्होंने एक फंडा निकाला कि ओनली फ्राइडे, मीन्स फ्राइडे को फ्राइडे खाना विद गाना। तो लोग खा रहे हैं लेकिन इधर कराओके सिंगिंग, जिसको गाना है वो इधर आके गाए, उसका गाना सुने और खाते खाते गाने का भी लुत्फ उठा, ऐसे वो सब माहौल था।
0: वाओ।
1: तो मैं हमेशा किसी को अरे अप्रिशिएट करने के लिए, अरे बढ़िया गाया, लेकिन वो सर ने मेरे को बोला तुम म्यूजिक फील्ड से हो तो आपको स्टेज पे आना ही है। तो मैंने बोला मैं तबला बजा लेता हूँ, लेकिन सर एक गाना ये मेरा फील्ड नहीं है, मैंने बहुत सुना है ये सब ठीक है लेकिन नहीं। तो लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को ये फ्राइडे आप किसी भी हालत में स्टेज पे चाहिए, और वो जबरदस्ती उधर से, मींस बोलते ना कि मेरा स्टेज पे एंट्री हो गई मेरी। बहुत डर के मैंने, मींस दो दिन मैंने कराओके कभी सिंगिंग किया नहीं था, लेकिन कराओके सिंगिंग की दो दिन कस के प्रैक्टिस की मैंने, बहुत डर के मैंने स्टेज पे गया, स्टेज पे पेश भी गया गाना, और वो गाना था ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे।
0: अरे वाह।
1: तो ये गाना गाने के बाद लोगों ने जो मेरे को सराहा है और जो तारीफ की है मेरी, तो मेरे को लगा अरे मैं अच्छा गा लेता हूँ, क्यों नहीं, ये मेरा नया फील्ड मेरे को जो मिला है उसमें मैं थोड़ी एंट्री करके देखूं, और गाना चालू हो गया मेरा।
0: तो
1: बीपीसीएल का स्टेज और महेंद्र कुमार, उनका मैं अभी ये एसएम रेडियो को बोलते समय एक मौका लेता हूँ कि उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को जबरदस्ती स्टेज पे लेके आएगा।
0: बहुत खूब। सर ये मौका आपके पास नहीं, हमारे पास भी है, हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए। अगला गाना हम उन्हीं को डेडिकेट कर रहे हैं। साहब तुषार साहब ने आपसे मोटिवेशन लिया था, आपसे आशीर्वाद लिया था, आइए ये गाना तुषार जी का हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर।
1: थैंक यू। यस सर।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: तो जिस वक्त आपने वैसे अभी अभी कहा कि आप को स्टेज पर उन्होंने कहा कि फ्राइडे को चाहिए, आपने करियोके की जबरदस्त प्रैक्टिस करी और आप स्टेज पर पहुंचे, थोड़ा सा तो आपने बताया, थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि जब आप स्टेज पे पहुंचे तो कैसा फील किया आपने? माइक हाथ में लिया तो कैसा फील किया? म्यूजिक बजा तो कैसा फील किया? जब शुरुआत करी गाने की तो कैसा फील किया? और इसके बाद जब आप बह गए तो कैसा फील किया?
2: सही बात है, मेरे को दो दिन ऐसे लगा कि मैंने उनको बोला था कि सर ये मेरे को जमने वाला नहीं, तो सर ने बोला कि कितना भी बेसुर गाओ, कुछ भी गाओ, कितना भी बेसुर, लेकिन हमको सुनना है कि तुम कितना बेसुर गाते हो, और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा ही गाओगे। मैंने बहुत सोचा घर पे कि मेरे खुद को जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो मेरे में नहीं है, लेकिन मेरे बॉस को है। अगर बॉस मेरे लिए इतना बोल रहा है तो क्यों ना मैं मेहनत करके और वो दिखाऊं, प्रूव करूं कि जी हाँ मैं गा सकता हूँ। दो दिन मैंने कस के मेहनत की, मेहनत करने के बाद मैंने जब भी गया स्टेज पे तो भी थोड़ा सा एक डर बैक ऑफ द माइंड तो था ही, फिर भी एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए डरता नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों के साथ प्रोग्राम और स्टेज शो देखने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस मेरे में है।
1: करेक्ट,
2: कि लोगों को मिलना जुलना और स्टेज के ऊपर से सबको देखना, तो एक डर सा था कि मैं गा पाऊंगा या नहीं, लेकिन जैसे मैंने गाना शुरू किया और म्यूजिक बज गया और मेरे वो दिमाग में खाली हुआ अभी मेरे को ये स्टार्ट लेना, ये पहला है, ये मेरा इंट्रोडक्ट ये है, और वो होने के बाद जैसे मैंने गाना चालू किया एक अलग सा सन्नाटा, एक अलग सा माहौल वही कैंटीन में हमारा कैफेटेरिया में हो गया, कि सारे लोग खाना खाते खाते हुए उनके हाथ वैसे थम गए और मेरा गाना अलग लेवल से लोग सुन रहे थे, ये मेरे को महसूस हुआ वहां पे। और गाना खत्म होने के बाद भले जो खाना हुआ था वो उधर से चिल्लाना कि बहुत बढ़िया, वंस मोर, ये करो वो करो सब, ये इतने दिन क्यों नहीं गाया, ये सब हो चुका, लेकिन तभी एक अलग सा कॉन्फिडेंस, और मैं जाके महेंद्र कुमार साहब को बोला कि ये सब गाना जो भी मैंने आज गा पाया इसका क्रेडिट ये सब आपका है।
1: ओह गॉड, ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल। ये स्टेज का एक्सपीरियंस जो होता है ना दोस्तों, अपने मन में, अपने जहन में, अपनी पर्सनैलिटी में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। रिमेंबर योर स्टेज परफॉर्मेंसेस एंड देन चलिए आइए तुषार जी का एक बहुत ही प्यारा से गीत परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं।

0: बहुत बढ़िया तुषार भाई, चलिए आपकी पसंद और आपकी गायकी के बारे में थोड़ा सा बात करते हुए, आपने कैसा फील किया स्टेज पर वो समझ में आ गया। अब जब कभी, वैसे तो 2 साल ही हुए हैं आपको गाते हुए, लेकिन हजारों लाखों गाने आपने गा लिए होंगे आई एम श्योर। तो जब आप गाना चुनते हो कि ये वाला गाना मेरे को गाना है, तो किस वजह से, व्हाट इज द रीजन यू चूज अ सॉन्ग? इट्स मेलोडी, इट्स लिरिक्स, इट्स सिंगर, इट्स एक्टर, इट्स म्यूजिक प्रोड्यूसर, किस बात पे आपको गाना पसंद आ जाता है?
1: गाना चुनते समय सबसे पहली बात, मेरी आवाज की रेंज का ये गाना है, ये मेरे दायरे में है या नहीं है, ऊपर के सुर नीचे के सुर मेरे लगेंगे या नहीं लगेंगे। सुर के साथ भी लय भी संभालनी होती है, तो गाना चुनने के समय ये सब मैं सोचता हूँ। लिरिक्स क्या है, उसके शब्द का अर्थ क्या है, उसके शब्द के अर्थ के पीछे भावना क्या है। अगर शब्द शब्द ही नहीं समझे, उसके भाव ही नहीं समझे, तो वो गाना गा के कुछ फायदा ही नहीं, वो भाव आएंगे भी नहीं वो गाने में। और मेरे को लगता है श्रोतागण कैसे है ये भी गाने चुनने से पहले, अगर कॉलेज का क्राउड रहेगा तो मेरे ये गजल और ये कोई सुनेगा नहीं, ऐसे मेरी हमेशा एक सोच रहती है। जैसे मैं कभी गजल ज्यादा में गा लेता हूँ तो घर में बोलते हैं, क्या डैडी आप बाहर जाके जो भी गाते हो क्यों रोना धोना आपको पसंद है, बाहर जा रहा हल्ला गुल्ला वैसे गाने सुन चुनो करके। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे मेरी जो गायकी मेरे मेरा जो जो बोलते ना पसंद है, जो गाना मुझे पसंद आए वही गाना मैं दिल से गा पाता हूँ। जबरदस्ती कोई बोलेगा नहीं नहीं यही गाना और ये, तो ये सब मैं सोचता हूँ
0: वैसा नहीं,
1: गाने गाने से पहले ये सब सोचना जरूरी है।
0: श्योर श्योर, यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट ब्रदर। जाहिर से बात है, कोई गाना हमारे पर्सनालिटी के साथ रिलेट ना कर रहा हो, रिजोनेट ना कर रहा हो, तो वो आपकी आवाज में वो मोहब्बत आएगी ही नहीं,
1: आएगी नहीं। बरोबर,
0: आगे बढ़े दोस्तों, आइए ना एक और गीत का लुत्फ उठाएं।

0: बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। अब अगर बात करें, आप तो मतलब मैं अगेन टाइम एंड अगेन उस चीज को मेंशन कर रहा हूं यहां कि आप मंगेशकर फैमिली से जुड़े हुए आ रहे हैं, तो एक लीगेसी आपने विटनेस की है, देखी है, उसके साथ साथ आप चले हैं, तो आपने वो जमाना बहुत गहराई से देखा। हमने तो सिर्फ रेडियो पर या सुना, आपने उसको पास से बिल्कुल देखा, महसूस किया, आपने उनकी सेवा करी। तो उस जमाने की म्यूजिक, उस जमाने की लीगेसी को अगर आज के जमाने पर हम अप्लाई करें, आज के टाइम पर अप्लाई करें, तो आपको क्या महसूस होता है? उस जमाने को आपने महसूस किया था, आज के म्यूजिक को जरा महसूस करके बताइए, व्हाट डू यू फील अबाउट टुडेज म्यूजिक?
1: आज का म्यूजिक भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो तभी का एक म्यूजिक था और अभी का म्यूजिक म्यूजिक नहीं है। हर एक म्यूजिक डायरेक्टर की एक अलग अलग सोच रहती है और हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का भी कोई आइकॉन रहता है, आइडॉल रहता है। तो और वो घराने का ये देखते देखते, जैसे हम लोग बोलते ना कि ये सब गुरुमुखी विद्या है, हर एक कोई ना कोई सीखता है, तो वही एक लीगेसी भी फॉलो करते जाते हैं। जैसे अभी मंगेशकर परिवार के अगर देखेंगे तो सब उनके मास्टर दीनानाथ मंगेशकर से आई हुई लीगेसी,
0: करेक्ट,
1: ये पांचों भाई बहन ये सब आगे लेके जा रहे हैं। वो नाट्य संगीत का बेस हो, क्लासिकल का बेस है, इसलिए ये लोग मीन्स बोलते ना कि पूरे इंडस्ट्री पे राज किया है इन्होंने।
0: जी हाँ,
1: आशा तई रहो कि लता दीदी रहे, और ये उनका भी एक सौभाग्य है कि उनके पीरियड में अगर देखे जाए तो बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर और बहुत सारे अच्छे अच्छे लिरिक्स लिखने वाले मीन्स जो लिरिसिस्ट है, वो एक अलग ही गोल्डन इरा बोलते ना वैसे,
0: गोल्डन इरा।
1: आने वाले दिन तो आने वाले दिनों में भी ऐसे ही चलता ही रहेगा। ये तो इंडस्ट्री में ऐसा है कि ये एक खाली एग्जाम्पल ने तो कभी भी कोई तुलना करने के लिए रहेगा,
0: वैसा
1: ये नाम तो ऊपर ही रहेंगे, लेकिन ये तो चलता ही रहेगा, सिलसिला तो गाने का चलता ही रहेगा।
0: कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी तुषार भाई, एंड देन हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि इनका जो इरा रहा, इनका जो लीगेसी रही, उससे हम शायद अगले 100 साल भी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इतना जबरदस्त इन्होंने लीगेसी क्रिएट की है, अपने टैलेंट का, अपना जो प्रतिभा का, अपना जो एक एनवायरनमेंट फैला है, उसे अगले 100 साल भी हम निकल नहीं पाएंगे। सीखेंगे, बहुत सीखेंगे, लेकिन उनसे ऊपर नहीं
1: जा पाएंगे। इसके पीछे उनकी संगीत साधना भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो स्ट्रगल, तो स्ट्रगल सबके लिए है, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल करते करते गाना सीखना, उर्दू लैंग्वेज सीखना, उसके उच्चार के लिए भी टीचर रखना,
0: करेक्ट,
1: ये जो छोटे छोटे चीज है ना कि क्यों वो नंबर वन पे है, इसका भी संगीत साधना करते समय आपको सोचेंगे तो आपको समझता है कि क्या है, क्या क्या करना चाहिए। हम लोग बोलते कि चलो एक गाना गया तो मेरे को बहुत आ गया, नहीं ऐसे नहीं है। ये एक सागर है, ये सागर में तुम कितना नया नया खोजते हो और क्या करते हो, ज्ञान सागर में रहना जरूरी है, साधना करनी जरूरी है।
0: That's very right. बिल्कुल सही फरमाया तुषार भाई आपने, साधना साधना साधना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस
1: प्रैक्टिस, रियाज
0: रियाज। चलिए आगे बढ़ते हुए इस गीत का लुत्फ उठाएं।

0: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी गायकी, गहरी। तुषार भाई मुझे ये बताइए, आपने बताया वैसे कि आप अभी फुल टाइम, आई मीन यू आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, तो
1: सही बात है।
0: तो अपने जो आज की जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें म्यूजिक को कितना वक्त देते हो और बाकी चीजों के साथ उसको, उस वक्त को कैसे तालमेल बैठाते हो? मतलब आई मीन टू से आई जस्ट विश टू लाइक टू नो योर रूटीन, हाउ मेनी आवर्स यू सिंग या कोई और एक्टिविटीज।
1: अभी क्या है ना कि गाना सुनना ये भी एक रियाज का पार्ट होता है।
0: पार्ट होता है, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: या जैसे अभी मैं तबला बजा लेता हूँ तो एक डेढ़ घंटे का तबला प्रैक्टिस ये भी चालू रखी है मैंने अभी भी।
0: वेरी नाइस।
1: मैंने हाल ही 2 साल पहले ही सैक्सोफोन, मेरे को कभी से बचपन से सीखना था।
0: ओह माय गॉड,
1: ये मेरी ख्वाहिश थी। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सैक्सोफोन सीखना चालू किया। तो ठाकुर सिंह नागी करके है सैक्सोफोनिस्ट, इन्होंने लता मंगेशकर और आशा जी, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ पूरे वर्ल्ड की टूर की है सैक्सोफोन के माध्यम से।
0: वाओ।
1: तो उनसे मैं शिक्षा ले, मेरी मेरी चालू है सीखना। तो वो सैक्सोफोन की मैं प्रैक्टिस करता हूँ एक आधा घंटा एक घंटा जैसे। और मैं अभी इनके पास सीखता हूँ, मेरे गुरु है श्रीकांत जोशी करके
0: जी।
1: तो श्रीकांत जी से मैं अभी वोकल क्लासिकल सीख रहा हूँ और थोड़ा फिल्मी इंडस्ट्री ये हिंदी गाने मराठी गाने वो सीखता हूँ। लेकिन क्लासिकल मेरे को कराओ के गाने के बाद एक महसूस हो गया कि नहीं, आपको थोड़ी तो क्लासिकल की जानकारी जरूरी है। अगर नोट आपके गाने के बराबर लगते हैं या नहीं इसकी भी आपको जानकारी चाहिए तो ही आप आगे जा सकते हो। एक कह रहे हो कि खाली मैं ऐसे ही गा रहा हूँ तो नहीं, आपको एक लेवल ऊपर आना है तो ये सीखना जरूरी है, गुरु होना जरूरी है। और गुरु से शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने दी हुई दिशा में प्रॉपर रियाज करके आपको देना है। तो मैं ये पूरे दिन के अगर सोचो कि ये 5-6 घंटे तो मैं ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए जैसे सैक्सोफोन तबला और वोकल के लिए देता हूँ, मेरा दिन अच्छा बन जाता है पूरा। एक दिन रियाज नहीं किया तो लगता है कुछ तो आज हुआ है नहीं, ये मेरा गड़बड़ है। तो ये जरूरी है कि तुम आप टाइम कैसे अलॉट करते हो और वो उसका कंटिन्यूटी बहुत ही अहमियत मीन्स रखती है उसको।
0: ऑलराइट, अमेजिंग। दोस्तों एक बहुत ही सेंसिटिव बात कह दी तुषार भाई ने, मेरे दिल को छू के गई है। जैसा तुषार जी ने कहा कि वो सैक्सोफोन सीख रहे हैं प्रॉपर सैक्सोफोनिस्ट से, एंड दैट टू फ्रॉम अ सेलिब्रेटेड सैक्सोफोनिस्ट। मेरा भी बचपन से सैक्सोफोन सीखने का इच्छा रहा है, वो अभी भी मेरे जहन में है, मेरे चरित्र में है, मेरी पर्सनैलिटी में है। कभी ना कभी ये जरूर मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस तरह बढ़ रहा हूँ। दैट इज इन माई बकेट लिस्ट, विश लिस्ट पे
1: क्या
0: है।
1: क्या बात है।
0: मेरे को सैक्सोफोन बहुत बहुत बहुत प्यारा लगता है, तो वो तो कभी मेरे को सीखना जरूर है। थैंक यू सो मच तुषार भाई, आपने बड़ी प्यारी बात कही जो मेरे को दिल को छुई है। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा मोहब्बत से भरपूर ये गीत सुनते हैं तुषार भाई का, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत खूब बहुत खूब। तुषार भाई, एक क्रिएटिव सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। थोड़ा सा सपनों की दुनिया में चलिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंचिए। फर्ज कीजिए, आपके लिए वैसे इमेजिन करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी वहां पर हो। फर्ज कीजिए एक शाम आपको बहुत बढ़िया वाला कोई रेनाउंड स्टेज पर इनवाइट किया जाए, कहा जाए कि तुषार भाई पूरी शाम आपकी है, सिर्फ आप ही गाएंगे, तबला बजाना है तो तबला बजाइए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आज शाम आपका ही परफॉर्मेंस होना है, पूरा शाम लाखों स्पेक्टेटर्स देखने वाले सुनने वाले सामने हॉल में हैं, और तब आपसे कहा जाता है कि आप अपनी पसंद का कोई एक सिंगर स्टेज पर बुला सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। प्राइमरी सिंगर आप ही होंगे, लेकिन सपोर्ट करने के लिए आप किसी को भी बुला सकते हैं, किसी भी एरा से, किसी भी जमाने से। तो किसको बुलाना चाहेंगे आप स्टेज पे?
1: क्या बात है, बहुत ही भारी सवाल है।
0: करिए ना इमेजिन, आज मजा आएगा, उनके साथ गायकी करिए आज।
1: नहीं, इमेजिन करते मीन्स में जो मेरे पसंदीदा गायक है तो किशोर कुमार है, मुकेश है, मन्ना डे है, मोहम्मद रफी है।
0: क्या बात है।
1: लेकिन इसमें से मीन्स अगर इनको भी बुलाना है जो नहीं है अभी और इनको बुलाना है तो किशोर कुमार को मैं पहले बुलाऊंगा क्योंकि उनके जैसा वर्सटाइल सिंगर, दर्द भरे गाने भी है उनके, हैप्पी मूड्स के भी गाने हैं, तो वो जो गाने का

0: अंदाज, अलग अलग अंदाज उन्होंने दिया है गाने में, तो उनके साथ गाने की एक मौका मिला तो कभी भी वो मजा आएगा।
1: बहुत बढ़िया,
0: ये गाना
1: बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो इमेजिन करिए दोस्तों, इमेजिन करिए हम सब उस हॉल में बैठे हैं आगे वाली सीटों पर, और तुषार भाई किशोर जी के साथ सिंगिंग कर रहे हैं, है ना। वो कौन सा गीत था तुषार भाई, वो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का, जिसमें दोनों लोग दोस्ताना, समथिंग लाइक दैट, यू नो, उस तरीके का कोई प्यारा सा गीत किशोर कुमार जी और तुषार जी गा रहे होंगे गले में हाथ डाल के, वाह झूमते हुए, क्या बात है,
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत ही, इमेजिन करने से भी
1: रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
0: रोंगटे खड़े हो जाते
1: हैं। सो बॉस, ये तो हमारे दिमाग का खेल हम खेल ही सकते हैं ना, जिसको भी हम मोहब्बत करते हैं, अब किशोर कुमार हुआ, आशा ताई हुई, व्हाई नॉट हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करके उसको टूल बना के, वी कैन ऑलवेज गो बैक इन द पास्ट। ब्यूटिफुल, चलिए दोस्तों तैयार रहिए बहुत सारी तालियों के लिए, और आइए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं तुषार भाई की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तुषार भाई, हम अपने प्रोग्राम की उस जगह आ गए जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो नई फैमिली आपको मिली है संगीतमय सिंगर्स और सुनने वाले, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, आप क्या बात करना चाहोगे उनसे, करिए।
1: अच्छा क्वालिटी संगीत सुनना, संगीत पेश करना है तो संगीत की साधना करके अच्छे गुरु के पास सीख के, अगर संगीत, जैसे बोला कि संगीत साधना जरूरी है, गुरु गुरु का एक स्थान है, वो गुरु के पास सीखना जरूरी है, और सही शिक्षा प्राप्त करने के बाद गाने का आनंद लीजिए और गाने का आनंद दीजिए। ये मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी बात होगी।
0: क्या बात है, गाने का आनंद लीजिए और गाने का आनंद दीजिए, क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये हुआ सुनिए भी और अच्छा गाते हैं तो सुनाइए भी,
1: सुनाइए।
0: बहुत खूब, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब, आप हमारे सही जगह पर आ गए। हमारे यहाँ सुनने वाले भी भर भर के हैं, बहुत मोहब्बत से हर रात 9 बजे बैठ जाते हैं। लोगों का रूटीन उन्होंने चेंज कर लिया कि 9 से 10 तो हमें हमारी फैमिली में बैठना है, फैमिली टाइम, फैमिली टाइम। और बस एक महफिल जमती है, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, तो ये हम लोग ने बातचीत की तुषार भाई से, उनके बारे में जाना, उनकी जो इंटरैक्शन रही एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीगेसी मंगेशकर परिवार से, वो उसको जाना, महसूस किया तहे दिल से, और उनके गीतों का आनंद उठाया। तुषार भाई, मैं सचमुच बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। थैंक यू।
1: धन्यवाद, मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा एसएन रेडियो के नितिन राज जी, समीर जी आपका, और जिन्होंने मुझे यहाँ लेके आए वो तनुजा लाड जी, जो हमारे बीपीसीएल से ही है,
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।
0: थैंक यू।